मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 35 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

हर सुबह भगवान का संदेश है, उठो, मुस्कुराओ और अपने सपनों को फिर से आवाज दो। आज का दिन किसी और जैसा नहीं, क्योंकि आज कल से बेहतर बनने का निर्णय जो लेंगे हम,

मैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

0: यूपीएससी ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। समय है हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनी धान उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ के मौसम में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं संयुक्त कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां किसान भाई बहन खरीफ में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो क्या सलाह है आपकी?
3: सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि वह अपने खेत को अच्छी प्रकार से जांच लें, देख लें, मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, साथ में देखें कि क्या उनकी स्थानीय परिस्थिति है, जैसे जलवायु, मिट्टी, सिंचाई के साधन, कहीं वहां जल भराव तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति देख के ही प्रजातियों का वो चयन करें। जब बीज की बात आती है तो वो निश्चित रूप से प्रमाणित बीज ही अपने पास प्रयोग करें, बीज का शोधन अवश्य करें, मिट्टी की जांच कराने के बाद जो उसमें पोषक तत्व की कमी हो उसका प्रयोग करें।
2: देख सब प्रजातियों की बात कर लें तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग चुनाव है, जैसे कहीं संकर धान लगाना चाहते हैं, कहीं सुगंधित धान है, कहीं समस्याग्रस्त भूमि है, कहीं कम दिन की अवधि की, कहीं मध्यम, कहीं अधिक दिन की, तो क्या प्रजातियों के बारे में?
3: देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। किसान भाइयों को हम लोग सलाह भी देते हैं कि सबसे पहले देख लें कि यदि उन्हें सीधी बुआई करनी है तो कुछ हमारे पास अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे गोविंद है, नरेंद्र 118 है, नरेंद्र 97 है, शुष्क सम्राट है, मालवी धान 2 हैं। इस प्रकार की प्रजातियां हैं जिनकी कि किसान भाई सीधी बुआई कर सकते हैं, और यदि उनको असिंचित दशा में भी यानी पानी के सहारे भी इन प्रजातियों से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। यदि सिंचित दशा की बात हम करें तो हमारे पास अच्छी प्रजातियां आ गई हैं, जैसे इसमें आपका MTU 7029 भी है, स्वर्णा सबवन भी है, बासमती का भी आ गया है, अच्छी पूसा बासमती 1 है, 2 है, आपका मालवी सुगंध 105 है, मालवी सुगंध 10-9 है। तो इस प्रकार की प्रजातियां भी हमारे पास आ गई हैं।
2: और संकर प्रजातियों में?
3: संकर प्रजातियों में देखिए बहुत ज्यादा प्रजातियां इसमें मार्केट में चल रही है
2: जी।
3: उसमें भी आप देखेंगे तो 64-44 बायर का आ रहा है, 27P 73 आ रहा है। और संकर प्रजातियों में हम किसान भाइयों से कहते हैं कि जो भी प्रजातियां उनके पास संकर का लें वह यह देख लें कि वह प्रजाति नोटिफाइड जरूर हो
2: जी,
3: क्योंकि तमाम किसान भाई हम लोग पास आते हैं, कहते हैं साहब हमने बाजार से प्रजाति ले लिया, रिसर्च की वैरायटी ले लिया और उसको लगा दिया, खास रूप से पूर्वांचल के क्षेत्रों में, वहां पे बाद में हल्दिया रोग लग गया
2: जी।
3: तो हम किसान भाइयों से कहते हैं कि जब भी वो प्रजाति लें, संकर की लें चाहे ओपन पॉलिटेड वैरायटी की लें, यानी बिना संकर वाली लें,
2: और रसीद पुर्जा जरूर
3: लें और दोनों प्रजातियों को जब भी लें तो वह प्रमाणित बीज हो।
2: डॉक्टर साहब, धान के नर्सरी प्रबंधन के बारे में क्या सलाह देना चाहते हैं? अभी भी नर्सरी डाल सकते हैं?
3: हाँ बिल्कुल, इसमें जो समय चल रहा है किसान भाई नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए जैसा आप सब जानते हैं किसान भाई कि जितने क्षेत्र में उनको खेती करनी है, धान की रोपाई करनी है, उसका कम से कम 1/10-12 भाग में वो नर्सरी डाल लें। अर्थात यदि उनको 50 बिस्वे में लगाना है या 4 बीघे में लगाना है तो 10 बिस्वे में नर्सरी अपना डाल लें। नर्सरी के लिए खेत को अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें, जिसमें कि 3-4 जुताई करके खरपतवार निकाल लें, निकालने के बाद उसमें अच्छे से थोड़ी सी सड़ी गोबर की खाद मिला लें, ट्राइकोडर्मा मिला लें
2: जी,
3: और उसको अच्छे से मतलब मिट्टी की तैयारी अपनी कर लें। इसके बाद जो हमारे बीज होते हैं, बीज का शोधन जरूर करें। बीज के शोधन के लिए यदि आप प्रमाणित बीज लेते हैं तो बीज हमारा शोधित आता है, नहीं तो कम से कम 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से किसान भाई शोधित करें। और धान के बीज के लिए तो होता है भाई कि धान के बीज में जो उनको चाहिए, जैसे 4 बीघे की खेती करना हो और मोटा धान लगाना है उनको, तो करीब 30 किलो 25 से

0: 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता
1: प्रति हेक्टेयर,
0: प्रति हेक्टेयर, चार बीघे की बात करता
1: हूँ, ढाई एकड़,
0: ढाई एकड़ जी। तो वह उस बीज को लेके पहले रात भर भिगो दें, भिगोने के बाद फिर उसको पानी से निकाल लें, फिर कम से कम उसको 70-72 घंटे यदि उसको छाए में सुखा दें
1: ताकि अखुआ निकल जाए,
0: थोड़ा सा अखुआ निकल जाए, तो उससे क्या होता है कि फिर जो जमाव में दिक्कत उनको नहीं आती है और उनको पता भी चल जाता है कि हमारे धान का जमाव प्रतिशत कितना है।
1: दर्शक सब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9450-54-66-77, 9450-54-77। स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से ही खेत के चुनाव के बाद प्रजाति का चुनाव करें, मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, भूमि शोधन और बीज शोधन अवश्य करें।
1: डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा साहब आज आप कार्यक्रम में आए और धान उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप धान उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा जी से की गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। कठिन परिस्थितियों में कभी कभी एक पंक्ति ही मनोबल को वापस लौटा देती है। आज के सुविचार में सुनी अध्यात्म और पर्यावरण के बारे में, आलेख आशाराम त्रिपाठी का, स्वर सत्यानंद का।
3: आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है स्वच्छ पर्यावरण। आज सारा विश्व पर्यावरण प्रदूषण से व्यथित है। ये मान्यता थी कि लोग शिक्षित होकर पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएंगे, किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, और इसी तरह जल का दोहन भी किया जा रहा है। आज एक यक्ष प्रश्न सबके सामने है। प्रश्न ये है कि हमको और आपको किसने अधिकार दिया कि किसी दूसरे की आकृति बिगाड़ दें, उसका रूप ऐसा विकृत कर दें कि आगे की पीढ़ियां उसे पहचान ही न पाएं। गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियों ने हम सबका क्या बिगाड़ा है? सारी गंदगी उन्हीं के नाम? हमें और आपको गंदगी नहीं पसंद है तो नदियों को गंदगी पसंद है क्या? आज गंगा रो रही है। गंगा फूट फूट रोए, निज कृतघ्न संतानों की करनी पर वो रोए। कल कल कल बहती थी गंगा, अविरल अद्भुत तरल तरंगा। झरने गाते गान इसी का, अगजग में सम्मान इसी का। झरने गाते गान इसी का, अगजग में सम्मान इसी का। सुधा धर्मणी गंगा अब तो मल ही मल ढोए, गंगा फूट फूट रोए। गंगा ही नहीं, आज सभी नदियों का यही हाल है। नदियां तो नाले बनी, सिर धुनी धुनी पछताए, जनता तो रोती फिरे अस्पताल में जाए। हमने और आपने जागरूकता नहीं दिखाई, फलतः भारतीय संस्कृति की पहचान माँ के समान ही नहीं, माँ से भी बड़ी गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियां नाले का रूप धारण कर चुकी हैं। इसके लिए सरकार ही उत्तरदायी नहीं है, हम और आप भी उत्तरदायी हैं। चेत जाइए, समय बालू की भांति हाथ से फिसल रहा है। आज नदी, पर्वत, वन, सागर, आकाश, सूर्य, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी सब प्रदूषण से त्रस्त हैं और लोग माया बटोरने में लगे हैं। अरे भाई, भयावह प्रदूषण के कारण आज जब हमारा, आपका, सबका अस्तित्व ही खतरे में है, तब ये विपुल संपदा किस काम की? पृथ्वी अनंत रत्नों की खान है, संतप्त और असहाय को आश्रय देने वाली धन प्रदात्री है। पृथ्वी की कृपा से ही कृषि आदि कार्य संभव हो पाता है। ये ऐश्वर्य और रक्षा प्रदान करती है, मन की व्यथा से हमारी रक्षा करती है। आज इसी पृथ्वी की दुर्दशा देखकर रोना ही आता है, क्योंकि सुनने वाले विरले ही हैं। हमारी तो कामना है हरित

0: वसन धरती रहे नील वर्ण आकाश, तेज पूर्ण हो सूर्य का अनुपम अमित प्रकाश। जब हमारा मन शिव संकल्पी होगा तभी हम विश्व भर में शांति स्थापित कर सकेंगे और तभी हम स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित करने में समर्थ होंगे।
1: आज के इस विचार में आप सुन रही थी अध्यात्म और पर्यावरण के बारे में आलेख आशाराम त्रिपाठी का था और स्वर सत्यानंद की। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

मनमोहन का नाम, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी बांसुरी की तान और उनकी लीलाएं जीवन को आनंद और शांति से भर देती हैं। संसार की भागदौड़, दुख चिंताओं के बीच कृष्ण का स्मरण ही मन को स्थिरता और सुकून देता है।

ईश्वर अनंत है और सभी प्राणियों की अंतरात्मा उसी का अंश है। हम उस ईश्वर से मिलने से ही तो कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 194।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या

धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और वाणी जयराम। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए यही सबसे सरल उपाय। स्वास्थ्य अच्छा कार्यक्रम का यही प्रयास कि हमारे श्रोता कैसे स्वस्थ रहे, तो आज सुनिए स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी नमक विषय पर नीना सोनकर की ये जानकारी।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं हमारा आज का विषय है नमक, जो हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। नमक हमारे खाने में न केवल स्वाद लाता है बल्कि ये हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व भी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नमक हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डालता है? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमक का मुख्य घटक सोडियम क्लोराइड है। इसमें मौजूद सोडियम शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ये नसों और मांसपेशियों के सही संचालन के साथ साथ शरीर के जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। सोडियम की कमी से कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यही कारण है कि नमक को हमारी दिनचर्या में सही मात्रा में शामिल करना जरूरी है। नमक के कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार के अपने लाभ होते हैं। सबसे आम प्रकार है साधारण सफेद नमक, जो हमारे रोजमर्रा के भोजन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेंधा नमक, जिसे अक्सर उपवास के दौरान खाया जाता है, अपने शुद्ध खनिज गुणों के लिए जाना जाता है। काला नमक पाचन को बेहतर बनाने और पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। हाल के वर्षों में हिमालयन पिंक सॉल्ट भी काफी लोकप्रिय हुआ है, जिसमें खनिजों की भरपूर मात्रा होती है। स्वास्थ्य के लिहाज से नमक की मात्रा का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा नमक खाने से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जो दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति को रोजाना 5 ग्राम से अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मात्रा लगभग 1 चम्मच के बराबर होती है। दूसरी ओर बहुत कम नमक का सेवन भी समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे कमजोरी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और मांसपेशियों की ऐंठन। भारत में आयोडीन युक्त नमक का महत्व भी काफी अधिक है। आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के सही कार्य के लिए जरूरी है। इसकी कमी से बहुत से रोग होने की संभावना होती है और मानसिक विकास की कमी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आयोडीन युक्त नमक ने भारत में आयोडीन की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने आहार में नमक को संतुलित करना आसान है। सबसे पहले प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का सेवन कम करें, क्योंकि इसमें छुपा हुआ नमक बहुत अधिक मात्रा में होता है। ताजे और घर पर बने खाने को प्राथमिकता दें। खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, अदरक और हर्ब्स के साथ अन्य मसालों का इस्तेमाल करें, जो नमक की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। सेंधा नमक और काला नमक जैसे पारंपरिक विकल्प भी सेहत के लिए लाभकारी है। सेंधा नमक डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। काला नमक, जो आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर है, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। इसे चाट, दही या फलों के साथ मिलाकर खाने से न केवल स्वाद बढ़ता है बल्कि स्वास्थ्य भी सुधरता है। नमक को लेकर कई मिथक भी प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बिना नमक के खाना खाना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हमारे शरीर को सोडियम की एक निश्चित मात्रा की जरूरत होती है, जो संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा हिमालयन पिंक सॉल्ट को साधारण नमक से अधिक फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसका मुख्य लाभ खनिजों की विविधता में है। हर प्रकार के नमक का उपयोग संतुलित मात्रा में करना ही सही तरीका है। नमक का महत्व केवल सेहत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का भी हिस्सा है। भारतीय रीति रिवाजों में नमक को शुभता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में नमक को दोस्ती और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक भी माना जाता था। श्रोताओं, नमक हमारे जीवन का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे संतुलित मात्रा में लेना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
0: अभी आप स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी नमक, इस विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ।

आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती का प्रसारण होगा रात 9:30

मिनट पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10 बजे। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला प्रसारित होगी रात 11:10 पर। इसमें युवा शक्ति विषय पर सुनिएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री जी को। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर विशेष कार्यक्रम साहित्यिक समाज और आकाशवाणी, इस विषय पर नवीन जोशी से डॉक्टर नगेन सिंह रघुवंशी की ये भेंटवार्ता आप सुनेंगे। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाज फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश, सुनिएगा बशीर बद पर खसूसी प्रोग्राम उजाले उनकी यादों की, तहरीर आसिफ इकबाल की और सदाकार हैं आसिफ इकबाल और शमशुल आरफीन। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज फिरोजाबाद और जौनपुर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है जल में जीवन है। आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सुबह प्रसारित होगा सुबह 7:31 पर। दिन में 1:15 पर घरांगन कार्यक्रम में फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मन भावन बहने सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर नए फलदार वृक्ष लगाने की योजना विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार दुबे से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:25 पर। इसमें रमेश चंद की वार्ता होगी समुन्नत विकास में धार्मिक पर्यटन की भूमिका। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर लोक स्वर में सुनिए ओबी पर आधारित कार्यक्रम विलुप्त होती लोक परंपराएं मिट्टी की खोती धड़कने। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में राजनारायण वर्मा की वार्ता होगी ग्रामीण उद्गम से आत्मनिर्भर गांव। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर डॉक्टर लाल पंकज कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता का विषय है धान की फसल में समन्वित खरपतवार प्रबंध। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें डिकोडिंग साइंस आखिर विज्ञान के पीछे का विज्ञान क्या है, इस विषय पर अगम दयाल श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोफेसर से की गई भेंटवार्ता श्रोता सुनेंगे। भेंट करता है प्रवीण कुमार। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर हेमा उप्रेती के गाए अवधि लोकगीत का आप आनंद ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर डॉक्टर शिखा भदौरिया के गाए गीत श्रोता सुनेंगे। श्रोताओं के पतवाई मेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाध फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश, सुनेगा बशीर बद पर खसूसी प्रोग्राम उजाले उनकी यादों की, तहरीर आसिफ इकबाल की और सदाकार हैं आसिफ इकबाल और शमशुल आरफीन। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है जल में जीवन है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक ऐसा विषय जो केवल प्रकृति की बात नहीं करता, बल्कि हमारे अस्तित्व, हमारी सांसों और आने वाले भविष्य की कहानी कहता है। आज का विषय है जल में जीवन है। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सत्य है, क्योंकि जहाँ जल है वहीं हरियाली है, और वहीं खुशहाली है, वहीं जीवन की धड़कन है।

सोचिए यदि धरती पर जल ना होता तो क्या होता। ना नदियाँ बहती, ना खेतों में फसलें लहलहाती, ना पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता और ना ही मनुष्य का जीवन संभव होता। जल प्रकृति का वह अमूल्य उपहार है जिसे हम हर दिन उपयोग तो करते हैं लेकिन उसका वास्तविक महत्व अक्सर भूल जाते हैं। साथियों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इस विशाल जलराशि में पीने योग्य जल बहुत कम है। समुद्रों का पानी खारा है जिसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो मीठा जल हमें नदियों, तालाबों, झीलों और भूजल के रूप में मिलता है। वही हमारे जीवन का आधार है। यही कारण है कि जल का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य जल से जुड़ा हुआ है। सुबह आँख खुलते ही हम पानी का उपयोग करते हैं। भोजन बनाना हो, सफाई करनी हो, खेती करनी हो या उद्योग चलाने हो, हर क्षेत्र में जल की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर का भी अधिकांश भाग जल से बना हुआ है। डॉक्टर कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है क्योंकि जल शरीर को ऊर्जा देता है और जीवन की क्रियाओं को संतुलित करता है। जल केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए आवश्यक है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, सभी का जीवन जल पर निर्भर है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर पड़ती है तब मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू हमें प्रकृति के जीवित होने का एहसास कराती है। पेड़ पौधे पानी पाकर हरे भरे हो जाते हैं, नदियाँ कलकल बहने लगती हैं और किसान के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जल का महत्व और भी अधिक है। हमारे किसान पूरी तरह वर्षा और सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। यदि समय पर बारिश ना हो तो फसलें सूख जाती हैं और किसानों की मेहनत पर संकट आ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ वर्षा को ईश्वर का आशीर्वाद माना गया है। लेकिन श्रोताओं, आज मानव की लापरवाही ने जल संकट को गंभीर बना दिया है। पहले गाँव में कुएं और तालाब साल भर पानी से भरे रहते थे लेकिन आज कई जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। नदियों में गंदगी और रासायनिक कचरा डाला जा रहा है। उद्योगों का दूषित पानी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। प्लास्टिक और कूड़े कचरे ने जल की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। आज कई शहर ऐसे हैं जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं टैंकरों से पानी बांटा जा रहा है तो कहीं महिलाएं कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यदि अभी भी हम आगे नहीं जागे तो आने वाला समय और भी भयावह हो सकता है। जलवायु परिवर्तन ने भी संकट को और बढ़ा दिया है। मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में विश्व युद्ध भी पानी के लिए ही हो सकते हैं।

शुदा जल ये केवल कहने या चिंता की विषय नहीं है, बल्कि समाधान खोजने का समय है। जल संरक्षण जन आंदोलन बनना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में पानी बचाने की आदत डालनी चाहिए, जैसे दांत साफ करते समय नल बंद रखना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग ना करना, वर्षा जल संचयन करना और घरों में पानी की बर्बादी को रोकना। वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज की सबसे उपयोगी तकनीकों में से एक है। यदि हम वर्षा के पानी को बचाकर जमीन के भीतर पहुंचाएं, तो भूजल स्तर बढ़ सकता है। गांव में पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना भी बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधे भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां अधिक पेड़ होते हैं, वहां वर्षा भी संतुलित होती है और जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमें अधिक जल से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष केवल छाया नहीं देते, बल्कि धरती के जल पर संतुलन बनाए रखते हैं। प्रिय साथियों, हमारी संस्कृति ने सदैव जल को सम्मान दिया है। भारत में नदियों को माँ कहा जाता है, गंगा को माँ और यमुना को यमुना मैया कहकर पुकारते हैं। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। पुराने समय में लोग तालाबों और कुओं की पूजा करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जल ही जीवन का आधार है। हर बूंद की कीमत हम सब जानते हैं। जब नई पीढ़ी जागरूक होगी, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आएगा। आज विश्व भर में सेव वाटर सेव लाइफ अर्थात जल बचाओ जीवन बचाओ का संदेश दिया जा रहा है। यह केवल नारा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता को बचाने का मंत्र है। आइए हम सब मिलकर यही संकल्प लें कि हम जल की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे, नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखेंगे, वर्षा जल संरक्षण करेंगे। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आना।

0: हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली देश की पहली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना यूपी कैंप का शुभारम्भ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाभियान 2026 की शुरुआत करते हुए इसके लोगो का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: इस अवसर पर श्रावस्ती स्थित गुलरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य

0: बच्चे के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल को देश का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि यह उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का कल समापन हो गया। आखिरी दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी मंथन हुआ।
2: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए कि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी 21 जून तक सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारम्भ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
3: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। एक पेड़ माँ के नाम, यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किए गए। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ जनपदों में तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी जनपदों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुक्त ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुराहताल

0: अलावा रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव हाजिर हूँ एक नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच, जानकारियों और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम आज सुबह के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा और निधि का प्यार भरा नमस्कार। नई किरण, नई उम्मीद, हर मन में जगी विश्वास, इसी भाव के संग दोस्तों आज का ये सफर आगे बढ़े, क्यों निधि?
1: बिल्कुल, मैं भी अपने सभी श्रोताओं को बोलना चाहूंगी कि सुप्रभात, नमस्कार, और आज का दिन आप सभी के लिए, हमारे सभी सुनने वालों के लिए शुभ हो, अच्छा हो और बहुत खास हो अंजलि, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नया मौका होता है जीने का, तो इसे पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ शुरू करना चाहिए, क्यों?
0: और शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से।
1: बिल्कुल,
0: तो आज का सुविचार है, आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन अगर बात सच्ची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। तेज आवाज नहीं, ऊंची सोच लोगों का दिल जीतती है, और अगर हम तेज आवाज में बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वह सच्ची हो, लेकिन अगर बात में सच्चाई है तो वही बात धीमी भी असर करती है।
1: क्या बात है अंजलि, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन यहाँ पर यह कहना बेहद जरूरी है कि आवाज का जो शोर होता है ना, वो कानों तक तो पहुंचता है, पर जो अच्छी बातें होती हैं, सच्ची बातें होती हैं, वो दिलों में उतर जाती हैं। जहां शब्दों में मिठास हो और सुनने वाले खुद ही रुक नहीं पाते उस आवाज को सुनने के लिए।
0: क्यों अंजलि, क्या बात कही। और जानती हो, अब हमारे जो श्रोता हैं, अपनी आवाज के माध्यम से ही तो हम तक पहुंचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन तेज आवाज के साथ नहीं, आकाशवाणी की सच्ची बातों के साथ,
1: मधुर आवाज के साथ,
0: तभी तो अपना प्यार अब वो अपने पत्र के माध्यम से हमें बताते हैं, और ये बताते हैं कि उनका हमसे कितना जुड़ाव है।
1: बिल्कुल,
0: है
1: ना अंजलि, जिस तरह से पत्र आते हैं, ईमेल्स आते हैं, और जिस तरह से कॉल्स आते हैं, उससे ये लगता है ना कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कितना अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल, उनको अच्छा लग रहा है, और जो उन्हें नहीं भी अच्छा लगता है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो पत्र के माध्यम से ही बताते हैं। तो अब हम अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल,

श्रोताओं, ये जो गीत आप सुन रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म अनुरोध से। आवाज है किशोर कुमार की और ये गीत राग यमन पर आधारित है। राग यमन कल्याण से बना है। इसमें आरोह अवरोह दोनों सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मध्यम तीव्र लगता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। मुगल काल में इसका नाम यमन पड़ा। पहले इसे कल्याण के नाम से जानते थे। इसी राग की ये विशेषता है कि जब न लगे मन तो गाइए।

0: आकाश की सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं जब मन में विश्वास की ज्योति जग जाती है और जब हमारे सपने जुड़े हों कला संगीत संवेदनशीलता से, तो क्या ही कहने। ऐसा ही एक समायोजन आयोजन होने वाला है कल यानी 7 जून लखनऊ में, जो है चारा साज सीजन 2। इसमें संबंधित बांधवी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा वाजपेयी से रिंकी शर्मा की बातचीत अब हम आपको सुनवाते हैं। प्रस्तुत करता है रमनप्रीत सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल सपने नहीं देखते बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास भी करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विशेष आयोजन की जो कला संगीत संवेदनशीलता और समावेशन का सुंदर संगम बनने जा रहा है। और ये संगम जब किसी सार्थक उद्देश्य से जुड़ता है तो वो केवल एक कार्यक्रम नहीं रह जाता बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव का माध्यम भी बन जाता है। ऐसा ही एक विशेष आयोजन 7 जून को आयोजित होने जा रहा है, चार साज सीजन 2। इस विशेष कार्यक्रम के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आज हमारे साथ है बांधवी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: सभी को सादर नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि चार साज सीजन 2 क्या है और इसके पीछे क्या सोच और क्या उद्देश्य है।
2: चारा साज शब्द का अर्थ ही होता है हीलर, मतलब किसी को हील करना, इलाज करना, डॉक्टरी करना, जैसे चारा साज ही कहते हैं यानी इलाज करना। तो ये मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मैं दिव्यांगों के लिए बहुत वर्षों से कार्य करती थी, उसमें उनके स्पोर्ट्स कराती थी, उनको स्पोर्ट्स के माध्यम से जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, वो मानसिक मंदित भी, जो अन्य कई कैटेगरी के विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए काम करती थी। लेकिन उसी में कई बच्चे ऐसे आते थे जो खेल के साथ साथ

0: कल्चरली बहुत स्ट्रांग है, जिनमें कोई ना कोई ऐसी कला है, आर्ट फॉर्म है, कुछ उसमें गाते बहुत अच्छा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे बजाते हैं, कुछ नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे थे वो लगातार मुझसे कहते थे कि हम लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा मंच मिले तो वो हम लोग भी एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जैसे सामान्य कलाकारों को हम लोग देते हैं, कोई अच्छा आर्टिस्ट है उसको एक बड़ा स्टेज देते हैं, तो वैसे करते करते वो एक होता है ना कि कलाकार भी एक उनका अपना एक सेल्फ सस्टेनेबल एक चीजें होती हैं कि वो अपना उसे अर्न भी करते हैं, यानी अपनी
1: जी
0: कला तो दिखाते ही हैं, लोग सुनते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी जीविका भी उससे चलाते हैं। लेकिन जो हमारे दिव्यांग कलाकार हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं होता था कि उनको भी उतने बड़े मंच मिले।
1: जी
0: तो ये वहीं से एक शुरुआत हुई। पिछले वर्ष मैंने इसकी शुरुआत की, 4 साल की, और मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ नाम भी रखना चाहिए जो इसको एक दिखाता हो, बताता हो, उसका अर्थ भी हो कुछ ना कुछ ऐसा। तो ये बांधवी फाउंडेशन, साहस स्पोर्ट्स और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, क्योंकि अगर वो लोग हमारे साथ नहीं होते तो भी थोड़ा सा मुश्किल होता, तो भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है। उनके साथ मिल करके हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष कराने का एक प्रण लिया है।
1: जी मिलकर चलेंगे तो लंबा सफर भी बहुत आसान और छोटा हो जाएगा। ये जो विशेष आयोजन है, इसमें अभी आपने बताया कि दिव्यांग जनों को भी शामिल कर रहे हैं, तो कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इस आयोजन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: इसमें दिव्यांग जो बच्चे हैं या युवा हैं वो तो इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 4 साल का मतलब ही होता है हील करने वाला, यानी हम अपनी सोसाइटी को एक ऐसा बनाएं जो एकदम अलग थलग उनको नहीं रखे, केवल दिव्यांग जनों का ना हो कार्यक्रम, बल्कि हमारी सोसाइटी के जितने अन्य लोग हैं वो भी उनके प्रति उतने ही संवेदनशील बने। हम उन पर केवल दया नहीं दिखाएं, हम उनको अपने साथ ले करके चले, कंधे से कंधा मिला करके। तो इसमें हमने सबसे पहले बात की डॉक्टर से, एक डॉक्टर आनंद ओझा हैं, पूर्व निदेशक हैं सिविल हॉस्पिटल के, उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा मैं दिव्यांगों के लिए काम करती हूँ, वो चूंकि लिखते भी बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा चलिए मिल करके करते हैं हम लोग डॉक्टर्स उसमें साथ देंगे आपका, और आप उन बच्चों को भी आगे बढ़ाइए। तो पिछले वर्ष ये उनसे बातचीत के बाद ये शुरुआत हुई, और उसके बाद लगातार इसमें अनेक डॉक्टर जुड़ते चले गए, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर आनंद ओझा जी हैं, डॉक्टर राजेश सिंह जी हैं सिविल हॉस्पिटल से, डॉक्टर आशीष माथुर बहुत फेमस पेडियाट्रिशियन है लखनऊ के, डॉक्टर निधि निरंजन जी हैं, डॉक्टर रेणु जैन गायनकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर आलोक दीक्षित जी हैं, डॉक्टर सचिन ओझा हैं, डॉक्टर समर हैं, इस तरह से बहुत सारे डॉक्टर्स जो आए साथ में कि नहीं हम इन कलाकारों को भी अपने साथ साथ ले करके चलेंगे। और ये डॉक्टर्स भी उतने ही बेहतरीन गायक हैं, अपने इलाज करने के साथ साथ बहुत बेहतरीन गायक हैं ये।
1: बहुत ही सुंदर संगम, एक तरफ डॉक्टर है और एक तरफ दिव्यांगजन है, दोनों ही हमारे समाज का बहुत खास हिस्सा है। तो इस संपूर्ण आयोजन में कौन कौन सी गतिविधियां दर्शकों को देखने को मिलेंगी मंच पर?
0: गायन का ही कार्यक्रम है तो इसमें डॉक्टर्स अपने गीत प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारे दिव्यांग कलाकार हैं, जिसमें एक स्वरा चंद्रा एक बच्ची है 10 साल की, लेकिन बहुत खूबसूरत वो गाती है। आप उसको जब सुनेंगे, अभी कार्यक्रम में आप लोग आएंगे और उसको सुनेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन गायिका है, यानी एक सामान्य व्यक्ति जैसे गाता है उससे भी कई मतलब कई गुना वो बेहतरीन गायिका है। तो उसको अगर और थोड़ा रिफॉर्म किया जाए तो वो एक बहुत मतलब हिंदुस्तान की एक बहुत श्रेष्ठ गायिका के रूप में निकल सकती है। ऐसी एक सबाबली जी है, वो रायबरेली से आ रहे हैं, वो भी एक युवा बच्चा है, गाता है बहुत अच्छा। अनूप चौधरी हैं, दिव्यांशी मिश्रा हैं, सोनल श्रीवास्तव हैं, नमन कुशवाहा हैं, ये बच्चे अभी सीख रहे हैं भातखंडे में, तो इनको भी जब एक मंच मिलेगा तो वो प्रोत्साहन भी इनको मिलेगा कि नहीं हमें इसको और अच्छे से सीखना है।
1: तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिव्यांग प्रतिभागियों की प्रतिभाओं और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के लिए इस कार्यक्रम में क्या विशेष पहल की गई है?
0: इसमें ये संगीत का कार्यक्रम है, इनको हम एक मंच देंगे, साथ साथ इन दिव्यांग बच्चों का सम्मान करेंगे, डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे, ये सब इसमें जिसका जिस बच्चे का जो तैयार है, किसी ने अपनी ठुमरी तैयार की है, किसी ने दादरा तैयार किया है, कोई बच्चा अपना फिल्मी बहुत अच्छे गाने प्रस्तुत करना चाहता है, तो इसमें अलग अलग प्रस्तुतियां होंगी हर एक व्यक्ति की।
1: तो अगर हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो इसकी तिथि, समय, स्थान और जो भी आवश्यक जानकारी में शामिल होने के लिए जरूरी हो वो आप हमारे श्रोताओं से साझा करें।
0: ये कार्यक्रम 7 जून को शाम 5 बजे रायुमानाथ बली ऑडिटोरियम में है, और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, कि वो सब हमारे इन दिव्यांग बच्चों को भी सुनने के लिए और

0: हमारे विशिष्ट जन डॉक्टर्स को भी सुनने के लिए वहां जरूर आए। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई टिकट्स नहीं है। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से इनके लिए कुछ वहां करना चाहे तो वो डोनेट कर सकता है, लेकिन सभी लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए। एक थोड़ी सी जानकारी मैं और आपको देना चाहती हूँ कि इन दिव्यांग हमारे जो कलाकार हैं उनका ही एक बैंड अनुनाद बनाया है मैंने, कि इसमें हम इन बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे, इन युवाओं को ट्रेनिंग देंगे जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, और वो सीख करके मंच पर और सुंदर प्रस्तुतियां दे सकें। और वो ट्रेनिंग इन बच्चों की निःशुल्क होगी, उसमें कोई उनका शुल्क नहीं है। तो जो कलाकार बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो इस संगीत को सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको बता देती हूँ कि 9415835522। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वो सीखें भी, परफॉर्म करें, एक अच्छे कलाकार बने, एक अच्छे मनुष्य बने, और हम सब मिल करके अपने जो जितने भी हमारे इस तरीके के, चाहे वो हमारे दिव्यांग स्पेशली एबल्ड कलाकार हों, चाहे महिलाएं हों, स्त्रियां हों, यानी एक समाज का जो एक पूरा है वो हम सबको लेकर कर चलें और अपने देश का विकास करें।
1: बहुत ही अच्छा प्रयास है और उम्मीद है कि ये कार्यक्रम सफल होगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत आभार आपका।
1: डॉक्टर सुधा वाजपेयी जी थी आज हमारे साथ और हमें जानकारी दी चारसाज सीजन 2 के बारे में। निश्चित रूप से ये आयोजन केवल कला और संस्कृति का उत्सव नहीं, बल्कि प्रतिभा, संवेदनशीलता, समावेशन और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने का एक सुंदर प्रयास है। हम सब आपके साथ हैं और इस आयोजन के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको शुभेच्छा।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे चारा साज सीजन 2 से संबंधित बांधवी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुधा वाजपेयी से रिंकी शर्मा की ये बातचीत। बहुत ही अच्छी जानकारी थी सुधा जी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बताया कि 7 जून को राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में शाम 5 बजे से ये आयोजन आरंभ होगा, तो हमारे सभी श्रोता जो इच्छुक हैं वहाँ जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमनप्रीत सिंह। निधि, अब हमने श्रोताओं को आज कौन सा विशेष दिन है इसके बारे में जानकारी दे दें।
3: जी,
2: तो आज है विश्व कीट दिवस या वर्ल्ड पेस्ट डे। हर साल इसे 6 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले बीजिंग में 6 जून 1917 को ये दिवस मनाया गया था। कीट इंसान और उनके खाद्य पदार्थ या उनसे उनके साथ जो उनमें रहने वाले हानिकारक रूप से जो कीट होते हैं वो फसलों को कैटरपिलर या टिड्डे हानि पहुंचाते हैं। रखे हुए खाद्य पदार्थ जैसे अनाज और खाद्य सामग्री को चूहे, सिल्वर फिश कपड़ों को छेद करती हैं और ये दीमक इमारती लकड़ियों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस दिवस का क्या उद्देश्य है? यही है कि लोगों को कीट पतंगों से साफ होने वाली जो बीमारियाँ हैं और इस रोगों के प्रति जो जागरूकता है उसे फैलाएं। कीटों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कीटनाशक, जैविक नियंत्रण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं।
3: क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि किस तरह से लोगों को कीट पतंगों से होने वाले नुकसान से जानकारी पहुंचाई जाए। और इसी के साथ एक और जो महत्वपूर्ण दिवस आज के दिन यानी 6 जून के दिन हम मनाते हैं वो है विश्व हरित छत दिवस।
2: अच्छा,
3: आपने सुना है इसके बारे में?
2: हाँ, सुना है लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं पता है।
3: हाँ, मैं बताती हूँ कि ये जो विश्व हरित छत दिवस है इसको इसलिए मनाया जाता है जो पर्यावरण और शहरी हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इमारतें होती है, जो शहरों में इमारतें बनी होती है तो हरियाली थोड़ी सी कम होती है ना, क्योंकि लोग रहते हैं तो
2: बिल्कुल
3: तो,
2: आजकल के समय में जब हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है, लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं
3: तो उस वैसे में हरियाली थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इमारतों की जो छत है उस पर जो पौधे लगाने का महत्व है उसको उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि जो इमारतें हैं तो हरियाली भी कम ना हो और लोगों के जो रहने की जगह है वो भी बनी रहे। तो छत पर पेड़ पौधे लगाएं, प्लांट्स लगाएं जिससे नमी और जो धूप से बचाव है वो होता रहेगा। तो इस उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है।
2: बहुत अच्छी बात बताई तुमने निधि, तो अब हम सुन लेते हैं।
3: हाँ भाई, इतनी हरी हरी बातें कर ली तो कुछ मौसम का गाना भी हो जाए।
2: बिल्कुल।

तो भाई ये जो खूबसूरत सा गाना था ये गाया था लता मंगेशकर ने और अभिनेत्री फिल्म का ये गीत था। और आपको ये भी बता दें कि ये राग कलावती पर आधारित था। कलावती के बारे में बात करें तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय राग है जिसे इसकी सरलता और मनमोहक प्रकृति के लिए जाना जाता है ना अंजलि।

0: तो निधि, अब हमने हमारे श्रोताओं को मौसम का हाल बताएं।
1: बिल्कुल बता
0: दीजिए। पेड़ों की छाया में बैठा मन कुछ राहत पाता है, ठंडी हवा का झोंका जैसे गीत सुनाता है, आम की खुशबू बगिया में मीठी यादें ले आती हैं, घड़े का ठंडा पानी, ठंडी लस्सी सबको बहुत सुहाते हैं, गर्मी की ये छोटे सुख भी जीवन को महकाते हैं। तो इन गर्मी की बातों के साथ जान लेते हैं आज का मौसम। बता रहे हैं सीनियर साइंटिस्ट IMD मोहम्मद दानिश जी।
2: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज मौसम कैसा रहेगा तो हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज।
3: मौसम देखिए आज साफ रहेगा और तापमान में अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी
2: जी।
3: कहीं ना कहीं 3-4 दिनों में तापमान अच्छा बढ़ जाएगा, तो ऐसी कोई अलर्ट का ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी का ऐसा शुरू हो जाएगा।
2: अच्छा, तो ये कितने दिनों तक की मतलब मौसम अभी
3: आने वाले दिनों में इस वीक पूरा अभी यहाँ से एकदम साफ ही है और फिर गर्मी का सबब बना रहेगा।
2: अच्छा अच्छा ठीक है दानिश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
3: धन्यवाद।
0: तो निधि, अब हम अपने श्रोताओं को कुछ इतिहास की बातें बताएं।
1: चलिए बता देते हैं।
0: आज यानी 6 जून 1990 में भारत सरकार ने पासपोर्ट की वैधता को 10 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया था।
1: अच्छा,
0: और क्या हुआ था आज के दिन? आज

0: 1974 में आज ही के दिन मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि से विभूषित किया गया था,
1: यानी कि आज ही के दिन उनको छत्रपति शिवाजी की उपाधि से विभूषित किया गया।
0: हाँ बिल्कुल। और नेहा कक्कड़ का जन्मदिन है, है ना?
1: उनको कैसे भूल सकते हैं।
0: 6 जून 1988 में पार्श्व गायिका नेहा कक्कड़ का जन्म ऋषिकेश में हुआ
1: और उन्होंने कई सारे जो बॉलीवुड गाने हैं वो गाए। 2006 में कक्कड़ ने भारतीय टेलीविजन शो इंडियन आइडल सीजन 2 में भी हिस्सा लिया था।
0: बिल्कुल।
1: और तो, ये कुछ बहुत जो सुपर डुपर हिट गाने रहे थे उनमें मलाडी टेंस और बहुत से गाने जो थे वो हिट रहे उनके।
0: बिल्कुल। तो अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक गीत।

ये जो खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे हैं ये फिल्म रोज़ा से है और आवाज़ है एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा की, और इसके साथ ही आपको हम इसके और डिटेल के बारे में बताएंगे। पहले आप सुनते रहिए ये खूबसूरत सा गीत।

और ये जो खूबसूरत सा गीत आपने सुना, ये राग शिवरंजनी पर आधारित है और पहाड़ी राग पर आधारित है। जो दोनों रागों की इसमें मधुर झलक मिलती है, जो पर्वतीय वादियों के अनुकूल और रोमांटिक प्राकृतिक का एहसास देते हैं।

0: निधि क्या बताने जा रही हो? हाँ, जल्दी से बताओ
1: अंजलि, हम जल्दी से आपको बता दें कि बर्थडेज की बात कर लेते हैं तो आज सुनील दत्त विश्व प्रसिद्ध अभिनेता जो रहे हैं जिनका जन्म भी 6 जून 1929 को हुआ और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की रेडियो सीलोन से अपने करियर की, बस इनकी जानकारी देना बहुत जरूरी था हमें।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, जून का महीना जीवन का अमृत है। गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, ये हमारे धैर्य, करुणा और जिम्मेदारी की परीक्षा है। अगर हम प्रकृति और समाज के प्रति सजग रहे तो हम बेहतर, सुरक्षित और खुशहाल वातावरण बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अंजलि श्रीवास्तव
1: और मैं निधि श्रीवास्तव
0: आज सुबह कार्यक्रम से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इसी के साथ नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम भी समाप्त हो रहा है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

0: हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
8: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान

0: सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इजराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment.

0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले
1: आदा खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय महीशत आलमी इक्तसादी बुहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की जबरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। कल शाम दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में कायम है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुल्क बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को तरजीह देते हुए अपनी तेज रफ्तार इस्लाहात के साथ आगे बढ़ेगा।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया एक सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रही है और भारत माहौलियाती तहफ्फुज़ के साथ इक्तसादी तरक्की को मुतवाजन बनाकर इस रास्ते पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले जनाब मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा दिया कि भारत की काबिले तजदीद तवानाई की 250 गीगावाट की सलाहियत में से गुजरात अकेले ही 50 गीगावाट फराहम करता है जो भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई का एक अहम पांचवां हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अमोनिया की तरफ मुंतकिल होने में एक बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार है जो तवानाई के मैदान में खुदकफील बनने के लिए लाजमी है।
2: दुनिया अब हरित युग की तरफ ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
1: सूरत में यकसर तब्दीली के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहर के जज्बे और इसकी सरसब्ज शहर में मुंतकिली की तारीफ की। उन्होंने सूरत के सर्कुलर आबी मईशत के मॉडल और कचरे से दौलत बनाने की पहल को सराहा जो पिछले 12 साल में एक अवामी तहरीक बन गई है। सूरत पहुंचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले हजीरा का दौरा किया और सनती नीज बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन जाब्तों को मजीद आसान बनाया है जिनके तहत सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां FPIs सरमाया लगाती हैं। इस ताज़ा फ्रेमवर्क का मकसद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए

0: ये सरमायाकारी को मजीद आसान बनाना और अमल दरामद की पेचीदगियों को कम करना है। तफसील मुंबई के हमारे नामनिगार से।
1: इस ताज़ा फ्रेमवर्क के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां सरमाया लगा रही हैं उन्हें मजीद सहूलत दी जाएगी, क्योंकि बहुत सी बंदिशें ख़त्म कर दी गई हैं। RBI ने आम और तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौजूदा ज़ुमरों को मरकजी सरकारी तमस्कात और रियासती सरकारी तमस्कात को एक दूसरे में ज़म कर दिया है। माली साल 2026-27 के लिए मरकजी सरकारी तमस्कात के लिए सरमायाकारी की हद साल की पहली छमाही के लिए 4,62,490 करोड़ रुपए पर और साल की दूसरी छमाही के लिए 4,77,600 करोड़ रुपए तय कर दी है। रियासती सरकारी तमकसात के लिए जवाबी हदूद 1,53,043 करोड़ रुपए और 1,64,242 करोड़ रुपए भी तरतीब मुकर्रर किए हैं। ये ताज़ा हिदायत फौरी तौर से लागू हो गई हैं। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ज़िरात और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में 9,42,000 से ज़्यादा किसान जून के महीने तक खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल की यह मुहिम एक मुल्कगीर अवामी तहरीक बन गई है। इस मुहिम का आगाज़ ज़िरात और किसानों की बहबूद की मरकजी वजारत ने किया है, जिसका मकसद कीमियावी खादों के मुतबादिल इस्तेमाल को फ़रोग देना, मिट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखना और मुस्तकिल ज़रई तौर तरीक़ों की हौसला अफजाई करना है। एक रिपोर्ट।
2: ज़राअत की वजारत ने बताया कि इस मुहिम के तहत अभी तक 17,800 से ज़्यादा अभ्यदारी प्रोग्राम मुनक़द किए जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 6,98,000 किसानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा तकरीबन 3,700 तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किए गए, जिनमें 1,57,000 से ज़्यादा किसानों को कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल, मिट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखने और साइंसी ज़राअत की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। वजारत ने बताया कि इस तरबियत का मकसद मिट्टी की तवील मुद्दती जरखेज़ी और कीमियावी खादों पर ज़्यादा इन्हिसार में कमी लाना है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरों की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी करके इसे 7 जून तक कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई एक पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की रात तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। CBSE के मुताबिक उसने तलबा के मफाद के खातिर ये फैसला किया है कि ताकि दरख्वास्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त फराहम किया जा सके। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख का सबूत थी। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख 6 जून थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों फरीक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, जिसका मकसद अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाना है, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और आवाम के दरमियान रवाबित शामिल हैं। जनाब खनाल अभी भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत के पास नेपाल के साथ एक वसी तर एजेंडा है, जो तरक्याती तआवुन और आवाम के दरमियान रवाबित, तिजारत और सरमायाकारी तक मुहित है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इस कसीर जहती शराकत दारी को मजीद मुस्तकम करने का ख्वाहां है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अपनी आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की महज लफाजी और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न हो सकने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुनाफरत फैलाने वाले अपने सियासी मफादात के लिए बहुत सी गलत मालूमात फैलाकर और गुमराह कुन बातें करके काउंसिल में अपनी मौजूदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो जनरल असेंबली को दी गई काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर एक मुबाहिसे के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। अमरीकी फौजों ने ईरान के उन 4 ड्रोन्स को मार गिराने के बाद जिन्होंने

0: इलाकाई समंदरी ट्रैफिक को निशाना बनाया था। आबनाए हुरमुस के करीब ईरान की साहिली निगरान रडार तंसीबात पर हमला किया है। अमरीकी मरकजी कमान ने बताया कि उसने मजीद हमलों से बचने के लिए ग्रुप और किशम जजीरे पर ईरान के साहिली निगरान रडार मकामात पर हमला किया है। यह हमला 3 महीने से जारी इस जंग में ताज़ा तरीन हमला है, जिसकी वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान अमन बातचीत में जारी तातुल में और भी शिद्दत आ गई है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें रुकी हुई हैं। इन कोशिशों में जिस बात की वजह से तातुल आगाया हुआ है, ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों में से अरबों डॉलर जारी करने का ईरान का मुतालबा। ईरान के अफसरान ने किसी अबूरी समझौते पर पेशरफ को फंड्स के इंजमात को खत्म करने से जोड़ दिया है, जबकि अमरीका मुजाकरात में इस मामले पर पीछे हटने से हिचकिचाता रहा है, क्योंकि वो इस मामले को मुजाकरात का एक अहम पहलू समझता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अब जबकि केरल में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो चुका है, भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के शिमाली जिलों में 9 जून तक नहायत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मल्लापुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगाड अजला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलबत्ता कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर आखिरी मरहले में हराकर ये जीत हासिल की है। नॉर्वे शतरंज के मुकाबले में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा लेने वाले प्रज्ञानंद ने इस मुकाबले का बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम किया है। इन मुकाबलों के दौरान उन्होंने आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 मरतबा हराया है। गोवा के शहर मरगांव में जारी सैफ फुटबॉल खवातीन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है। भारत अब तक 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने गुजरात के शहर सूरत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक अवामी रैली से खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में अखबार की शह सुर्खी है, भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इकतसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की ज़बरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में 18 नमो पार्कों की शुरुआत, इसी साल लगेंगे 15 लाख पौधे। अखबार इंकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान को नुमाया किया है कि इंसानियत और इंसाफ के सामने AI सबसे बड़ा चैलेंज, मसनूई ज़हानत की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल पर जोर। अखबारात ने सनअती हल्के के इस रद्दअमल को अहमियत दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एरानात सरमायाकारी बढ़ाने वाले। इसके अलावा अखबारात ने मीनाक्षी मदन राय की पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इकतसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रगिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमा मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आप

गीत और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं ताकि आप अपने मेल भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। आपके पत्र आपके मेल @gmail.com।

और कार्यक्रम शुरू होते ही हमारे पास मेल आने शुरू हो गए हैं। पहला मेल आया है जिला खरकौन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा का। ये सुनना चाहते हैं प्रेम कहानी फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और अगला मेल है हमारे पास बरेली से शहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान का। और दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं।

0: लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी

और अगला मेल है हमारे पास जिला रायबरेली से रामराज राजभानु रामशंकर पत्रकार बाही वाले रक्षा मौर्य मिर्जा तुराग बेग और पप्पू पासी का। और एक मेल है हमारे पास छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया जयदेव तामुरिया तुषार देव तामुरिया डॉली बेबी पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया मास्टर अल कबीर। एक और मेल है हमारे पास खुज्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। आप सभी सुनना चाहते हैं साजन फिल्म का गीत अनुराधा पुंडवाल की आवाज़ में।

हमारे पास मेल है राम खिलावन, अविनाश द्विवेदी, विजय पांडे, मनीराम, देवेंद्र दीक्षित, बब्बू यादव और राम प्रकाश का। ये हैं हरदोई से और इन्होंने लिखा है आकाशवाणी लखनऊ को ये बहुत प्यार करते हैं और इन्हें यहाँ से प्रसारित सारे कार्यक्रम सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनना चाहते हैं अपनापन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और हमारे पास मेल है लक्सर हरिद्वार से मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां का। ये भी सुनना चाहती हैं अपनापन फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। हमारे पास मेल है लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी का। ये लिखते हैं, आपके द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आकाशवाणी लखनऊ को बहुत प्यार करता हूँ। आप सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती है। आज का विविधा कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है, मेहनत पर भरोसा रखो, मेहनत ही सफलता का सबसे बड़ा मूल है। आपकी कड़ी मेहनत और लगन ही आपका भविष्य तय करती है। मेहनत एक दिन आपका वक्त ज़रूर बदल देगी। बहुत ही सुंदर बातों के साथ इन्होंने मेल भेजा है। और हमारे पास एक मेल और है, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का। आप सभी सुनना चाहते हैं नदिया के पार फिल्म का गीत हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज़ों में।

और श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास मेल आया है जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक का, और दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। आप सभी सुनिए क्रोधी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अब यहीं समाप्त हो रहा है। आप इसी तरह अपने मेल हमें भेजते रहिए और हम आपको सुनवाते रहेंगे आपकी पसंद के फिल्मी नगमे। तो दीजिए एनजी श्रीवास्तव को इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए फिरोजाबाद और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
2: फिरोजाबाद में जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर बखबू सारंग के मार्गदर्शन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों ने तंबाकू के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव सुश्री योगेश शिवा ने जोर देकर कहा है कि नशे की लत न केवल इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उसके परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। फिरोजाबाद के विकास भवन सभागार में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के जनपद स्तरीय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया।

0: किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससीजा, मेयर कामनी राठौर और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव के साथ प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैस एवं अपर जिलाधिकारी मोहन लाल गुप्ता ने मेधावियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। समारोह में जिले के टॉप 10 में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया। फिरोजाबाद में शासन के निर्देशों पर 1 जून से 30 जून 2026 तक भूमि विवादों के पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए एक विभिन्न का अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पिछले एक वर्ष में आए एक भूमि विवाद को दोबारा खोला गया, जिसके निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। इनमें जसराना, फिरोजाबाद, शुकावास, सिरसागंज और टूंडला के मामले शामिल हैं, जिन्हें पुनः स्थलीय सत्यापन के लिए उप जिलाधिकारियों को पोर्टल पर भेज दिया गया है। अभियान के तहत केवल कागजी कार्रवाई न करके राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर साक्ष्यों के आधार पर अवैध कब्जे हटाने, पट्टे राजस्व अभिलेखों में सुधार, रास्ता, पैमाइश व वरासत से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान करेंगी। साथ ही प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर न्याय पंचायत वार ग्राम चौपालों में भी आयोजित की जाएंगी। फिरोजाबाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले के स्वास्थ्य योजनाओं और चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, स्वास्थ्य केंद्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बेहतर काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने की बात कही। मौसम विभाग की हीट वेव अलर्ट को देखते हुए उन्होंने सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कूलर, ORS, घोल और ठंडे पानी से युक्त कूलिंग सेंटर सक्रिय करने तथा सरकारी डॉक्टर द्वारा बाहर की दवाएं लिखने पर पूरी तरह से रोक लगाकर फार्मेस्ट काउंटर पर दवाओं की सूची प्रदर्शित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। फिरोजाबाद में पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य जिलाधिकारी ने 2 महत्वपूर्ण पर्यटक गए स्थलों का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी सबसे पहले सिरसागंज में 24.24 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आर संस्कृत संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने मल्टीपर्पज हॉल में सुव्यवस्थित स्टेज बनाने और भवन की मजबूती व तकनीकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था के इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के निर्देश दिए।
1: फिरोजाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
2: जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम जौनपुर में सामूहिक आयोजन कर सुना गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जनपद के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक व अस्मरणीय क्षण बन गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से सीधे जौनपुर से लाइव जुड़े। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ सीधे जुड़ने और जौनपुर का मान बढ़ाने के लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। जनपद के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत प्रेरणादायक व गौरवपूर्ण है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास, सांस्कृतिक और जन भागीदारी एक नई ऊर्जा मिलेगी। जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पाल के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं को त्वरित और प्रभावी निस्तारण तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने का उद्देश्य संचालित गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड महाराजगंज के ग्राम पंचायत बिरवा में मुख्य विकास अधिकारी धू खड़िया की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जन चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं एवं शिकायतों का गंभीरता सुना गया तथा उनके गुणवत्तापूर्ण और संबंधपूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कि शासन की मंशा का अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तथा योजनाओं को लाभ पहुंचाना तथा ग्रामीण की समस्या को स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। शासन स्तर पर विभिन्न कोर्ट से लंबित वादों के लिए निस्तारण के आधार पर मई की रैंकिंग जारी की गई। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अवस्थ ने कहा कि शासन स्तर पर जारी रैंकिंग में जनपद को प्रदेश में पहला स्थान मिला। यहां 5 कोर्ट मिलकर कुल 250 वादों को कम से कम निस्तारण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष सभी 5 कोर्ट से कुल 466 वादों का निस्तारण किया गया, जबकि मैनपुरी में 407 वाद हल किए गए, जबकि तीसरा स्थान पर आजमगढ़ जनपद रहा जहां 418, बलिया में 147, गाजीपुर में 160, मऊ जनपद को अलग अलग कोर्ट में कुल 187 वाद निस्तारित किए गए। जौनपुर जिले के रामपुर क्षेत्र के सदिरंगन गांव में 33/11 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इससे 7.92 करोड़ खर्च किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति शासन की ओर से मिल गई। नए उपकेंद्र बनने से 50 गांव और 21,000 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्विरोध निर्बाध बिजली की मिलेगी। वर्तमान में सदिरंगन के आसपास के क्षेत्रों के रामपुर पावर

0: हाउस से बिजली आपूर्ति की जाती है। इससे उपकेंद्र पर लोड अधिक होने से बिजली टिपिंग फॉल्ट और लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता परेशान थे। इसके मद्देनजर अपना दल इसके विधायक मड़ियाओं के विधायक डॉक्टर आरके पटेल ने नए उपकेंद्र के निर्माण के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। रामपुर के सदरनगंज में 33/11 KV का उपकेंद्र बनने के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया। इसके निर्माण में 7,92,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना कि इसके बिजली आपूर्ति स्थिरता आएगी और क्षेत्रीय विकास में गति मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब सभी लाभार्थी किसानों के लिए वर्ष में एक बार EKYC करना अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी किसान निर्धारित अवधि में EKYC नहीं करता तो किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। ऐसे किसान जिन्होंने 2025 से मार्च 2026 के बीच PM किसान योजना में EKYC नहीं कराई है, वह 30 जून के पूर्व अपनी EKYC प्रक्रिया पूरी करें, जिससे योजना को आगामी किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जानकारी देते हुए उप परियोजना निदेशक आत्मा कृषि प्रसार डॉक्टर रमेश यादव ने बताया कि EKYC पूरे होने के बाद ही किस्त जारी की जाएगी। किसान घर बैठे स्वयं फ्लेक्सियल EKYC कर सकते हैं। उप योजना निदेशक आत्मा कृषि प्रभार ने बताया कि योजना का अधिक पारदर्शी, प्रभावी, वास्तविक पात्र किसानों को सीमित रखने के उद्देश्य से वार्षिक EKYC अनिवार्य कर दी गई। PM किसान मोबाइल ऐप से किसान घर बैठे अपने स्वयं फेस्टियल EKYC कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक EKYC भी कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड व आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यकता होगी। जौनपुर के निगोह से जरौना तक जाने वाली 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण के लिए मछलीसर से सभा विधायक रागिनी सोनकर ने भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। सड़क सक्रिय और जर्जर होने के कारण राहगीरों को आवागमन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क 5.5 किलोमीटर चौड़ी होगी। सड़क किनारे के पूर्ण होने के बाद निगोह, जरौना सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को आगमन में काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ क्षेत्र के व्यापार और विकास में गति मिलने की उम्मीद है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
4: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
3: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: आकाशवाणी के उर्दू प्रोग्राम के सभी सामईन को आदाब। मैं आपका दोस्त आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं शम्सुल आरिफीन।
2: आदाब दोस्तों। जब भी उर्दू शायरी में बेहद आसान अल्फाज में दिल को छू लेने वाली बात करने का जिक्र आएगा, एक नाम सबसे पहले जहन में उभरेगा, डॉक्टर बशीर बद्र। वो शायर जिसने गजल को महलों और दरबारों से निकालकर आम इंसान के घर की दहलीज पर ला खड़ा किया।
1: आज की इस महफिल में हम गुफ्तगू करेंगे पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब की जिंदगी और उनकी शायरी के बारे में। बशीर साहब का ही एक बेहद मशहूर शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आइए आज के इस प्रोग्राम को बशीर साहब की यादों के नाम करते हैं। सुनते हैं उनका एक बेहद खूबसूरत कलाम।

0: 15 फरवरी 1925 को जन्मे बशीर बद्र साहब का असली नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की और सालों तक कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी शायरी।
1: एक दौर था जब गजल में बहुत भारी भरकम अरबी फारसी के लफ्ज इस्तेमाल होते थे। आम इंसान को उसे समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। ऐसे दौर में बशीर बद्र साहब ने आम फहम यानी वो जुबान चुनी जो हम और आप रोज बोलते हैं।

0: उन्होंने शायरी में चिराग, आंसू, तितली, किताब और दुश्मनी जैसे आसान लफ्जों को पिरोया। सुनिए उनका ये अंदाज। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो।
1: और एक और शेर जो आज के दौर के रिश्तों पर कितना सटीक बैठता है। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो।
0: वाह क्या बात है, बशीर साहब की यह खूबी है, बात बहुत गहरी होती है पर लफ्ज बेहद सीधे। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो।
1: वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो।
0: मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महवे ख्वाब है चांदनी, न उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का गुजर ना हो।
1: यह गजल की जैसे हिरन की आंख में पिछली रात की चांदनी, न बुझे खराबे की रोशनी कभी बेचराग ये घर ना हो।
0: कभी दिन की धूप में झूम के कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चले सदा कभी खत्म अपना सफर ना हो।

दोस्तों, शायर के दिल में जो दर्द होता है अक्सर वो ज़माने के दिए ज़ख्मों से ही निकलता है। बशीर बद्र साहब मेरठ में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और वहीं उनका अपना एक खूबसूरत आशियाना था, लेकिन साल 1987 के मेरठ दंगों ने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।

जी, और उनका घर उनकी सालों की मेहनत से जमा की गई किताबें, उनकी अनमोल लिखी हुई गजलें, सब कुछ उस आग में जलकर राख हो गई। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो मेरठ छोड़कर भोपाल आ गए, लेकिन उस आग की तपिश उनके अशार में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।

0: लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
1: एक और गजल में उन्होंने कुछ यूं इरशाद किया, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
0: कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा, और मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा।
1: सब उसी के हैं, हवा खुशबू जमीनों आसमां, मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा।

0: मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई, मुझे एक मुट्ठी जमीन दे, ये जमीन कितनी सिमट गई।
1: बराबर फरमाइए शेर
0: मुझे।

क्या जहां मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। तेरी याद आए तो चुप रहूं जो मैं चुप रहूं।

मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद चट गई। चंशेर और दूसरी गजल के जैसे मैंने अर्ज किया था, मुल्ला फरमाई कहीं चांद राह

कलाम की सादगी और गहराई के लिए साल 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और बाद में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी गजलों को जगजीत सिंह से लेकर पंकज उदास जैसे बड़े बड़े फनकारों ने अपनी

वक्त का पहिया घूमता रहा और ढलती उम्र के साथ साथ बशीर साहब को अल्जाइमर बीमारी ने घेर लिया। जिस शायर के अशार को पूरी दुनिया याद रखती है, वो शायर धीरे धीरे अपने ही शेर भूलने लगा।

0: और 28 मई 2026 को ईद उल अजहा के दिन आप इस दुनियाए फानी को छोड़कर अपने रब से जा मिले। उर्दू अदब से बद्र का मंजर चला गया, अल्फाजो मोहब्बत का कलंदर चला गया, अशार जिसके आज भी जिंदा है दोस्तों, दुनिया को छोड़कर वो सुखनवर चला गया।
1: तो दोस्तों, आकाशवाणी लखनऊ इस बुलंद शायर को खिराज अकीदत पेश करता है। हम फिर अगले प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। आसिफ इकबाल और शमसुल आरफिन को दें इजाजत।
0: आदाब।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
3: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
4: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
3: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वे पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज इसमें सुनिए हेमा उप्रेती के गाए अवधि लोकगीत। इनके स्वर में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं देवी गीत।

मैया दुवारे दुखियां थाड़ी। अभी आपने हेमा प्रीति के स्वर में ये देवी गीत सुना। इन्हीं की आवाज में अब हम आपको सुनवाते हैं खेमटा।

0: हेमा और प्रीति के स्वर में अभी आपने ये खेमटा सुना। संगत कर रहे थे नाल पर अवध बिहारी वर्मा, ढोलक पर थे राजकुमार, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर मुकेश कुमार और साइड रिदम पर शैलेंद्र सिंह। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ।
1: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
1: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज।
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है कस्मे वादे फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से। भारत ने कहा, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, आवागमन, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास

0: के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर मामले में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए बांग्लादेश से सहयोग लेता रहा है और उसके बाद ही वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई अनुरोध अभी बांग्लादेश के पास लंबित हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि रूस और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंध मजबूत हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही।
5: The negotiating team which came from
0: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। श्री पुतिन ने ये टिप्पणी कल सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच के दौरान कही। एक दिन पहले श्री जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के लिए खुले पत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष वार्ता का आह्वान किया था। श्री पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की का पत्र उन्हें गंभीर नहीं लगा। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पता चलता है कि रूस की युद्ध समाप्त करने की इच्छा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। भारत वर्तमान में स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस बीच श्री पुतिन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वैश्विक सॉफ्टवेयर बाजार में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के अनुसार क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेना ने गोरुक और केश्म द्वीप स्थित रडार केंद्रों को निशाना बनाया। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकू ही शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
6: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को

0: निपटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: अमरीका ने ब्रिटेन, डेनमार्क और कुवैत को लगभग $3 अरब के संभावित सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमरीकी विदेश विभाग ने ये जानकारी दी है। सबसे बड़ा रक्षा सौदा कुवैत के साथ किया गया है। इसके अंतर्गत कुवैत को लगभग $1.98 अरब की लागत से ड्रोन रोधी प्रणालियां और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। वहीं डेनमार्क को लगभग $84.20 करोड़ की लागत से 200 लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और संबंधित उपकरण खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन को लगभग $16 करोड़ की लागत से बड़े विमानों की सुरक्षा के लिए इंफ्रारेड प्रतिरोधक प्रणाली और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। प्रज्ञानानंद ने 18 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है चित्रपट से कार्यक्रम, इसमें सुनिए कुछ नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है लाइफ इन मेट्रो 2, आवाज़ें हैं सचिन टंडन और अकाशा की।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं यासर देसाई और जीत गांगुली की। इस गीत को लिखा है रश्मि विराट ने, संगीत जीत गांगुली का ही है और फिल्म का नाम है परमाणु।

आइए अब सुनते हैं आप जैसा कोई फिल्म का गीत मोहित चौहान की आवाजों में। इस गीत को संगीत दिया है रोचक कोहली ने और शरण रावत ने। गीत लिखा है गुरप्रीत सैनी ने।

आइए अब सुनते हैं वजीर फिल्म का गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत को लिखा है विधु विनोद चोपड़ा ने और संगीत दिया है

0: रीजन तो बता दो ना बोलने का।
1: और आइए सुनते हैं जीनियस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, संगीत हिमेश रेशमिया का, और इस गीत को लिखा है कुमार ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी लखनऊ है। 11 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म नगमों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।

बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। जी हाँ सामईन, इंतजार के लम्हे अब खत्म हुए, बातों और मुलाकातों के सिलसिले का आगाज हुआ। आप सभी सुनने वालों को राजेश्वरी का नमस्कार।

0: हेलो,
1: प्रतिशोध में किए गए कार्य से कुछ देर के लिए जरूर मिल जाती है संतुष्टि। और सर जी, बुद्धि, विवेक और ज्ञान से किए गए कार्य से मिलती है लाइफ टाइम संतुष्टि और मिलती है आत्म संतुष्टि। ये दिनकर सिंह की गारंटी है सर जी, दिनकर सिंह की गारंटी है।
0: दिनकर जी, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। कैसे हैं आप
1: जी? मस्त हैं। और सर जी, चित्रकूट दर्शन करने आइए, जरूर याद करेंगे और आपके साथ चलेंगे और पूरी पूरी दुकानें जो है मिठाई के लिए आपके लिए समर्पित कर देंगे और आपकी टीम के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में आप तशरीफ लाए हैं, गाना कौन सा सुनवाना है
1: जी? मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह रूबरू हूँ सर जी, और गाना सुनना है मुझे वही राम की तपोभूमि वाला, राम लखन का, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। और दो तीन चार मित्र हैं मेरे, हमारे देवी शंकर सुख जी हैं जो प्रिंसिपल रहे, रिटायर हैं, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, मांगी लाल चंदेल जी हैं, बेटा सिंह है, और हमारे जो है फूलचंद पाल जी हैं, विजय पांडे जी हैं, उर्दू के शायर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। लीजिए अपनी पसंद का ये गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते, मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: और कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। आपसे बारह दिन से बात हुई थी, आपके स्टूडियो आपसे मिलने आए, चार दिन से मुझे आज

0: बात हो रही है।
1: जी, गाना कौन सा सुनवाना है आपको?
0: वाला।
1: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो हेलो हेलो
2: The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
1: देखिए हमारे सुनने वाले किस तरह से फोन को होल्ड पर रख दे रहे हैं और उसे
2: लाइन पर बने रहे.
1: हेलो हेलो
3: हेलो
1: हाँ कौन साहब बोल रहे
3: हैं?
1: हेलो जी बताएं कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से फोन किया आपने?
3: हेलो
1: हेलो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही? हेलो मुझे लगता है कि टेलीफोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम हुई है.
3: Hello?
1: जी बताएं बताएं कहाँ से फोन किया है?
3: हेलो
1: हेलो मुझे लगता है कि टेलीफोन लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम है. खैर हमारे सुनने वाले लगातार कोशिश करेंगे क्योंकि अभी 11:10 हुए हैं, अभी 12 बजे तक ही प्रोग्राम चलेगा और कोशिश करें कि जब फ़ोन कॉल लगे तो पहली तौर पर गाने के बोल और फिल्म का नाम जल्दी से बताएं और बहुत देर तक होल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर जिस तरह के आप जहाँ से फ़ोन कर रहे हैं हो सकता है कुछ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर इसी तरीके से हम भी हेलो करें और आप भी हेलो करें, बात नहीं हो पाती. खैर गाना सुनिए.

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताएं कौन सा आप बोल रहे हैं।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा सर, आप ठीक हैं?
0: दुआएं हैं आपकी। क्या करते हैं आप?
1: बस मैं तो अपनी खेती बाड़ी करता हूँ और यहाँ कुछ अपने घर की काम करता हूँ।
0: अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकाशवाणी लखनऊ के इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। गाना कौन सा सुनवाना है?
1: मुझे गाना सुनाए कर लो मेरा एतबार यारो, सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो।
0: क्या बात, बहुत अच्छी फरमाइश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमेल बुगला से बोल रहा हूँ सर।
0: जी पूरन जी, क्या हाल है?
1: बस सर बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: आपकी दुआएं हैं, आपका इंतजार था, वो खत्म हो गया। कैसा मौसम, कैसा है राजस्थान का?
1: बहुत दिनों में आए हो आप।
0: काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है।
1: आप सभी को, आप श्रोताओं को इंतजार रहता है सर आपका।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आया करूँ, आपसे मुलाकात करूँ।
1: हाँ जी सर।
0: जी गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है आज?
1: जी सर, फिल्म का नाम है।
0: अच्छा,
1: गाने को बोलना चाहते हैं कि आप जो तीन मित्रों को याद कर लो।
0: जी जी बिल्कुल बताएं।
1: सबसे पहले तो आप हैं।
0: अच्छा, थैंक यू।
1: हाँ जी, सबसे पहले तो कि आपके लिए रहेगा सर ये खासकर।
0: जी,
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, इटावा से रोहित है, दिनेश और तमाम श्रोता भाई अभी सुन रहे कार्यक्रम।
0: वाह, बहुत शुक्रिया भाई आपका पूरन जी, धन्यवाद। गाना लीजिए, सुनिए।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्ते
1: जी, मैं जान मोहम्मद बोल रहा हूँ, ग्राम पोस्ट कुंडा सर, विकास खंड कैसरगंज, जनपद बहराई।
0: वाह, कैसे हैं भाई आप?
1: जी सर, आशीर्वाद है सर, अच्छे हैं,
0: घर पे सब खैरियत से हैं
1: जी।
0: वाह, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। गाना कौन सा सुनवाना है
1: जी? फिल्म कुली का है
0: जी।
1: जी, न थी मेरी किस्मत जो देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना।
0: वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर, मैं करसर बिटोरा जिला भारत से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, गाना कौन सा सुनवाना है भाई?
1: सर, गाना मेरे को सुनना है लता मंगेशकर की आवाज़ में, आए तो उसके आए बहार।
0: अच्छा, सुनवाया जाए फिर?
1: हाँ सर, सुनवाया जाए।
0: लीजिए फिर गाना सुन लीजिए, फरमाइश आपकी पूरी करते हैं।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओह राकेश जी, क्या बात है, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, और इस समय जो है सुहाना मौसम है, ठंडा ठंडा।
0: क्या कहने भाई, शिमला
1: और ठंडक चल रही है।
0: क्या कहने, शिमला का तो अगर कोई जवाब ही नहीं है भाई। वाह
1: जी जी जी जी जी।
0: और घर में सब लोग ठीक ठाक है?
1: सभी ठीक है।
0: गाना बताएं
1: जी। दिल का क्या कसूर और मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना।
0: हाँ बहुत अच्छी फरमाइश है भाई, वाह। सुनवाएं?
1: जी बिल्कुल सुना दीजिए।
0: लीजिए सुनिए।

0: सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
1: भगवान जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है सर, आप तो बढ़िया हैं।
1: सब आपका आशीर्वाद है। क्या करते हैं आप?
0: सर खेती किसानी करते हैं और अच्छा। आकाशवाणी का कार्यक्रम सुनते रहते हैं सर।
1: भी बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर आपसे।
1: जी बताएं
0: सर, हमारे एमपी के श्रोताओं से, श्रोता का कॉल सर जियो से अभी इस नंबर पर नहीं लग रहा सर। जियो भारत से आपके कार्यक्रम में नहीं जुड़ पा रहे हैं एमपी के कोई भी श्रोता सर, मेरे अलावा। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, इस लाइन को सही करवा लीजिए ताकि हमारे एमपी के श्रोता आपके कार्यक्रम में जुड़ पाएं सर।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर कर सकें। आज के लिए फरमाइश बताएं।
0: फिल्म का नाम है गुड बॉय बैड बॉय और गाने के बोल है मेरी दीवानगी मेरी आवारगी को जरा जीना है सनम।
1: अच्छा,
0: और सभी दोस्तों को डेलिकेट रहे।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: पूनम दीदी है, गुंजन तिवारी है, प्रेमदास बाबा जी है और विजय पांडे जी हैं और देवी शंकर शुक्ला जी हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: श्री चंद्र निषाद, ग्राम जलालपुर, जिला बांदा।
0: वाह, क्या हाल चाल है भैया?
1: हाल चाल बढ़िया है सर जी।
0: अच्छा, आज ये गाना कौन सा?
1: दिनों के बाद फोन लगा है आज मेरा।
0: अरे जय हो जय हो, ईश्वर का बहुत धन्यवाद है भाई। गाना कौन सा चुना है आज के लिए?
1: ठहरे हुए पानी में तंकर नमाज सावन।
0: वाह, सुनाओ फिर।
1: जी सर जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: सर, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर।
0: वाह सुनील जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ सर। और आप कहाँ रहते हैं सर? काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, और जल्दी जल्दी आया कीजिए कार्यक्रम में।
0: चलिए मैं दुआ करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपसे मुलाकात कराए हमारे ईश्वर।
1: बहुत दिली ख्वाहिश रहती है आपसे बात करने की, और आप काफ़ी दिनों बाद आते हैं सर।
0: चलिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्द जल्द आपसे मुलाकात हो, है ना
1: जी सर।
0: और सुनाइए, घर पे कैसे हैं सब लोग?
1: सब अच्छे हैं सर, बस ईश्वर की कृपा है और
0: बनी रहे
1: सुना करते हैं सर।
0: बनी रहे ईश्वर की कृपा बनी रहे, और हमारे प्रोग्राम में आप हमेशा यूं ही जुड़ते रहिएगा।
1: आज के कार्यक्रम काफी बेहद अच्छे लगते हैं सर।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। गाना कौन सा सुनवाना है आज
1: सर? मुझे संग्राम मूवी का सॉन्ग सुनना है। गाने के बोल है बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो।
0: अच्छा,
1: और ये गाना सर आपको डेडिकेट रहेगा, काफी लंबे अरसे के बाद आप आए हैं।
0: और
1: हमारे दोस्त हैं अविनाश तेली जी हैं त्रिपुरा से, और जितेंद्र पाल हैं, ओमकार हैं, विनीत कुमार हैं, और मनु राजवंशी हैं, पूनम जी कानपुर से हैं, और जितने श्रोता लाइव सुनते हैं सभी को
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, आपकी आवाज़ बड़े धीमे आ रही है।
0: अच्छा हाँ, अभी एक सुनने वाले ने पहले भी ये बात कही थी। अब चलिए,
1: हाँ, बड़ी हल्की सी आवाज़ आ रही है सर जी।
0: अच्छा, चलिए अभी कोशिश करते हैं, अपने टेक्निकल विंग से बोलते हैं कि भाई कुछ अगर गुंजाइश है तो कर दी जाए, है ना। अभी रिक्वेस्ट करते हैं जी, बताएं गाना कौन सा सुनवाना है।
1: हेलो, नमस्कार सर जी। हमारा
0: जी बहुत बहुत नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर जी।
0: वाह वाह वाह, बहुत बहुत प्रणाम है भाई आपको। गाना
1: आपको
0: बताएं।
1: भी धन्यवाद सर जी, जो हमारी रिकॉर्ड रिसीव की
0: अरे
1: है और
0: भाई,
1: हमारे कई दिनों के बाद कॉल लगी है, लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं।
0: अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि 1-2 महीने में के बाद अगर शामिल हुआ जाए तो फिर कुछ कहने के लिए भी होता है, कुछ सुनने के लिए भी होता है ना।
1: हाँ सर जी, वैसे ट्राई तो रोज किया करते हैं, लेकिन आज कहीं वैसे लगा है, तो
0: अरे
1: हमें अच्छा लग रहा है कि हमारा कॉल लखनऊ में शामिल हुआ है सर जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, बहुत धन्यवाद आपका। गाना बताएं।
1: गाना से पहले सर जी, हमारे दोस्त सारुनूर अंसारी, भगवान सिंह परमार जी, लोकेंद्र वर्मा जी।

0: हैं और गंगाधर सावंकर जी हैं, सोनू जी हैं, और गाना प्रेम रोग मूवी आएगी, गाने के बोल रहेंगे, भावरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार सर जी।
1: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: राम सागर बोल रहे हैं, रसूलपुर धरावा।
0: जी राम सागर जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है आपके उसमें। आज बहुत दिनों के बाद फोन लगाया, 8 महीने के बाद।
0: 8 महीने के बाद? अरे
1: जी, फोन
0: बहुत
1: तो हम
0: बहुत
1: रोल लगाते हैं और 24 घंटे आपका कार्यक्रम सुनते हैं।
0: अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम है आपको, बहुत धन्यवाद भी आपका कि आप कोशिश तो कर रहे हैं।
1: गंगा जमुना सरस्वती का पति परमेश्वर वाला गाना सुना दीजिए, डेडिकेशन रहेगा। हमारे बच्चे हैं 2 ठो,
0: अच्छा
1: संजय सबदेन
0: अच्छा
1: और मधुरिका गुप्ता हैं, रामराज जी हैं पहाड़ीपुर वाले, विजय पांडे जी हैं और सभी लोग जिनने लोग सुनते सभी के लिए आपके लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी? जिला इटावा पोस्ट कर रही ग्राम लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात हो गई, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से आप आ रहे कार्यक्रम में, लेकिन हमारा जब जब आते हो आप हमारा कॉल ही नहीं लगता।
0: अरे
1: जी, आज बहुत खुशी हो रही है आपसे बात हो रही है हमारी।
0: मुझे भी बहुत
1: अच्छा, आपसे पहली बार बात होती है।
0: अरे वाह, तब तो और खुशी की बात हुई। मेरा भी बड़ा अच्छा दिन है कि
1: जी, कॉल तो मेरा कई बार लगा है लेकिन आपसे बात नहीं हो रही होती मेरी।
0: अच्छा,
1: आज बहुत खुशी हो रही है।
0: बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि नए साथी से मुलाकात हुई। और सुनाइए, बाकी सब लोग ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बताएं फिल्म का नाम बताएं।
1: गाने के वो बोले लिखने वाले ने लिख डाले।
0: अच्छा,
1: और ये कह रहा हूँ कुछ मित्रों को याद कर सकता।
0: हाँ जरूर जरूर जरूर जरूर
1: जी। इटावा से ओम नारायण पुतवा जी है, फूलचंद पाल भाई साहब हो गए, और मिंटू भाई साहब जी हो गए।
0: अच्छा,
1: और दिनकर सिंह जी हो गए।
0: अच्छा,
1: और पूरन वर्मा जी हुए, और जितने लोग सुन रहे हो सबके लिए। लेकिन ये कह रहा हूँ, हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताएं
1: सर। हमारे यहाँ FM पे ये प्रोग्राम सुनाई नहीं देता है, हमारी रिक्वेस्ट आपके जो अधिकारी हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट को जरूर पहुंचा देना।
0: जरूर जरूर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी बताएं, कौन साहब बोल रहे?
1: अरे भैया जी को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कौन बोल रहे हैं?
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवारिया बोल रहा था
0: जी। राजू जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हैं सर, आप बताएं हमारी आकाशवाणी लखनऊ टीम कैसी है?
0: सब लोग अच्छे हैं और आपकी दुआएं हैं, सब ठीक हैं, ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है।
1: सर बड़े दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है और काफी समय बाद मेरा फोन भी लगा है, लगता भी मेरा फोन बहुत लंबे समय के बाद।
0: वैसे अच्छा ठीक भी है ना, थोड़े दिनों के बाद लगे, कुछ हफ्ते दो हफ्ते महीने, है ना।
1: हम तो श्रोताओं से भी यही अनुरोध किया करते हैं कि भाई दूसरों को भी मौका देने की।
0: हाँ वही तो,
1: आप लोगों का तो लग ही जाता है।
0: वही तो जो लोगों का बराबर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यह कि
1: भाई मानवता के नाते से
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबको मिलना चाहिए, तो तभी प्रोग्राम खूबसूरत भी होगा, तभी अच्छा भी लगेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपका बहुत धन्यवाद ये संदेश हमारे सुनने वाले तक,
1: क्योंकि वही श्रोताओं की आवाज अगर आप डेली
0: सुनाई
1: देगी तो थोड़ी
0: हाँ हाँ
1: लगती भी अजीब सी है, कुछ नए श्रोताओं की आवाज सुनाई दे, कुछ नई जानकारी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। गाना कौन सा सुनवाए आज भाई?
1: सर फिल्म का नाम है दहली, महेंद्र कपूर और भूपेंद्र जी की आवाज में ये गाना है और गाने के बोल हैं, एक अधूरी की मुलाकात हुई।

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते
1: जी। नमस्कार,
0: बहुत बहुत नमस्कार, आपको कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं राजू यादव, ग्राम प्रेका, श्रीरामपुर डेरा सरीला, रामकरा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जय हो, जय हो, प्रणाम, बहुत बहुत, कैसे हैं आप?
1: हम तो सर जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, और बगीचे में बैठे बैठे रेडियो आकाशवाणी छतर लखनऊ का भरपूर मन
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि लखनऊ को आप इतना प्यार करते हैं
1: जी।
0: कभी तशरीफ लाइए आकाशवाणी लखनऊ, कभी तशरीफ लाइए
1: सर जी। बहुत दिनों बाद कॉल शामिल होती है, बहुत हमारे सारे
0: हाँ,
1: लगाते रहते हैं,
0: हाँ,
1: लाइन इतनी व्यस्त रहते हैं कि हमारा तो नंबर ही नहीं आ पाता
0: चलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर फोन कॉल आज शामिल हो गई है तो कुछ दिनों का विराम ले लें।
1: ये तो अपने आप में श्रोताओं को ये रखना चाहिए जी, कि जी, हम दो दिन का अंतराल रखें ताकि और श्रोताओं को शामिल होने का मौका मिले।
0: जी जी जी, आज बताएं गाना कौन सा सुनाएं?
1: राज्य हिंदुस्तानी का गीत सुनवा दीजिए, आए हो मेरी जिंदगी बाहर के। कुछ मित्रों के नाम लेंगे सर जी।
0: हाँ बताइए।
1: हेलो, फरमाइश एकता ग्रुप के हैं श्री गुणवंत कड़ू जी हैं, गौतम राय भोले जी हैं, और रामशरण विश्वकर्मा जी हैं, और बलवान सिंह यादव हैं, कौशल यादव जी हैं, अनुप कुमार राजपूत जी, और प्रहका थाना मुस्कुरा तहसील संघा से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थ जिला सीतापुर से।
0: ओहो दिनेश जी, जी बहुत बहुत नमस्कार दिनेश जी, बताएं गाना कौन सा सुनवाना है आज?
1: आया आया प्यार का जमाना, भगवान दादा फिल्म का है।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अच्छा, क्या हाल चाल है भाई?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम में आपका,
1: बहुत सारे दोस्त आकाशवाणी लखनऊ के बने हुए हैं, नए नए श्रोता हमारे दोस्त बन रहे हैं।
0: जी जी।
1: अभी 4 दिन से पहले हमारे एक दोस्त बने हैं, मिंटू तिवारी, वो भी कार्यक्रम सुनते हैं और फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं।
0: वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।
1: जी हाँ सर, आज कार्यक्रम सुनते हैं हम आपके, आकाशवाणी लखनऊ के, और हमें मतलब 2026 से इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ।
0: शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: जी सर, फिल्म का नाम है दबंग, और गाने के बोले तेरे मस्त मस्त दोने।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए गाना सुनिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नामों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उन दोस्तों का जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में वक्त निकाला है। और बड़ा कीमती वक्त होता है आज की तारीख में। कुछ जॉब वाले हैं, टाइम से निकल जाते हैं। जो व्यापारी हैं हमारे, जो और अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको भी बहुत टाइम से जाना होता है। लेकिन कितना अच्छी है, कितना शुक्रिया है उन दोस्तों का, उसके बावजूद भी वक्त निकालते हैं। कार में कहीं यात्रा कर रहे हैं तो भी सुनते हुए चलते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं तो भी सुनते चलते हैं। तो यही एक आकाशवाणी के प्रोग्राम का, रेडियो का यही फ़ायदा है, कहीं पर भी हो, कहीं भी हो, आप तक पहुंच जाता है। एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है सभी दोस्तों से कि एक बार अगर फ़ोन कॉल शामिल हो जाता है तो अगर थोड़ा सा वक्त ले लें, 10-15 दिन सही, महीना भर सही, तो और लोगों को भी मौका मिलेगा। कई लोगों को ऐसा कहना भी है, कोशिश करें और पहले से सोच कर रखें कि आज सुनना क्या है, गाना कौन सा सुनना है हमको। क्योंकि जैसे ही आप बोलते तो फौरी तौर से गाना आपको सुनाई देता है, फौरन आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है। बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन में कई साथी ऐसे भी थे आज जिनके टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गए, नेटवर्क का भी इशू रहता है, लाइन का भी थोड़ा सा इशू था। कोशिश करेंगे कि आइंदा हमारे जो प्रोग्राम हो आप तक बहुत सही तरीके से पहुँचे और आप भी जहाँ उस ऐसी जगह पर हो जहाँ पर नेटवर्क सही मिल रहा हो। बहरहाल, आज के प्रोग्राम को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। राजेश्वरी को आगे दीजिए, नमस्ते। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

दुश्मन। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार की थी, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की।

पड़ोसन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। लीजिए अब लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, फिल्म थी लोफर। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब ये गीत सुनिए जिसे गाया है आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म हम शक्ल किस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान

0: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं सुनिए। आज रात 11 बजे से आप सुनेंगे, क्षमा करें 11:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। आज का विषय होगा युवा शक्ति। कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दिल्ली केंद्र से ही रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम साहित्य भारती और रात 10 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें कि सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम आज रात 11:10 से प्रसारित होगा। आज का विषय है युवा शक्ति। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 साहित्यिक समाज और आकाशवाणी। आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर एक विशेष साक्षात्कार श्री नवीन जोशी के साथ भेंट करता हूंगी डॉक्टर नगेंद्र रघुवंशी। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8। इति मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्म में।

आप सुन रहे थे आराधना फिल्म का एक गीत जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। कार्यक्रम का ये गीत लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी फकीरा। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: सदाबहार नगमों के इस प्रोग्राम में अब आपको सुनवाते हैं इज्जत फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

एक नज़र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सदाबहार नगमों के इस प्रोग्राम का ये आखिरी गीत सौदागर फिल्म से है। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

आप सुन रहे थे सौदागर फिल्म का गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस गीत के साथ ही अब आज का सदाबहार फिल्म नामों का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1 बजने को है, अब कुछ ही पलों में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिण पंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को

0: छत्तीसवां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सुनिएगा आज रात 11:10 से। आज का विषय है युवा शक्ति। कार्यक्रम में उपस्थित होंगे केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समय याद रखिएगा आज रात 11:10। रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। विज्ञान जगत में संध्या 7:31 पर आज अन्य बातों के अलावा विज्ञान समाचार होंगे और साथ ही डिकोडिंग साइंस, आखिर विज्ञान के पीछे का विज्ञान क्या है, ये वार्ता होगी। वार्ताकार होंगे अगम दयाल श्रीवास्तव। विज्ञान जगत कार्यक्रम में संध्या 7:31 पर। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा एक भेंट वार्ता जिसका विषय है साहित्यिक समाज और आकाशवाणी। स्टूडियो में हमारे साथ होंगे श्री नवीन जोशी। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र रघुवंशी। यह कार्यक्रम विशेष रूप से आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर आधारित है। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8 बजे। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कुछ गीत प्रसारित किए जाएंगे। कलाकार होंगे डॉक्टर शिखा भतौरिया। सुगम संगीत में रात 8:10 पर। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर गर्मी और लू से बचाव विषय पर चर्चा होगी। इसके अलावा ग्रामीण उद्यम से आत्मनिर्भर गांव, ये वार्ता होगी श्री राज नारायण वर्मा की। 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम होगा। आज इसमें धान की सीधी बुआई पर चर्चा होगी। इसके अलावा धान की फसल में समन्वित खरपतवार प्रबंधन, इस विषय पर एक भेंटवार्ता डॉक्टर लाल पंकज कुमार सिंह के साथ होगी। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। खेती किसानी कार्यक्रम में 6:50 पर। अब से कुछ ही देर के बाद यानी 1:15 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर आंगन। इसमें धरती की हरियाली, हम सब की खुशहाली, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण होगा घर आंगन में 1:15 पर। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में 2:30 पर सुनिएगा नए फलदार वृक्ष लगाने की योजना, इस विषय पर एक भेंटवार्ता डॉक्टर अनिल कुमार दुबे के साथ। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में 2:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे हेमा उप्रेती के गाए हुए कुछ अवधि लोकगीत। समय याद रखेगा 2:45 पर लोक माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत।

अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें कि आज रात 11:10 से आप सुन सकेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। आज का विषय है युवा शक्ति। कार्यक्रम में उपस्थित होंगे केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया। 11:10 पर कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए के 262 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संघ की बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट और चेक दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने रियासत के हर जिले को तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि रियासत अब मुल्क और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। वजीर आला ने कहा कि आज गोंडा में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्टों से जिले की तरक्की और अवामी सहूलियात को वसअत मिलेगी।
1: उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं।
0: महाकुंभ 2025 ने मरकजी हुकूमत के जरिए ऐलान करदा नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड जीता है। इस साल मरकजी हुकूमत ने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के तहत 11 गोल्ड अवार्ड्स, 6 सिल्वर अवार्ड्स और 1 ज्यूरी अवार्ड का ऐलान किया। महाकुंभ 2025 को मुल्क की बेहतरीन ई गवर्नेंस ईजादात में से एक तस्लीम किया गया है। महाकुंभ गोल्ड अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 10 लाख की रकम मिलेगी और सिल्वर अवार्ड हासिल करने वाले इदारों को 5 लाख मिलेंगे। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 की रस्मी पेशकश की तकरीब जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक्कित की जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत अब अपनी सरमायाकारी और सलामती के माहौल के लिए पहचानी जाती है। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत हर जिले की मजमूई तरक्की के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: रियासत के वजीर तवानाई ए के शर्मा ने पीएम सूर्यघर पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आजम की तरगीब पर मुल्क में सोलर तवानाई में तेजी से तौसी हो रही है। वाराणसी में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश मुल्क में अव्वल मुकाम पर है और वाराणसी मुल्क में सोलर तवानाई में 11वें मुकाम पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर एक खसूसी मुहिम कल शुरू हुई। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रियासत के तमाम अजला के इंचार्ज वजरा और अवामी नुमाइंदे 21 जून तक समाज के रोशन ख्याल तबकों के साथ बातचीत करेंगे। वो अवामी मसाइल के हल के लिए देही इलाकों में रात के चौपाल का भी एहतमाम करेंगे। इस तनाजुर में काबिनी वजीर ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में दरख्त लगाकर एक मरबूत अवामी फलाह बहबूद और बेदारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम के बारे में मालूमात फराहम करते हुए रियासत के जल शक्ति के वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में दुनिया भर में मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है।

0: नायब वज़ीर-ए-आला बृजेश पाठक ने कल लखनऊ में एकेडमी अवार्ड तकरीब में 2021 से 2024 के लिए मुंतखब फनकारों को एजाज से नवाजा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तकरीब में 51 मुमताज फनकारों को मौसिकी, रक्स, ड्रामा और लोक फनून में नुमाया खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। वाराणसी मुनक़दा ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप का दो रोज़ा इजलास कल इख्तिताम पज़ीर हुआ। आखिरी दिन ब्रिक्स के रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने सकाफती ताउन और बाहिमी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। हिंदुस्तान की सदारत में होने वाली इस अहम मीटिंग में ब्राज़ील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका और सऊदी अरब समेत 11 ममालिक ने शिरकत की। सकाफत की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी अमिता प्रसाद सरभाई ने कहा कि मीटिंग में हिंदुस्तान के कीमती विरसे की वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान तरक्की और सकाफत के मुतफ़ा तफहूम के साथ आगे बढ़ने के तौर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बलिया के जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुराताल को मुल्क के सवा रामसर साइट करार दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि यह मुल्क के कुदरती माहौल, खासतौर पर उसकी आबी ज़मीन के तहफ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करता। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने माहौलियाती तहफ़ुज़, हयातती तनु के तहफ़ुज़ और वेट लैंड के तहफ़ुज़ के शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। मुजफ्फरनगर ज़िले के छपर थाना इलाके में दिल्ली देहरादून कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ट्रक से टकरा गए और मौके पर ही हलाक हो गए। आंसू वाक़े के बाद पुलिस और इंतजामी अहलकार जाए वकूफ पर पहुंचे। पुलिस सुपरिटेंडेंट संजय कुमार ने कहा कि मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो चुके हैं। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनन का वंदना के नमस्कार। श्रोता बनी, पेड़ पौधन से ही धरती के सुंदरता है और धरती के हरा भरा आंचर ही हम सब के जीवन के आधार है। मने पेड़ पौधा, जंगल, खेत, खलिहान यानी धरती के हरियाली केवल सुंदरता नहीं बल्कि हमरे अस्तित्व के अमिट छाप भी है। बनी पेड़ पौधा दिन रात हमका सबका प्राणदायिनी वायु मने ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोख के प्रदूषण कम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा जैसी आपदावन से हमका बचावत हैं। बिरवन की जड़ें मिट्टी का पकड़ के राखत हैं जिसे भूमि कटाव रुकत है। बहनी, जहाँ हरियाली नाहीं या बिरवे कम लाग हैं वहाँ गर्मी भी अधिक परत है। किसान के फसल, फल फूल, लकड़ी, जड़ी बूटी सभी धरती पर आच्छादित हरियाली के ही तो देन है। जंगल कई मने इनका रोजगार देत है। आयुर्वेद के दवाई पेड़ पौधन से बनती हैं। जहाँ एक ओर यह हरियाली से आर्थिक लाभ है तो हुए दूसरी ओर यह हरियाली देख के मन का कितना सुकून मिलत है। तनाव कम होत है, हमार स्वास्थ्य नीके बनवे में सहयोग करत है। बोला आज विकास के नाम पर पेड़न का काटा जा रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं। नतीजा मा सामने है बेमौसम बरसात, अतः गर्मी, सांस के बीमारियां। यह खातिर अबहिनो समय है कि हम सब सजग हो जाई, अपनी धरती के हरियाली का बचाई। श्रोता बहनी, हमरे पूर्वज सदैव बिरवन का लगावे में विश्वास रखें, अब जरूरत है कि हमहू उनके रास्ते पर चली। तुलसीदास जी कही गए हैं, वृक्ष कबहू नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, तो प्रकृति सदैव देत है। अब हमार सबके लौटावे के बारी है। याद रखें, जब धरती हरी भरी हुई तब हमरे चेहरे के खुशहाली बनी रही। तो श्रोता बहनी, हम सबके कर्तव्य बनत है कि धरती के श्रृंगार यानी हरियाली का कबो कम नहीं होए दई। काहे से यही मा हम सबके खुशहाली है और धरती पर हरियाली रहे यह खातिर। अब बीते भय कल यानी 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस भी मनावा गवा है ताकि मनई पेड़ पौधा लगावे के प्रति जागरूक होए। तो ई तो रही बात हरियाली के, पेड़ पौधा के।

और अब बात की जाए श्रोता पंचो आप सब द्वारा पठाई गई पाती और ईमेल के। कहे से कि आज है शनिवार और ई दिन हम सबे का रहा थे मन भावन लोक गीतन का सुने के इंतजार। तो बस अब बढ़ चला जाए आप सब द्वारा पठाई गई पाती और ईमेल की ओरिया। तो ई बार पाती के करी तो ई आई है ग्राम नौखेरा जिला अमेठी से जी का पठे वाले हैं खुनखुन तिवारी पंकज सपना कमला गुड्डू और युग। और जोन ईमेल है वही का पठवा गवाह है ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से जी का पठे वाले हैं शुभम यादव विजयपाल यादव शिखा ऋचा गुड़िया सुरभि राजेश और विजय पांडे। और ईमेल में लिखा है कि इनके मित्र के घरे एक नन्ही सी बिटिया रानी जन्मी है तो ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद बिटिया रानी का। और ये सब जने फरमाइश करीन है सोहर सुने के। तो चलो श्रोता पंचो इन सब के फरमाइश पे सुना जाए सोहर। स्वर है उपमा पांडे बहनी के।

श्रोता पंचो, ये कहावत तो हम सब सुना है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो यदि हम शुद्ध खाद्य पदार्थन के इस्तेमाल करब तो हमार सबके तन मन भी शुद्ध और स्वस्थ रही। मुला यदि हम अधिक समय तक रखा भवा मिलावट कीन भवा खाद्य पदार्थ उपयोग में लेबे तो हमार शरीर और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ी और दूषित भोजन से अनेकों मेर के बीमारियन के सामना भी हमका सबका करे का परत है। बता चली कि आवे वाले काल यानी 7 जून का हर बरस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनावा जात है ताकि मनई स्वच्छ और शुद्ध खाद्य पदार्थन के प्रति जागरूक बने। ई साल यानी 2026 के थीम है खाद्य सुरक्षा विज्ञान की भूमिका, यानी प्रयोगशाला से लई के रसोइयां तक विज्ञान ही हमका बचावत है। खेत मा कीटनाशन के सही मात्रा, खाद्य पदार्थन के फैक्ट्री मा साफ सफाई, दुकान में सही तापमान पर खाद्य पदार्थन के भंडारण और घर में खाना बनवे से पहले हाथ धोब, ई सब विज्ञान ही तो है। और श्रोता पंचो, हमार सबके भी जिम्मेदारी बनत है कि हम खाद्य पदार्थन के प्रति कुछ सावधानी राखी। मने फल और सब्जियन का इस्तेमाल से पहले नीकी तना से धोवा जाए, अधपके भोजन के उपयोग नहीं कीन जाए, भोजन का नीकी तना से पकाए के खावा जाए और बासी भोजन से दूरी बनावा जाए। गर्म पेय पदार्थ मने चाय कॉफी का पन्नी झिल्ली में नहीं धरा जाए और ना ही प्लास्टिक के बर्तन के उपयोग खाए पिए खातिर कीन जाए और पिए वाले पानी स्वच्छ होए, यही बात के भी ध्यान रखा जाए। साथ में खाना बनावे और परसे वाले बर्तनन के साफ सफाई की ओरिया भी ध्यान रखा जाए। श्रोतपंचो, खाद्य सुरक्षा केवल दुकानदार या सरकार के ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि खाद्य सुरक्षा हम सबके जिम्मेदारी है। मने हम सबके रसोई ही सबसे पहल प्रयोगशाला है। शुरुआत हुए से कीन जाए तो सुरक्षित खावा जाए ताकि स्वस्थ रहा जाए। तो ई तो रही बात खाद्य सुरक्षा के, और अब बात कीन जाए आप सब श्रोता पंचन द्वारा पठाई गई पाती और ईमेल के। तो पाती आई है ग्राम रुदौली जिला अयोध्या से, जी का पठे वाले हैं लक्ष्मी, माला, मीना, दीपा और आरती। और ईमेल के बात करी तो ई आवा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, जी का पठे वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। तो इन सब के फरमाइश पे चलो सुना जाए किसानी गीत। स्वर हैं प्रियंका पांडे बहनी के।

अश्वता पंचो ई बिरिया गर्मी की छुट्टी भी चल रही है और हमारी बहुत सगरी बहनी सखिया होरी जाती हैं अपने नैहरे। केऊ मोटर बस से तो केऊ रेलगाड़ी से भी यात्रा करती हैं। तो यात्रा करत भय भी सावधानी जरूरी है। यदि लड़का बच्चा अपने संगे हैं तो उनके हाथ पकड़ के चलें। बस में यदि सफर कर रही है तो लड़कन बच्चन के आदत होत है कि वही खिड़की से बाहर हाथ निकाल देते हैं, सर निकाल के देखे लागत हैं। तो चलती बस या मोटर गाड़ी में ई बात के ध्यान रखें कि वही हाथ या सर बाहर ना निकालें, काहे से यही से दुर्घटना भी हो सकत है। और यह बात के ध्यान रखें बहनी कि यात्रा के बिरिया घर से भोजन बनाए के लेके जाएं, बाहर के खाद्य पदार्थन का खाए से बचें। साथ में अनजान मनईन से या अपने सहयात्री से खाद्य पदार्थ साझा ना करें, ना ही उनके दीन भवा कुछ खाएं। और अपने सामान मने झोरी अटैची बक्सा के ध्यान रखें। चलती बस या ट्रेन से चढ़े या उतरे के कोशिश ना ही करें। तो इन सब बातन के ध्यान रखें और सुरक्षित यात्रा करें ताकि आपके यात्रा आनंद पूर्वक बीते और आनंददायक यात्रा से याद आवा कि श्रोता पंचों की आप सब द्वारा पठाई गई पाती भी तो यात्रा करके ही हम तक पहुँचती हैं, जिनका पढ़ के हमका खूब आनंद आवत है। तो यह बात पर बढ़ चला जाए अगली पाती की ओरिया, जो उन आई है मोहल्ला सबदलबाग लालकुआ लखनऊ से, जिका पठवे वाले हैं विमला श्रीवास्तव, सर्वेश, अभिषेक, गन्नू, हर्षित और अक्षिता। और बात ईमेल कर करी तो ईमेल आवा है ग्राम पहाड़ीपुर जिला रायबरेली से, जी का पठवे वाले हैं रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, रक्षा मौर्य, राम सागर साहू और रामचरण। तो इन सब के फरमाइश पे चलो सुना जाए नक्टा, स्वर हैं अनीता श्रीवास्तव बहनी के।

श्रोता पंचो बताओ चली कि महीना के दूसरे शनिवार का घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत शब्द एक गीत अनेक कार्यक्रम सुनवावा जात है। जी माँ, हम आपके पसंद के फिल्मी गीत सुनवाई थे। तो ये महीना के दूसरे शनिवार यानी 13 जून का शब्द एक गीत अनेक माँ शीर्षक शब्द है फूल बहार। तो आप सब श्रोता पंच ई शब्द से कौनो फिल्मी गीत सुना चाहत हो तो अभिने से घर आंगन कार्यक्रम में फूल बहार शब्द से शुरू होए वाले फिल्मी गीत के बोल, फिल्म के नाम, अपने पता और अपने नाम के साथ चाहे पाती माँ लिख के पठवाएं या ईमेल के माध्यम से। तो जौन श्रोता पंच पाती पठवा चाहत हैं वही पाती पठवे के पता लिख लें। पता है घर आंगन कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी

18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन नंबर है 226001। और जौन श्रोता पंच ईमेल के माध्यम से अपन फरमाइश पठवा चाहत हैं, वही ईमेल के पता लिख लें, ghar.aangan@lko.gmail.com। तो श्रोता पंचो, 13 जून दिन शनिवार का शब्द एक गीत अनेक शीर्षक के अंतर्गत फूल और बहार शब्दन का जौन फिल्मी गीत में आवत हुए उन गीतन का सुने खातिर पाती और ईमेल कार्यक्रम में जरूर पठायो। और यह के साथ अब बढ़ चला जाए अगले ईमेल की ओर, या जौन आवा है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से, जिका पढ़े वाले हैं रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, प्रियल और दिव्यांशी, और ई सब जने खेमटा सुने के फरमाइश करीन है। तो चलो श्रोता पंचो, सुना जाए खेमटा। स्वर है रिंकी विश्वकर्मा बहनी के।

अश्रोता बंचो, ई बेरिया गर्मी खूब पड़ रही है, तो यही मौसम में सावधानी राखें। मने बाहर घामे से आए के तुरंत जूर जूर पानी नहीं पिए, बल्कि थोड़ा समथाएं, फिर कुछ खाए के पानी पिए। घामे में निकरें तो छाता लेके निकरें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें और रसदार फलन के सेवन करत रहें। साथ में दही माठा इन सब के भी सेवन करत रहें, तो इन सब बातन का ध्यान में रखें। और यह बात के साथ अब बढ़ चला जाए अगले ईमेल की ओर, या जौन आवा है आजमगढ़ से, जी का पठे वाले हैं शिखा, गुन्नू, जूही, हनी, गुड़िया, मन्नू, चंचल, श्रेया और मान्या। तो इन सबके फरमाइश पे चलो सुना जाए पनघट गीत। स्वर है पूजा तोमर बहिनी के।

और श्रोता पंचो, यही गीत के साथ अब कार्यक्रम के बिरिया समाप्त हो रही है। तो ई मनोकामना के साथ कि हमरे सबे श्रोता पंचो रे सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यह कामना के साथ वंदना श्रीवास्तव आप सबसे लेती हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी लखनऊ है। दिन के 1:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जवानों के लिए।

सिकंदर आजम। इस फिल्म का गीत अभी आप मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीतकार थे हंसराज बहल। आइए अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ एक गीत, जिसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, स्वर मोहम्मद रफ़ी का है और फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

0: पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें महेंद्र कपूर और साथियों की थी। इस गीत को लिखा था इंदिवर ने और इसकी धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। फौज भाइयों, आइए अब देश प्रेमी फिल्म का गीत आपके लिए, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की।
1: नफ़

मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आप सुन रहे थे। फिल्म थी देश प्रेमी, बोल आनंद बख्शी के थे और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फौजी भाई उस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न करने की हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों

0: एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOn AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण,

0: स्वच्छता, वित्तीय समावेश और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका के सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज

0: फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया सैयर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: वीडियो वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नए फलदार वृक्ष लगाने की योजना विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार दुबे के साथ की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां नए फलदार वृक्ष लगाने की आपकी योजना है तो उसका रेखांकन कैसे करें, तैयारी कैसे करें और कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ से डॉक्टर अनिल कुमार दुबे साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां नए फलदार वृक्ष लगाने हैं इस साल तो योजना कैसे बनाएं बागवान भाई बहन, और उसकी तैयारी में क्या कुछ करें?
3: जैसा किसान भाई भी जानते हैं कि ज्यादातर फल वृक्ष जो हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, और बहुवर्षीय पौधे लगाने के लिए जितनी अच्छी योजना बनाएंगे उनके रोपण की, उनका जो जीवन चक्र होगा वो उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी गुणवत्ता वाले फल देंगे और अधिक समय तक देंगे। इसमें दो तरीके के फल होते हैं, एक सदाबहार फल होते हैं, एक जो पत्तियां झाड़ते हैं जिनको हम पतझड़ वाले कहते हैं। तो इस समय जो गर्मी के बाद बरसात आने वाली है उसमें जो सदाबहार वाले पौधे फलों के हैं, जैसे आम है, अमरूद है, नींबू वर्गीय फल है, बेल है, आमला है, अनार है, इस तरीके के पौधों का,
2: और बहुत सारे भूले बिसरे फल भी,
3: हाँ, जो हमारे देसी फल भी हैं, वो जो पत्तियां नहीं झाड़ते हैं उनका लगाने के लिए जो आगे आने वाला मौसम है जुलाई अगस्त सितंबर मानसून का, वो बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन अगर उस समय किसान भाई सक्रिय होंगे तो पौधे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या दो आती है। एक तो ये है कि इनके लिए गड्ढे बहुत अच्छी तरीका से खोदने पड़ते हैं, गड्ढों की तैयारी करनी पड़ती है, और दूसरे आपको फल और किस्मों का चयन करना पड़ता, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि वो जो किस्में आपने चयन की हैं उसको कहाँ से खरीदा जाए, विश्वसनीय नर्सरी कहाँ मिलेगी, जो किस्म आप लगाना चाहते हैं वास्तव में वही किस्म लगे, क्योंकि आपको 2-3-4 साल बाद पता चलेगा कि ये जो किस्म हमने लगाई थी ये तो वो निकली नहीं। इसलिए जो पौधे होते हैं, जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, वो हमेशा एक अच्छी विश्वसनीय नर्सरी से खरीदने चाहिए। तो किसान भाइयों की समय योजना क्या बनानी है, योजना ये बनानी है पहले तो वो ये चुनाव करें कि उनको जो हमने फल वृक्ष आए हैं इसमें कौन कौन से फल वृक्ष उनको लगाने हैं
2: और कितने क्षेत्रफल में,
3: कितने क्षेत्र में लगाने हैं।
2: डॉक्टर साहब, अगर जो अपना फल पट्टी क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का इलाका है तो इसमें कौन कौन से फलदार पौधों की उन्नत बागवानी की संभावना है?
3: इसमें जो किसान भाई अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो जैसे हमारी ये जो फल पट्टी है ये आम के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। आम में इतनी किस्में डेवलप हो गई हैं, नई तरीका की विकसित किस्में हुई हैं जो किसान भाइयों को हर साल फल देंगे। इसी तरीके से कुछ नई किस्में हैं, जैसे नींबू वर्गीय फल है जिसमें मौसमी, ग्रेप फ्रूट और चकोतरा की खेती किसान भाई जो हमारे जो उपोष्ण जलवायु के लोग हैं वो इसकी कर सकते हैं। अमरूद का बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है, उसकी मांग बहुत बढ़ रही है, जैसा कि
2: संभावनाएं बहुत है,
3: बहुत संभावना है। किसान भाई भी जानते हैं कि बहुत ही ये हार्डी पौधा है, इसको कम प्रबंधन से इसमें अच्छी उपज ली जा सकती है
2: और अच्छी कमाई का स्रोत है,
3: क्योंकि इसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो उतने महंगे सेव में मौजूद होते हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा ज्यादा रहती है और वर्ष में 2 बार फल देता है, तो इस पौधे का भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरा ये, चूंकि बीमारियां नई नई बढ़ रही हैं तो किसान भाइयों को उन पौधों पर भी तवज्जो देना चाहिए जो नए पौधे आ रहे हैं, जैसे कमलम है, ड्रैगन फ्रूट है, वो काफी पोषक तत्वों से भरपूर है और सूखे क्षेत्र के लिए वो एक वरदान है।
2: और केला की उन्नत बागवानी
3: जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ वो केला की बागवानी कर सकते हैं। कमलम की बात करते हैं, ये क्या है, जहाँ पानी नहीं है, सूखा रहता है, वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है और ये भी वर्ष में 2 बार फल देता है। इसी तरीके से एक अनार है, वो बहुत ही पौष्टिक फल होता है। जामुन है, जामुन जो है पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, छाया बहुत अच्छी देती, तो इसलिए हम ऐसे पौधों को भी लगाएं जो हमें छाया भी दें और फल भी दें। अब किसान भाई ये भी कर सकते हैं, जैसे वो बागान में लगा सकते हैं, देखा है कुछ जानवर होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो किनारे किनारे जो

0: करौंदा है
1: हाँ।
0: या जो कांटे वाले नींबू होते खट्टे वाले
1: हाँ।
0: उनकी पौध भी लगा सकते हो,
1: यानी सजीव बाड़ भी।
0: हाँ बाड़, वो क्या होगा आपको बाड़ का भी काम करेगी
1: और
0: साथ साथ कुछ आमदनी भी देगी।
1: तो डॉक्टर साहब अगर उन्नत प्रजातियों की बात करें और उसके पहले जब तैयारी की बात चल रही तो गड्ढों की खुदाई महत्वपूर्ण है।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समय बहुत उपयुक्त है क्योंकि इस समय जो तापमान है वो 45-46-47 डिग्री के सेल्सियस के करीब चल रहा है। इस समय अगर किसान भाई गड्ढे बनाते हैं, योजना बनाते हैं, क्योंकि जो भी कीड़े मकोड़े बीमारी होंगी इस जो तापमान है इस पे उनकी समाप्त होने की संभावना पूरी की पूरी है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि किसान भाई अगर आम लगाना चाहते हैं और सघन बागान में लगाना चाहते हैं तो 4x4 जैसे आम्रपाली लगाएं तो 4x4 मीटर पे गड्ढे खोद लें, और अगर दूसरी किस्म लगाएं जो मध्यम ओजस्वी होती हैं उनमें 6x6, और अगर दशहरी लंगड़ा चौंसा लगाएं तो 10x10 मीटर की दूरी पर वो गड्ढे बना सकते हैं। आम के लिए मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आम के लिए गड्ढों का जो आकार हो वो कम से कम 1x1x1 मीटर,
1: यानी 1 घन मीटर का,
0: 1 घन मीटर को। और गड्ढा खोदते समय किसान भाइयों के ध्यान देना है कि ऊपर की 50 सेंटीमीटर मिट्टी अलग रख लें और नीचे की 50 सेंटीमीटर मिट्टी दूसरी तरफ रख दें,
1: यानी आधा आधा मीटर अलग अलग
0: अलग अलग कर दें। और हमेशा गड्ढा भरने में ऊपर वाली मिट्टी का प्रयोग करें, उसमें आधी मात्रा में, आधी मीन बराबर मात्रा में गोबर की खाद मिला दें और गड्ढों को पुनः भर दें।
1: थोड़ा बालू भी,
0: बालू मिला सकते हैं अगर चिकनी मिट्टी है, अदरवाइज जहां पे सैंडी लोम सॉइल है वहां बालू की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। अगर दीमक का प्रकोप है तो देसी दवा है नीम की खली, उसके साथ डाल सकते हैं तब भर सकते हैं। तो जो भी अगर तापमान से जो नहीं मरेंगे वो इससे मर जाएंगे। और गड्ढों को थोड़ा ऊंचा करके भरें और पहली बारिश का इंतजार करें। जब पहली बारिश आ जाए गड्ढे समतल हो जाएं तब पौधों का रोपण करें। इसी तरीके से अगर नींबू वर्गीय फलों के पौधे लगाने हैं तो उसमें 4x4 मीटर पे पौध का रोपण किया जा सकता है। पपीता किसी को
1: उसी हिसाब से गड्ढों की खुदाई
0: सेम जैसे,
1: और उसके पहले रेखांकन
0: रेखांकन करके गड्ढों का साइज केवल बदलता है, बाद बाकी जो खोदने की प्रक्रिया है और पुनः भरने की प्रक्रिया है वो लगभग सारे सदाबहार पौधों में एक जैसी रहती है।
1: और अमरूद में डॉक्टर साहब?
0: अमरूद में भी, अमरूद में हम सघन बागवानी भी कर सकते हैं और हम जो हमारी परंपरागत बागवानी है जहां हमको कटिंग और प्रूनिंग के लिए लोग अवेलेबल नहीं है उनके लिए हम परंपरागत बागवानी में जा सकते हैं। सघन बागवानी में 3x3 और अगर आप परंपरागत बागवानी में जाना चाहते हैं 6x6 मीटर अमरूद पे गड्ढे आप खोदिए और उचित किस्म का चयन करिए। अभी पूसा संस्था ने कई किस्में निकाली हैं, उसमें पूसा अरुणमा है, आम्रपाली है, मल्लिका है, पूसा लालिमा है, पूसा पीताम्बर है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा प्रतिभा है, और हमारे लखनऊ सेंटर ने भी एक निकाली है ये मलियाबाद से अरुणिका। ये किस्में इतनी अच्छी हैं जो सघन बागवानी में 6x6 मीटर की दूरी पे लगा सकते हैं किसान भाई और अधिक आमदनी हर साल कमा सकते हैं। कुछ किस्में जैसे हम क्या कहते हैं, हम बाजार दोनों देखते हैं, जो हमारा देसी बाजार है और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय में लाल कलर की जो किस्में है ज्यादा पसंद की जाती,
1: क्योंकि जो दिखता है वही बिकता,
0: वही बिकता है। तो इसमें जो हमारी पूसा अरुणमा है, पूसा लालिमा है, उनका ये लाल किस्म की हैं। इनको अगर किसान भाई चयन करेंगे तो उन्हें बाहर एक्सपोर्ट करने में अच्छी आमदनी मिलेगी।
1: और अमरूद की बात करें,
0: हाँ अमरूद मगर देखिए गड्ढे के बता दिया, किस्मों की अगर बात करें तो किस्मों में अभी बहुत अच्छी किस्म दो आई, एक लाल है और एक सफेद है। एक है पूसा प्रतिष्ठा और एक पूसा अरुसी। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली से किस्में निकाली गई हैं। इसके अलावा हमारे पंत प्रभात भी अच्छी किस्म है। पुरानी किस्मों में अलावा सफेदा अभी भी चल रही है, एक ललित किस्म बहुत अच्छी है, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भी कुछ किस्में हैं जो अच्छी आ रही, किसान भाई उनको भी लगा सकते हैं।
1: आजकल डॉक्टर साहब थाई अमरूद काफी बाजार में दिख रहा है, संभावना है इसकी व्यवसायिक,
0: संभावना है, वो थोड़ा कम स्वाद वाली होती है।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे, नए फलदार पौध लगाने की योजना तैयारी और उन्नत किस्मों के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 98-68-93-45-80 9868-93-4580 98-68-93-45-80
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का नए फलदार पौध लगाने की योजना तैयारी और उन्नत किस्मों के बारे में डॉक्टर साहब?
0: मैं किसान

0: भाइयों को यहाँ यही बताना चाहूंगा कि आप परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी को अपनाइए, जिससे आपको अधिक से अधिक आमदनी होगी और आपका जो स्वास्थ्य होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि जो फल वृक्ष हैं या जो फल हैं वो पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। जब आप अपने खेतों में लगाएंगे, बागवानी करेंगे, तो दूसरों को भी खिलाएंगे और अपना भी खाएंगे।
1: डॉक्टर अनिल कुमार दुबे साहब आज आप कार्यक्रम में आए और नए फलदार पौध लगाने की योजना, तैयारी और उन्नत किस्मों के बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नए फलदार वृक्ष लगाने की योजना विषय पर अभी आप डॉक्टर अनिल कुमार दुबे के साथ की गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:45 हुए हैं।

लीजिए आप सुनिए लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं कुछ अवधि लोक गीत। कलाकार हैं हेमा उप्रेती। आइए पहले सुनते हैं ये खेमटा।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज कलाकार हैं हेमा उप्रेती। इस खिमटा के बाद आइए सुनिए एक मनोरंजना।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं हेमा उप्रेती के गाए हुए अवधी लोकगीत। आइए अंत में सुनते हैं ये चकिया गीत।

ये चकिया गीत अभी आपने सुना। आज के लोक माधुरी कार्यक्रम में कलाकार थी हेमा उप्रेती, आपके साथ संगति की नाल पर अवध बिहारी वर्मा, ढोलक पर राजकुमार, हारमोनियम पर थे संतोष तिवारी, बांसुरी पर मुकेश कुमार और साइड रिदम पर शैलेंद्र सिंह। इसके साथ ही आज का लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि आज रात्रि 11:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। आज का विषय है युवा शक्ति। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। समय याद रखिएगा रात्रि 11:10 से। रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सूचनाएं समाप्त हुई।

अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ हो रही है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए इस सभा में और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। सबसे पहले जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 11:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। विषय होगा युवा शक्ति। इस विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात्रि 10:00 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। शाम 5:10 पर सुनेगा कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये सभी कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम में आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा पर विशेष भेंट

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ

कविता सुनिएगा, विषय होगा साहित्य, समाज और आकाशवाणी। इस विषय में श्री नवीन जोशी से भेंट करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। युवा तरंग कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:25 पर। शाम 5:45 पर कार्यक्रम नई उड़ान, इसमें लोक स्वर के अंतर्गत सुनिएगा विलुप्त होती लोक परंपराएं, मिट्टी की खोती धड़कनें। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में राजनारायण वर्मा से वार्ता सुनिएगा, ग्रामीण उद्यम से आत्मनिर्भर गांव। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, धान की फसल में समन्वित खरपतवार प्रबंध। इस विषय में डॉक्टर लाल पंकज कुमार से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम में अगम दयाल श्रीवास्तव की वार्ता प्रसारित की जाएगी, डिकोडिंग साइंस, आखिर विज्ञान के पीछे का विज्ञान क्या है, प्रस्तुति प्रवीण कुमार की होगी। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर शिखा भदौरिया से सुनिएगा गीत। ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब जानकारी कल के मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात्रि 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला सुनिएगा, रात्रि 10:00 रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा प्रसारित की जाएगी। ये दोनों ही कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा कल सवेरे 9:30 पर, इसमें समात फरमाइएगा उर्दू के मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र पर प्रोग्राम जुगनू जो सितारों की महफिल में खो गया, पेशकश आकाशवाणी गोरखपुर मरकज की होगी। कृषि चर्चा कार्यक्रम में सवेरे 6:05 पर, आराधना कार्यक्रम सवेरे 6:15 पर, और श्री रामचरित मानस गान सुनिएगा सवेरे 6:43 पर। सवेरे 7:00 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर से जानिएगा सरसों के बीज, स्वाद और सेहत का संगम। सवेरे 7:10 पर विविधा कार्यक्रम का विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 7:31 पर सपन चौधरी का तबला वादन प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 9:50 पर और दिन में 2:45 पर कार्यक्रम सुनिएगा लोक रंग और लोक माधुरी, कलाकार होंगे राजेश त्रिपाठी। दिन में 12:00 बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम बाल मंच। दिन में 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज इतवार है, इसमें मुमताज हसन की लिखी झलकी सुनिएगा EMI का चक्कर। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में संजय कुमार मिश्र से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत का विषय होगा गर्मी में पशुओं का खानपान और रख रखाव। शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। रात्रि 8:10 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर अमरमणि त्रिपाठी की व्यंग्य वार्ता प्रसारित की जाएगी हवा में फड़फड़ाते शब्द। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
2: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है जिसकी उपलब्ध

0: उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
1: मैं तो सरपंच हूँ लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे, और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकास खंड बगीचा जिला जसपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
0: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया, और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
1: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए, और उनका मैं सपोर्ट लिया, और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार, और हम लोग पूरे गाँव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गाँव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
0: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
1: मेरा सहयोग दिए।
0: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का 2 मीटर का 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
1: सर, पहले हम लोग यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल

0: में रहते हैं हम लोग, जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है आने वाला पीढ़ी के लिए। हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है। मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिये, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय। हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था। उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था, उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए। उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी आया कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग को वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए। अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे।
1: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
0: तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं है
1: जी।
0: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं। लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं। वहाँ हम लोग का मतलब कि गाँव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को। उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहे हैं
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इस मिनट उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इस मिनट उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर से उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय, उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन
1: अच्छा।
0: है मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घरे में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है, मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है,
1: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है?

0: तौर पे जब गांव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही? आपका माइंडसेट क्या था? कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था। फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए। जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया। उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
0: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए। आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है। हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
0: जी।
1: चाहे जिसे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गाँव के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
0: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
1: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं मांडवी और मेरे साथ है मेरी दोस्त
1: आयुषी और हम दोनों लेकर हाजिर हो चुके हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम युवा तरण।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होती, उनके पास उनकी अपनी कहानियां होती हैं। किसी पुराने किले की दीवारें, किसी मंदिर की घंटियों की आवाज़ और किसी ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरत नक्काशी या फिर दादी नानी की सुनाई हुई लोक कथाएं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ चीज़ें नहीं होती हैं बल्कि हमारी पहचान होती हैं, हमारे पहचान का एक हिस्सा होती हैं। कई बार हम किसी

0: ऐतिहासिक जगह पर घूमने जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और वापस आ जाते हैं अपनी डेली ज़िंदगी में। लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि ये धरोहर सैकड़ों साल से हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: बिल्कुल मानवी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विरासत यानी हेरिटेज सिर्फ किले, महल और स्मारक ही नहीं होते। हमारी भाषाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, त्यौहार, पारंपरिक खान पान, यहाँ तक कि हमारी बोली और हमारी कहानियाँ भी हमारी विरासत का हिस्सा ही हैं। यानी जो कुछ हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है वही हमारी हेरिटेज है।
0: और शायद यही वजह है कि भारत को दुनिया की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खाने का स्वाद बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदलती और वो है हमारी सांस्कृतिक समृद्धि।
1: और दोस्तों एक चिंता की बात भी है, समय के साथ कई ऐतिहासिक इमारतें नुकसान झेल रही हैं, कई लोक कलाएं धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं और नई पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा अपनी स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों से दूर होता जा रहा है।
0: ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम अपनी विरासत को सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित कर देंगे या फिर उसे समझेंगे, सहेजेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि हेरिटेज सिर्फ अतीत की याद नहीं है, भविष्य के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: दोस्तों हेरिटेज यानी वो चीज़ें जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और जिन्हें हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब ये सिर्फ किला, महल या स्मारक ही नहीं हो सकता, हेरिटेज में हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस, फोक सॉन्ग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फेस्टिवल्स और यहाँ तक कि हमारी लोकल लैंग्वेजेस और लोकगीत भी शामिल हैं। दोस्तों इसी के साथ अब सुनवाते हैं आपको एक लोकगीत जो भावनाओं से भरपूर है और जिसे सुनते ही हमारी भारतीय लोक संगीत की मिठास महसूस होने लगती है। बिछड़ने की कसक और अपनेपन की भावना को समेटे ये लोकगीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है। तो आइए सुनते हैं लोकगीत रलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, और इसको आवाज़ दी है प्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी जी ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दोस्तों चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है समुन्नत विकास में धार्मिक पर्यटन की भूमिका। वार्ताकार हैं श्री रमेश चंद्र, तो आइए सुनते हैं।
9: समुन्नत विकास में धार्मिक पर्यटन की भूमिका के विषय में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, भारत भूमि वैदिक, सनातन, बौद्ध, जैन और सिख संस्कृति की जननी है। कालांतर में कुछ अन्य पंथ, आस्था और धर्म का विकास हुआ। परिणामतः यहाँ बहुत से तीर्थ स्थल हैं और लोगों की उनमें गहरी आस्था है। यहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्राओं की परंपरा रही है। देश के हर दिशा में कोई न कोई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जिनके दर्शन हेतु देश भर के लोग वर्ष भर यात्रा करते हैं और इस दौरान अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के साथ परस्पर संपर्क में आने से एक दूसरे के जीवन शैलियों, भाषाओं और प्रथाओं का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से लोगों में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है और तीर्थ स्थलों के आसपास बाजार बन जाते हैं। तीर्थ यात्राओं में देश की विविधता के मध्य जनमानस की मूलभूत एकता की भावना प्रवाहित होती रही है। तीर्थ यात्रा से संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला को प्रोत्साहन मिलता है और उनका हस्तांतरण भी होता है। तीर्थ यात्रा शिक्षा, सूचना और सांस्कृतिक चेतना का स्रोत है। निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है और आयात से वो खर्च होती है। इसी तरह पर्यटकों के आने से मुद्रा आती है, अतः पर्यटन का देश की अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध है। पर्यटन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात का उद्योग बन गया है। कोरोना पूर्व विश्व के कुल माल और सेवा निर्यात में पर्यटन का हिस्सा 6% और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका हिस्सा 30% रहा है। इसके अलावा विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 9.8% पर्यटन क्षेत्र से आता है। चीन ने पर्यटन संवर्धन में अपने सभी यातायात एवं संचार संसाधनों को आधुनिक बनाने तथा पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण करके उसे दर्शनीय एवं आकर्षक बनाने का काम अपने उदारीकरण नीति के साथ शुरू किया था। तब से उसके आर्थिक विकास में पर्यटन ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। पर्यटन के विकास और रोजगार सृजन के लिए भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत

अत्यंत समृद्ध है, देश को इसका पूरा लाभ मिल सके, इसलिए भारत सरकार ने 2014-15 के बजट भाषण में विशेष थीमों पर आधारित पर्यटक परिपथों के निर्माण का निर्णय लिया। प्रसाद, स्वदेश दर्शन, उड़ान जैसी योजना शुरू की गई, जिससे विभिन्न 15 थीमों में रामायण परिपथ, कृष्ण परिपथ, बौद्ध परिपथ सहित तीर्थांकर, सूफी एवं आध्यात्मिक परिपथों का विकास हुआ और धार्मिक गंतव्यों तक पहुंचने के लिए सभी मार्गों के यातायात संसाधनों का विकास इस तरह किया गया कि यात्रा आराम तलब हो, समय की बचत हो और साथ में सुरक्षित भी हो। इसके पूर्व गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर स्वतंत्र भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित उनकी 31 अक्टूबर 2013 को 137वीं जयंती के अवसर पर वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशालकाय स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया था, जो अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ। मंदिर का काम पूरी रफ्तार से चल ही रहा है, साथ ही रामनगरी का भी कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने 20 अगस्त 2021 को प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और मुख्य मंदिर के पास पार्वती जी मंदिर का शिलान्यास किया। सोमनाथ मंदिर के किनारे अरब सागर पर 1.25 किलोमीटर लंबा वॉकवे बनाया गया है। सोमनाथ परिसर में एक संग्रहालय तैयार किया गया है, जिसमें मंदिर के प्राचीन खंडित अवशेष और मंदिर की ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाने वाले साहित्य भी प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। 11 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ लोकार्पण हुआ। केदारनाथ व बद्रीनाथ से जुड़ी तमाम विकास परियोजनाओं का पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। आज चाहे दक्षिण के मंदिर हों या उत्तर के, तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की लंबी कतार हर जगह लगातार बनी रहती है। भारत योग का जन्म स्थान है, यहाँ संतों आचार्यों द्वारा स्थापित योग स्थल हैं, जहाँ प्राकृतिक वातावरण में योग सत्र चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की थी, जिसके बाद प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आज योग रिट्रीट और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से चल रहे आयुर्वेदिक स्पा बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए 20 अगस्त 2021 को कहा था, आज दुनिया भारत के योग दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रही है। नई पीढ़ी में भी अपनी जड़ों से जुड़ने की जागरूकता आई है। हमारे टूरिज्म और आध्यात्मिक टूरिज्म में संभावनाएं हैं। देश आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर रहा है। हमारा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 अलग अलग थीमों पर टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रहा है। इनसे देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी पर्यटन और विकास के अवसर पैदा हो रहे हैं। आज देश इन पवित्र तीर्थों की दूरियों को कम कर रहा है। 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब 40 तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है। देश भर में 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर उन्हें डेवलप किया जा रहा है। यह टूरिज्म इंडस्ट्री को ऊर्जा देंगे। 2013 में देश जहां टूरिज्म में 65वें स्थान पर था, 2019 में 34वें स्थान पर आ गया है। पर्यटन के जरिए आज देश सामान्य मानवीय को न केवल जोड़ रहा है, बल्कि खुद भी आगे बढ़ रहा है। उनके इस वक्तव्य का निष्कर्ष यह है कि धार्मिक पर्यटन भारत को विकसित करने के लिए सबसे मजबूत इकाइयों में से एक है और सरकार धार्मिक पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूक है।

0: के लगातार प्रयास से धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। बड़े भौगोलिक विस्तार वाले देश ने सामाजिक समेकीकरण के साथ साथ घरेलू लघु उद्योगों में वृद्धि, रोजगार सृजन, सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों का संवर्धन, स्थानीय कला और शिल्प का विकास हो रहा है। पर्यटन उद्योग ने बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने और रोजगार सृजन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पर्यटन उद्योग की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पर्यटन का बाजार 2024 तक 42 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। पर्यटन सेवा उद्योग का भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 6.23% और कुल रोजगार में 8.78% का योगदान है। 2022 में करीब 62 लाख विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की। पर्यटन मंत्रालय इस साल को भारत की यात्रा पर फोकस करते हुए विजिट इंडिया ईयर 2023 के रूप में मना रहा है तथा G20 की अध्यक्षता के तहत पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन करके विदेशी और घरेलू निवेशकों को भारत के पर्यटन उद्योग में निवेश हेतु प्रोत्साहित भी कर रहा है। देश के शीर्ष सेवा उद्योगों में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी एक वार्ता जिसका विषय था समुन्नत विकास में धार्मिक पर्यटन की भूमिका।
2: वैसे आयुषी, आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, नई तकनीक आ रही है और युवाओं के लिए भी कई नए अवसर तैयार हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी देश का सबसे बड़ा विकास तब होता है जब उसके युवा आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल मांडवी, और इसी सोच के साथ सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल सके। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है स्किल इंडिया मिशन। इसका उद्देश्य युवाओं को अलग अलग कामों का प्रशिक्षण देना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके।
2: हाँ, और इसी कमी को दूर करने के लिए इस योजना के तहत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, ब्यूटी और वेलनेस, ये सभी स्किल्स उनको दी जाते हैं, है ना। और वैसे आयुषी, क्या इस योजना का लाभ सिर्फ शहरों के युवाओं को मिलता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि गांव और छोटे कस्बों के युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। इससे उन युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है जिन्हें पहले ऐसे अवसर आसानी से नहीं मिल पाते थे।
2: और मुझे लगता है कि आज के समय में सिर्फ नौकरी ढूंढना ही काफ़ी नहीं है, कई युवा अपनी खुद का काम भी शुरू करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, इस तरह का प्रशिक्षण युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी तैयार करता है। कोई अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकता है, कोई सेवा केंद्र भी खोल सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के युवा तरंग कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हम आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम का विवरण। कल के कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसमें हम बात करेंगे सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व की, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों की और इस दिशा में हम सबकी जिम्मेदारियों की। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी एक विशेष भेंट वार्ता जिसका विषय है दूषित जल से होने वाली समस्याएं और उपचार। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आयुषी
2: और मुझे यानी के मांडवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आज का नई उड़ान कार्यक्रम लेकर मैं अमिता, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी बातें और संदेश जो समाज को नई दिशा और नई सोच देते हैं। तो आज के नई उड़ान के अंक में लोक स्वर की श्रृंखला होगी, जिसमें हम जानेंगे विलुप्त होती लोक परंपराएं, मिट्टी की खोती धड़कनें। साथ ही अवसर

और प्रगति समाचार होंगे, लेकिन पहले बात समय के साथ सांप्रदायिक सौहार्द की। सभी धर्मों, जातियों और समुदाय के लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा और आपसी सम्मान रखना होता है। जब समाज में लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और शांति बनाए रखते हैं, तभी सच्चे अर्थों में सौहार्द स्थापित होता है। देखिए, कोई भी देश तब आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक एकजुट हो। यदि समाज में लड़ाई, झगड़े, भेदभाव और नफरत होगी तो विकास रुक जाएगा। वहीं दूसरी ओर, जब लोग एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं तो देश तेजी से तरक्की करता है। हमारा भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन फिर भी एकता में अनेकता हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम इस पहचान को बनाए रखना है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेम और सद्भाव का संदेश देना है। तो आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम नफरत नहीं, प्रेम फैलाएंगे, भेदभाव नहीं, समानता को अपनाएंगे और अपने देश की प्रगति में मिलकर योगदान देंगे। कुछ इसी बात को कह रहा है देश प्रेमी फिल्म का ये गीत, आइए सुनते हैं।

0: तो अभी आपने सुना ये भाईचारे और एकता का संदेश देता गीत। साथियों, किसी भी समाज की जो परंपराएं होती हैं, लोक परंपराएं होती हैं, वो यही काम करती हैं लोगों को आपस में जोड़ने का। गांव के मेले, लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक उत्सव कभी समाज को एक सूत्र में पिरोते थे, लेकिन आज इन्हीं परंपराओं में से कई धीरे धीरे हमारी जिंदगी से दूर होती जा रही हैं। आइए जानते हैं कि हमारी विलुप्त होती लोक परंपराओं को बचाना क्यों जरूरी है। अपनी साथी शालिनी सिंह के साथ आइए सुनते हैं लोक स्वर की इस श्रृंखला को।
1: कहते हैं किसी समाज को समझना हो तो उसके भवनों, बाजारों या सड़कों से नहीं, उसके लोक से मिलिए, क्योंकि लोक केवल लोगों का समूह नहीं होता। लोक वो चेतना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन जीने की कला सौंपती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को संस्कृत की जीवंत शक्ति मानते थे। वहीं जर्मन चिंतक हर्डर ने लोक परंपराओं को किसी भी समाज की आत्मा कहा है, और सच भी यही है। लोक परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं थी, वे सहयोग थी, सहभागिता थी, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का स्वभाव थी। एक छप्पर उठता था तो पूरा गांव खड़ा होता था। एक खेत की फसल कटती थी तो कई हाथ साथ लगते थे। एक घर में गीत गूंजते थे तो उनकी प्रतिध्वनि पूरे गांव में सुनाई देती थी। लेकिन बदलते समय के साथ क्या हम केवल परंपराएं खो रहे हैं, या उन परंपराओं में छिपे जीवन मूल्यों को भी? इन्हीं सवालों को लेकर मैं शालिनी आज लोक स्वर की पगडंडी पर चलते हुए जिस विषय के साथ लोगों के बीच में हूँ, वो विषय है विलुप्त होती लोक परंपराएं, मिट्टी की खोती धड़कनें।

0: लोगों से ही सुनते हैं उनकी स्मृतियाँ, समझेंगे उनके अनुभव और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी मिट्टी की वो कौन सी धड़कनें थी जो धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही है।
1: दोस्तों हमारे साथ हैं अब दुर्गा प्रताप सिंह जी, उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस विषय में।
2: देखिए लोक परंपराएं, जहाँ तक मेरा मानना है, उसका जुड़ाव गांव क्षेत्र से ज़्यादा रहा है और आज भविष्य के लिए अपॉर्चुनिटी के चलते लोग गांव से माइग्रेट कर रहे हैं। गांव से भाई संसाधन बाहर ज़्यादा हैं और बाजार का एक बाजारीकरण हुआ है। बाजारीकरण के चलते अच्छे अपॉर्चुनिटी

0: चलते लोग गांव छोड़ रहे हैं। गांव छोड़ने से परिवार विघटन हुआ, जो परिवार संयुक्त होता था वो एकाकी हुआ, और इस तरह से वो जो संस्कार की जो धरोहर हम लोग सजोए थे वो खोती जा रही है। वो धीरे धीरे, ऐसा मुझे लगता है, अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में विलुप्त हो जाएगी। अगर हम साथ में रहते, संसाधन सब संयुक्त में रहते, तो ये परंपराएं जो आज तक चली आ रही हैं वो आगे भी चलती हैं, हम आने वाली जनरेशन को दे पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज मिस है, कहीं हम लोग उसको खो रहे हैं।
1: दोस्तों, लोक संस्कृति की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं संस्कारों की बात स्वतः ही जुड़ी ही जाती है, और संस्कारों को सहेजने की भूमिका में हमेशा से महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि रही है। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रियंका जी। तो प्रियंका जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो खोती हुई लोक परंपराएं हैं उसके पीछे क्या वजह है आप पाती हैं?
2: परंपरा, हम लोग शादी ब्याह में जाते थे, सब सारे लोग भाई अपनी अपनी तरफ से सब मिलना जुलना, लेकिन अब सब बट गए हैं। गांव में था कि सब साथ में रहना, रात भर मनोरंजन करना, सबकी मदद

0: हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो खोती हुई लोक परंपराएं हैं उसके पीछे क्या वजहें आप पाती हैं।
1: लोक परंपरा, हम लोग शादी ब्याह में जाते थे सब, सारे लोग आप भाई अपनी अपनी तरफ से सब मिलना जुलना, लेकिन अब सब बट गए हैं। गाँव में था कि सब साथ में रहना, रात भर मनोरंजन करना, सबकी मदद करना, सबके हाथ काम में हाथ बटाना अब नहीं चाहते हैं लोग।
0: तो लोग आपस में सहभागिता करना पसंद नहीं कर रहे हैं।
1: जो हमारी परंपराएं हैं वो सब धीरे धीरे लोग ना ही किसी से पूछना चाहते हैं ना ही सीखना चाहते हैं। तो आज के हिसाब से कोई किसी से अटैच नहीं होना चाहता है।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो संयुक्त परिवार थे उनका जो अनुशासन था वो भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा?
1: संयुक्त परिवार में होता था कि आपके बच्चे हैं सब दादा के साथ, दादी के या मामा मामी के साथ, वो रह के उनसे चीज़ें सीखते थे। आज आप अकेले बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, नहीं सिखा पाते हैं। तो पहले था कि सबका बात मानना सुनना, आज एकाकी आपकी आदत हो गई है तो आप किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आजकल बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो किसी के सुनना नहीं चाहते हैं।
2: दोस्तों, ग्रामीण परिवेश को जानने और समझने के लिए हमने कुछ और लोगों से भी मुलाकात की है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश कुमार पाल। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं इस वक्त?
3: मैडम, हम जो है मतलब सारे काम करते हैं, सूरत में रहते हैं, हम गांव में हैं। समय
2: अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर कमाने चले गए, क्या वजह है इसकी?
3: घर परिवार अपना चलाने के लिए बाहर जाना पड़ा है।
2: तो अभी जो आप वहाँ से कमा रहे हैं, कितनी कमाई कर लेते हैं?
3: हमारी वहाँ सैलरी 20,000 रुपया है।
2: जो आज वर्तमान समय में धीरे धीरे जो गांव की व्यवस्था थी, क्या लगता है आपको कि क्या क्या खत्म होता जा रहा है जिसकी जरूरत आज भी है हमें?
3: मान सम्मान, इंसान का लगाव, हित, ये सब खत्म होता जा रहा है, कोई किसी को समझता ही नहीं।
2: इसके पीछे क्या कारण है?
3: अब इसके पीछे यही मतलब कारण है कि इंसान के सोच विचार बदल रहे हैं।
2: दोस्तों, अब हमारे साथ हैं राम अचल तिवारी जी, जो कि पूर्व BDO रहे हैं और उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर 3 पीढ़ियों को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है, यानी ग्रामीण परिवेश से बखूबी वाकिफ हैं। तो राम अचल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
2: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे गांव की जो पुरानी लोक व्यवस्था थी वो खत्म सी होती जा रही है और आज गांव के लोग भी शहर की ओर भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या कारण नजर आते हैं आपको?
4: लोक परंपराएं आज से नहीं, बहुत देर से चल रही है हमारे समाज में
2: जी,
4: और उससे इतना लाभ था कि हर वर्ग को तो काम मिलता था, पेट भरता था। अब भली भांति सामाजिक व्यवस्था एक थी, समाज में यानी बराबर चलता था, किसी के पास कोई भेदभाव नहीं था
2: जी जी।
4: लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि सारी परंपराएं टूटती जा रही हैं, यानी जात व्यवस्था जो थी जिससे फायदा होना था, जैसे उदाहरण के लिए एक बढ़ई है, कुम्हार जो है अपने को प्रजापति कहने लगे, और प्रजापति कहते कहते ऐसा लग रहा है कि कुम्हार यानी कुंभकार बर्तन बनाने वाली श्रेणी जो है ये समाप्त हो जाएगी। उतना रोजगार देहात में नहीं मिल पाता जितनी अपेक्षा है, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं शहर की ओर
2: जी,
4: और शहर में चाहे कमाई मिले लेकिन रहने की और खाने की व्यवस्था शायद देहात से ज्यादा अच्छी है। साथ ही साथ एक बात और है
2: जी,
4: कि लोगों को अपने जात का काम जो है उससे उनको घृणा सी हो गई है, इसलिए वो उसको छोड़ते जा रहे हैं। पहले नाऊ का जजमानी होती थी, लाभ होता था
2: जी।
4: उनको हर तिमाही में अनाज दिया जाता था, हालांकि वो परंपरा तो अब भी है, लेकिन पता नहीं क्यों नाऊ का काम भी लोग छोड़ रहे हैं। नाऊए नहीं, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, धोबी, ये सब अपना काम छोड़ के शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, शायद वहाँ लाभ ज्यादा होता है।
2: दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अरुण तिवारी जी। तो अरुण जी, आप गांव से जुड़े हुए हैं और आज भी गांव की परंपराओं को बड़ा सहेजते हुए आप चल रहे हैं, काफी काम भी आप करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या कारण लगते हैं कि ये हमारी लोक परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं?
5: जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखें, जब जीवन शैली बदलती है किसी समाज की, तो जीवन से जुड़ी कई घटनाएं

0: हैं, कई परंपराएं वो खत्म हो जाती हैं और यहीं से उन परंपराओं का क्षरण शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए जत्तगी एक सौरी का घर होता था और वहीं पर महिला की जत्तगी होती थी। इसके बाद सरिया सुअर बहुत सारी वो चरुआ चढ़ाना क्या क्या होता था सब होता था, लेकिन जब से डिलीवरी का सिस्टम अस्पताल में गया वो सारी परंपरा खत्म हो गई क्योंकि जीवन शैली बदल गई। विवाह मंडप सजता था आंगन में, हमारे पुरखों की वेदी थी, जनवासा बनाया जाता था, गांव में विवाह होता था। जब से ये विवाह होटलों में शिफ्ट हुआ वो सारी परंपराएं ध्वस्त हो गई, सारे गीत खत्म हो गए और उससे जुड़े तमाम जो कर्मकांड थे, कर्मकांड से जुड़े जो गीत परंपराएं थी, समझ थी, वो सारा कुछ खत्म हो गया। गांव में उस परंपरा से जुड़े कई जात बिरादरी ऐसे थे जो इसमें सहयोगी की भूमिका में थे और उनको कहीं अलग से रोजगार की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि समाज ने उनको रोजगार मुहैया कर रखा था। शादी में जो सहयोग होते थे इस सहयोग से जुड़े उनका जीवन यापन भी चलता था और वो समाज समृद्ध था और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। सब में एक आपसी पारिवारिक रिश्ते के भाव से सबको बुलाया जाता था और सभी वो लोग अपना समझ करके वो काम करते थे। तो ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है क्योंकि हमारी जीवन शैली बदलती जा रही है।
1: बड़े कमाल की बात है कि हमारी जो लोक परंपराएं बनाई गई वो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन यापन का जरिया भी बनी।
0: जी बिल्कुल, आप सच कह रहे है कि उन परंपराओं से समाज का जुड़ाव था और तमाम वर्ग समाज के जुड़े थे जिनसे उनको व्यवसाय भी मिलता था, रोजगार भी बढ़ता था और सामाजिक सहयोग भी होता था। अब जैसे कि शादियों में मड़वा जब होता था तो मड़वा में सुग्गा या तोता लकड़ी का बनाकर लगाते थे जो बढ़ाई का काम होता था, इससे उसको नेक भी मिलता था। इसके पीछे का कारण हमने जानने का प्रयास किया तो पता ये चला कि तोता जो है, सुग्गा जो है, कामदेव की सवारी कहा गया इसे। और चूंकि ये शादी का मौका है, वर और वधू दोनों गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कामदेव की जो सवारी है सुग्गा तोता, इसका विशेष प्रयोजन होता है और इसको हाईलाइट किया जाता है। और इसके अलावा लावा परछा जाता है। लावा परछना का मतलब ये होता है कि अन्न का महत्व क्या है जीवन में, ये उन जो नव गृहस्थ बन रहे हैं उनको पता चले और उस लावा भूनने का काम करते हैं, उनको नेक मिलता था, नेचू मिलता था और जुड़ाव और संपन्नता समाज में बनी रहती।
1: तो कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास की जो बात आज कही जा रही है योजनाओं के माध्यम से, वो हमारी परंपराओं में बहुत पहले से सम्मिलित थी।
0: जी बहुत पहले सम्मिलित थी। और ये तो शादी ब्याह की बात हो गई, हमारी कृषि परंपरा थी तो कृषि परंपरा में जब खेती बाड़ी होती थी और फरवार में जब अनाज आता था तो अनाज का वितरण मालिक के घर में बाग में जाता था। पहले वहाँ से परिवार से ही वो समाज के विभिन्न व्यक्तियों में जाता था, मालिक को, मल्लाह को, ब्राह्मण को, भाई को, कुम्हार को, जो जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक सहयोग में जुड़े हुए हैं, उन सबको दिया जाता था। हमारे जो उत्सव परंपराएं थे होली दिवाली, इनमें भी इनका सहयोग होता था। अब जैसे दिवाली में कुम्हारों का बड़ा सहयोग होता था, महीनों पहले वो शुरू हो जाते थे। और अभी तो मेरी बात हुई थी कुछ कुम्हारों से हम अपने गांव में, उन्होंने बोला था आज लोग प्लास्टिक का सामान यूज करने लगे, हमारा धंधा कम हो गया है, नहीं तो घर के सारे काम किसी के लिए अनाज संग्रह करने के लिए ये कुम्हारों का मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल होता था। खाद्य पदार्थ रखने के मामले में वो मिट्टी के बर्तन बड़े स्वस्थप्रद हुआ करते थे। हमारे समाज में जो हुनरमंद लोग हैं, जैसे हमने बताया कुम्हार, बढ़ई, लोहार, ये तमाम सारे ये हुनरमंद लोग थे और इनके हुनर को फिर से बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है।
1: जी।

परंपराओं की ये यात्रा हमें केवल अतीत तक नहीं ले जाती, ये भविष्य का रास्ता भी दिखाती है। क्योंकि परंपराओं का अर्थ समय को रोक देना नहीं है, बल्कि उनके मूल भाव को नए समय में जीवित रखना है। आज जब पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता, हस्तशिल्प प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और एक जिला एक उत्पाद जैसी पहलें सामने आ रही हैं, तो ये केवल आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास नहीं है, ये हमारी लोक स्मृतियों, लोक कौशलों और लोक ज्ञान को भविष्य से जोड़ने की कोशिश भी है। क्योंकि सच्चा विकास वही है जहां आधुनिकता आगे बढ़े लेकिन अपनी जड़ों का हाथ थामे रहे, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन लोक की आत्मा भी जीवित रहे, और जहां मिट्टी की धड़कनें समय के साथ बदलें जरूर मगर कभी खामोश न हो, क्योंकि मिट्टी की असली धड़कन उसके लोगों में बसती है। और जब तक लोगों के बीच सहयोग, संवेदना और साथ चलने का भाव जीवित है, तब तक लोक भी जीवित है, लोक परंपराएं भी जीवित हैं और हमारी मिट्टी की धड़कनें भी।

लोक परंपराएं केवल सांस्कृतिक हमारी सांस्कृतिक पहचान ही नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और विकास की राह दिखाने वाली अमूल्य धरोहर भी है, तो इन्हें सहेजना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी विषय को अभी आपने सुना लोक स्वर की श्रृंखला में, विलुप्त होती लोक परंपराएं, मिट्टी की खोती धड़कने, साथी शालिनी सिंह के साथ। तो साथियों, इसी सोच के साथ अब हम बढ़ते हैं उन खबरों की ओर जो देश और प्रदेश के विकास और जन कल्याण और नई उपलब्धियों की तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। भाई आपको बताते हैं प्रगति से जुड़ी हुई कुछ खबरें। अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के लिए पीएम अजय पोर्टल की शुरुआत। पीएम अजय यानी प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना पोर्टल के साथ अजय मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो कल्याणकारी सेवाओं की त्वरित डिलीवरी को सक्षम बनाते हुए अंतिम छोर तक योजना क्षेत्र स्तरीय निगरानी और पारदर्शिता में सुधार करेगी। देश में ये अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को डिजिटल और मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने खेल प्रक्रियाओं को मजबूत और पारदर्शी बनाने और खेल क्षेत्र में विवादों के तेजी से समाधान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल शासन बोर्ड नियम और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 को अधिसूचित किया है। ये खेल से जुड़े विवादों को हल करने के लिए विशेष निकाय के रूप में कार्य करेगा जिससे सिविल अदालतों पर निर्भरता कम होगी। और साथियों, विकास की रफ्तार देखिए तभी सार्थक होती है जब उसके लाभ आम लोगों तक पहुंचे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। तो इसी कड़ी में अब आपको बताते हैं रोजगार से संबंधित कुछ अवसरों की जानकारी, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी के 1170 पदों की भर्ती के लिए विवरण जारी किया जा चुका है, जिसमें 1021 पद स्टेनोग्राफर सी के लिए और 149 पद स्टेनोग्राफर डी के लिए होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट के 543 पदों के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। विस्तृत जानकारी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट.in पर आप जा सकते हैं। तो इस जानकारियों के बाद देखिए, रोजगार और आत्मनिर्भरता की बातें तो हमने सुनी, आखिर मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई रोटी का स्वाद ही कुछ अलग होता है, और इसी भाव को बड़े सरल और मधुर अंदाज में प्रस्तुत करता है ये गीत। आइए सुनते हैं।

0: तो भाई इस गीत के बाद कार्यक्रम को समाप्त करें, आपको बता देते हैं अगर आप हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो भेजिए इस पते पर।
1: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलो के नए कदम, अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com या लिख भेजिए अपने पत्र कार्यक्रम नई उड़ान आकाशवाणी केंद्र 18

तो साथियों, आज के नई उड़ान कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको बता दें कि कल के नई उड़ान में सामाजिक नवाचार के युवा चेहरे, बदलाव के चेहरे, इस विषय की श्रृंखला के साथ होंगे हमारी साथी आरती। फिलहाल अमिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए एक सूचना सुनिए। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP के अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prasarbharti.gov.in/NIPP/ अथवा akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF। सूचना समाप्त हुई। FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर रविवार 7 जून 2026 की दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य सुनिए फोन इन प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। इसका

0: विषय होगा दौरा पड़ने पर घबराए नहीं, सही कदम उठाए। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, एमडी पीजीआई चंडीगढ़, एमडी बाल नियंत्रक रोग एवं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एम्स। तो आप फोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0522-223-8845 या 0522-223-8852। फोन नंबर पुनः सुने 0522-223-8845 या 0522-223-8852। तो सुनना ना भूलिए रविवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य फोन इन प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज, न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर। कार्यक्रम आज के मेहमान में सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री अनिल रस्तोगी से सुरेंद्र राजेश्री की बातचीत सुनिए रविवार 7 जून 2026 को प्रातः 10 बजे FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर,
2: 8700001-4242।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: जो जय हिंद।
1: हम राधा बहनी।
0: हाँ कृष्णा भैया,
1: देखो कही गवा है जेठ बहुत तपत है और कैसन तपत है जेठ की देखो, लागत है ऐसे लुआर लागत है कि लागत है वो कनपट्टी है वो आँख तो जरिया है पूरा।
0: बिल्कुल
1: भैया, बाहर निकालो तो भाई जब तक अगौछा न ले रहो तो हिम्मत ही नहीं पड़ती।
0: बिल्कुल भैया, देखो गर्मी तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ के हो रही है और गर्मी तो भैया इतनी ज़्यादा हो रही है कि चिलचिलाती भा देखो घाम निकरो तो बिल्कुल निकरे कर बिल्कुल मने नहीं करते थे जैसे सूरज महाराज आगे बरसा रहे हों।
1: हाँ तो देखो ठीक है भाई, देखो जेठ में जब गर्मी पड़ जाए लेकिन ज़्यादा इतनी गर्मी हो जाए तो कहूँ कहूँ ऐसा होता कि जनधन का हानि हो लागत है।
0: बिल्कुल
1: भाई देखो यह में अपने पंचन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी रखे के है, बचाव क्या है भाई, प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर तो अपन जोर ना है लेकिन सावधानी अपने हाथ में है।
0: लेकिन भैया देखो प्रकृति के भी प्रति अपने लोगों के यहाँ देखो सबका सजग रहा है कि यहाँ चाहिए प्रकृति रही तो देखो इतनी जो अब देखो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही रहे पहले के टाइम पर इतनी नहीं पड़त रहे का है तो देखो पेड़ कट ज्यादा रहे लागी कम रहे हैं तो अभी देखो कल के दिन देखो कितने भैया वृक्षारोपण हुआ है पर्यावरण दिवस मनाया गया है तो हम सबका चाहिए कि देखो अपन पेड़ पौधे लगावें अपने

0: जीवन के हैं बचावें, और ये जो देखो सब लोग लगाएं और अपने बचनों तरह कहा है कि भैया एक एक पेड़ लगाओ, और एक पेड़ लगाओ ना, एक भैया तैयार करो
1: तो
0: आगे आवे वाले संकट तरह हम पंच सब कोई बच सके।
1: सही बात है। देखो जौन भी प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक जौन बा एक तरह से कह लो गुस्सा है प्रकृत हमारे पंचन के ऊपर,
0: बिल्कुल,
1: तो ओकर कारण हम ही पंचे है। हम देखा था कि हम पंच बिरवा जौन बा सब काटे जा रहे हैं और जंगल काट के खेत बना ले रहे हैं, अपने उपयोग में ले जा रहे हैं, शहर बसाए ले रहे हैं, या जौनो भी हम पंच बहुपयोग कर रहे हैं। तो भाई देखो प्रकृति के हम ही पंच पहुँचा रहे हैं। अब गांवन में अपने देखो कितना बड़ा बड़ा ताल तलवा तलैया कोई रहत रहा, लेकिन आज देखो देखा कि मिलता कि एक दो ताल जहाँ 10 बीघा का रहा वहाँ अब 1 बीघा हो गया है, और जहाँ 4 तलिया रही वहाँ अब 1-2 गड़े ही बची है या कुछ ना बचा है।
0: बिल्कुल भैया, तो देखो आवे वाले समय में ये सब चीजें हम पंचन के लिए फायदेमंद रहे। तो देखो जब हम पंचे वो करबे तो दूसरी बात यह है, देखो खुद रहो बच्चन हम ई वजह तेरे नाम लीन कि अगर हम करबे तो बच्चा भी देख के हैं वही चीजें सीखी है, और देखो लगाव जुड़ाव भी रखी है। और देखो जब बच्चन के कोई ऐसे नहीं समझे तो कोई कहानी माध्यम तेरे बाबा दादा नाना कि देखो वो ऐसे करत रहे, देखो वो यू दिखाओ उनका यूँ करे, तो देखो बच्चन का भी लगाव होते कहते हम तो जो है अपनी आगे वाली पीढ़ी जो भी वो भी तैयार रहे और सजग रहे हैं बारे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने पर्यावरण अपनी चीजों को समझें और जानकारी हो, यह बहुत जरूरी है।
1: भाई देखो पहले कह रहा कि हम पंच नहात रहे तो बगल में एक तालाब रहा, तो हुई कि तालाब में चले जाओ नहा ले या जौन बा गैया भैंसी के पानी हुई से ले जाओ। आज स्थिति वहाँ तालाब को देखा जाना है, इतना उनमें जलकुंभी पटी या एक तरह से कई लोग गंदा पड़ा है या सब में नाली में पानी डाल वो गंदा कहते हैं, तो कहा कि मतलब
0: बिल्कुल
1: कि हम
0: देखो
1: पंच होकर जिम्मेदार
0: सरकार
1: खुद
0: भी देखो सब चीजन की व्यवस्था करी, इतने इतने बढ़िया मॉडल तालाब बना रही, लेकिन सब कुछ कही तो रही है, लेकिन वही में जब तक हम पंचे अपन सहयोग ना करीबे तब तक कितने सफलता हुई भाई। कहे हम सब कोई अपनी जगह पर अपने घर में अपने गाँव पर 24 घंटा रही थी।
1: सही बात है। देखो सरकार हमार पंचन के लिए दिशा निर्देश दे सकत है, सहयोग हम पंच खुद ही करब तब होए। भाई देखो एक तरफ से अगर पता चला कि चकरोट गांव में बनत है और दूसरी तरफ से वो फरुहा उठाए खोद के अपने खेते में गिराई लेवा करती,
0: बिल्कुल
1: एक तरफ जौन बा तालाब खुदाई भाई दूसरे तरफ फरुहा उठाए वो कहे मेरे खेते में खोदा गया वो गिराई लेवा करती,
0: बिल्कुल
1: तो नुकसान तो हमारे पंचन का है ना। तो प्रकृति के साथ हम पंच कहूँ खेलवाड़ कर रहे हैं।
0: तो भैया देखो बात गर्मी के
1: हम पंचन के उठाओ
0: तो यही कारण तेरे अधिक गर्मी पड़ रही, बात गर्मी के चल रही रहे, तो भैया जहाँ कहूँ अपन निकले तो अपन देखो व्यवस्था कैके निकले, अपन अंगोछा लेके निकले, छाता टोपी आराम लेके चश्मा पहनी निकले, और भैया देखो खाए पिए का भी अपने साथ में निकले, तो पानी जरूर साथ में यहाँ रखें। कहे तेरे इतनी गर्मी में यहाँ पानी बार बार प्यास लागत है, तो पानी की कमी ना हो पावे और लू लाग जाए, अगर कोनो के यहाँ कोनो बीमार हो जाए आजार हो जाए तो भैया तुरंत देखो वही की व्यवस्था करें, और वही का कोनो कोई जरूरी नहीं अपने घर के आ रहे हो, कोई आस पास पड़ोसी हो कोनो खोए तो सबकी देखो मदद करें कि वही का दिक्कत हुई रही, वही का तुरंत अगर कोई बीमार हुईगा है तो वही का देखो तुरंत छाया में लटा दे, पट्टी रखें, नींबू
1: भाई
0: पानी।
1: देखो सावधानी अपने हाथे में है,
0: बिल्कुल
1: अगर सावधानी जब ना करी हो तो परेशानी तो हर तरीके से अपने पास है। अपने गाँव में देखो हर तरीके का जौन बा अभी देखा कि मिलता कि बदलाव देखा कि मिलता है,
0: बिल्कुल भैया
1: तो हम पंच अगर बदलाव देखत है तो अपने यहाँ तो जौन बा अपने गांव जौन बा आत्मनिर्भर कैसे होता है। भाई देखो गाँवों में आज सुख सुविधा का साधन हो गया है, हम पंच जौन छोट काम के लिए शहर भाग कर जाते रहे आज अपने चट्टी चौराहा पे व्यवस्था मिल जावा करता है। तो भाई देखो अपने ग्रामीण उद्यम से आत्मनिर्भर गांव, तो ऐसी एक वार्ता है वार्ताकार के हैं बेनी सुनाई दो तो एक
0: जी के बारे में भैया बताएं हैं, वार्ताकार हैं राज नारायण वर्मा भैया, तो भैया आओ ई वार्ता का सुना जाए।
2: ग्रामीण उद्यम से आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भरता क्या है ये जानते तो सभी हैं, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अपनी जरूरतों के लिए दूसरे के अधीन या उस पर आश्रित रहने वालों को सुख मिलना मुश्किल है क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी होना दूसरे पर निर्भर है। जब उस दूसरे को समय मिलेगा या नियत होगी तब वो अधीनस्थ के बारे में सोचेगा कुछ करेगा, ये स्थिति ना हो इसका विपरीत करना होगा, अर्थात स्वाधीन होना होगा कि हम अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। दूसरे शब्दों में आत्मनिर्भर हूँ। एक युवा के लिए तो आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, इसमें भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना सबसे जरूरी है क्योंकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर ही कोई अपनी जरूरतों के लिए किसी का मुंह नहीं देखता, वो माता पिता या किसी और पर बोझ नहीं बनता कि अपनी या परिवार की जरूरतों में कटौती करके उसकी जरूरत पूरी करें।

आत्मनिर्भर व्यक्ति न केवल अपनी जरूरतें पूरी करता है बल्कि वक्त जरूरत पर परिवार या दूसरों की मदद भी कर सकता है। ये तो हुई व्यक्ति के रूप में आत्मनिर्भरता की बात। अब गांव के स्तर पर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। गांव के स्तर पर आत्मनिर्भरता ये है कि वो अपनी रोजी रोटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निकट या दूर के शहर जाकर वहीं बस ना जाए, वहीं रहकर मेहनत मजदूरी या नौकरी करके परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा भेजता रहे, बल्कि ये है कि गांव में या एकदम निकट के बड़े केंद्र जाकर कमाई करे। ये निकटतम केंद्र गांव से लगा हुआ शहर भी हो सकता है, निकटतम तहसील या कस्बा या दूसरा जिला भी हो सकता है, इसी जगह जहाँ से रोज आया जाया जा सके। गांव की आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं कोई गांव छोड़कर बिल्कुल ही ना जाए। कृषि पर निर्भर लोग पूरे साल खेत में ही व्यस्त नहीं रहते, सब मिलाकर लगभग आधा साल खाली, दूसरे शब्दों में कहें बेरोजगार रहते हैं। जबकि रोज की जरूरतें तो पूरे साल हर रोज रहती हैं। फल सब्जी की बागवानी करने वालों की भी सारी उपज घर या गांव में ही नहीं खप जाती, उन्हें निकटवर्ती केंद्र जाकर बेचना होता है क्योंकि जरूरत की अन्य चीजों के लिए पैसा चाहिए होता। अब हम वस्तु विनिमय के युग में तो नहीं है कि जब बहुत सीमित जरूरतें थीं जिनके लिए हम कोई ना कोई वस्तु देकर, जैसे अनाज या कुछ देकर अपनी जरूरत की दूसरी वस्तु या सेवा ले लेते थे, बल्कि सबके लिए अब तो रुपया ही चाहिए होता है जो अपनी सरप्लस उपज बेचने से आता है। स्कूल की फीस, डॉक्टर या अस्पताल में शुल्क, खाद बीज, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया का शुल्क, नौकरी के लिए फॉर्म भरना, ये सब वस्तु नहीं पैसे देने से मिलता है। इसलिए गांव की आत्मनिर्भरता का ये संकुचित अर्थ ना लगाएं कि कोई गांव से बाहर जाए ही नहीं, बल्कि ये है कि शाम को या हद से हद दूसरे दिन वापस आ जाए, वहीं जाकर बसना ना पड़े। अब ये आत्मनिर्भरता आएगी कैसे? पहले जब सेवा क्षेत्र और तकनीक का इतना विकास और विस्तार नहीं हुआ था, तब गाँव में मिलने वाले कच्चे माल व श्रम आधारित उद्योग जिनमें भौतिक या पारंपरिक रूप से उत्पादन होता था उसे बेचा जाता था और पैसा मिलता था जिससे जरूरतें पूरी होती थीं। अब सेवा क्षेत्र और तकनीक के विस्तार से जो सेवा मिलती है तो वो भी उस क्षेत्र का उत्पादन ही है। सेवा देने वाला वो उत्पाद बेचता है और खरीदार पैसा लेकर वो उत्पाद यानी सेवा खरीदता है। व्यापक और वर्तमान अर्थ में सेवा क्षेत्र भी उद्योग ही है जो सेवा प्रदाता गांव में रहकर या आपके द्वार पर आकर उसे देता है। उद्यम केवल वो नहीं जिसमें कोई लघु या कुटीर उद्योग स्थापित किया जाए, बल्कि तकनीक आधारित सेवा क्षेत्र भी उद्यम के दायरे में आता है। जैसे कि बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र खोलना, बैंक सखी, बैंक मित्र या अन्य विभागों के सखी या मित्र आदि के रूप में कार्य करना, साइबर कैफे खोलकर विभिन्न प्रकार के काम करना, स्वयं सहायता समूहों का गठन, संचालन, ये सब करके बचत और बैंकिंग की आदत डलवाना, समूह का खाता बैंक में खुलवाकर संचालन के बारे में बताकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, सरकार की लखपति दीदी योजना के अंतर्गत स्वयं को और अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये सब उद्यम ही है। अब मोबाइल तो लगभग सभी के पास होता ही है। अब इस सेवा को चालू रखने के लिए रिचार्ज कराना होता है। अब सभी लोग तो अपने आप कर नहीं पाते, अगर कोई डाउनलोड भी कर दे तो भी उसके इस्तेमाल में सब लोग कुशल नहीं होते। ऐसे में गांव में ही स्थित साइबर कैफे या सेवा केंद्र जाकर रिचार्ज कराया, उसे शुल्क और उसका कमीशन दिया और हो गया रिचार्ज। आपको गाँव से बाहर भी नहीं जाना पड़ा और ना ही सेवा केंद्र वाले को गांव से बाहर जाकर दुकान खोलनी पड़ी, गांव में ही दोनों का काम हो गया। अब मीन मेखी भाई कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्भरता कैसे हुई? इसके लिए तो हम उस सेवा केंद्र वाले पर निर्भर हुए। इसमें आत्मनिर्भरता ये है कि ना हमें गांव के बाहर जाना पड़ा और ना सेवा केंद्र वाले को, दोनों का काम गाँव का गाँव में ही हो गया। आने जाने का समय और खर्चा बचा वो घाटे में। तो ये है गांव की उद्यम आधारित आत्मनिर्भरता। ये सेवा केंद्र उस लड़के का उद्यम है। ऐसे ही गांव में खाद बीज उर्वरक केंद्र होते हैं, या आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, परीक्षा का एडमिट कार्ड निकलवाना है, रिजल्ट आ चुका तो नेट से मार्कशीट

0: डाउनलोड करके प्रिंट लेना है, राशन कार्ड या आधार आदि बनवाना है, या उसमें सुधार करवाना है, रेल में रिजर्वेशन कराना है, फोटो खिंचानी है, खसरा खतौनी निकलवानी है, तमाम काम है जो अब इंटरनेट पर हो गए हैं, जिनके लिए नेट सुविधा युक्त कंप्यूटर, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, तमाम तामझाम चाहिए, और सबसे जरूरी इन्हें चलाने की काबिलियत। अगर दोनों ही आपके और आपके बच्चों के पास नहीं तो चिंता की बात नहीं, गांव में सेवा केंद्र है ना, और उसका संचालन कोई बाहरी आदमी नहीं कर रहा, आपके गांव के फलाने का बेटा, भाई, भतीजा, भांजा ही ये सब कर रहा है, तो ये उसके सेवा क्षेत्र का उद्यम है। इन सेवा केंद्रों के अलावा कुछ और भी सेवा क्षेत्र हैं जिन्हें गांव के युवक युवतियां कर रही हैं। ये है बैंकों से संबंध, बैंक सखी, बैंक मित्र। कुछ औपचारिकताएं करवाने, कुछ ट्रेनिंग देने के बाद बैंक उन्हें जरूरी मशीन और फॉर्म दे देता है। ये लोग घर घर जाकर वृद्ध या अशक्त या ऐसे लोग जो बैंक जाना ही नहीं चाहते या समझ नहीं पाते, उनको खाता खुलवाने, पैसा निकालने, जमा और अन्य कामों में मदद करती हैं, फॉर्म भरवा कर रसीद देती हैं, तो ये उनका उद्यम है। गांव वालों का काम घर बैठे विश्वस्त बैंक सखी या बैंक मित्र करते हैं। उनके आने जाने का खर्चा और समय बचता है और उन लोग को कमीशन आदि के रूप में आय होती है। तो अब गाँव के लोग या ये बेरोजगार आत्मनिर्भर हैं। सेवा लेने वाले को किसी की चिरौरी नहीं करनी और सेवा देने वालों को गांव में ही काम मिल जाता है। खाली बैंकिंग की सेवा नहीं, बिजली का बिल जमा करने, बिजली विभाग के काम और कराने, बिजली विभाग की वसूली भी कम खर्च में होती है और बेरोजगारों को काम भी मिलता है घर के घर में, और सेवा लेने वालों का सस्ते में और बिना समय खपाए काम मिला। अब ऐसा नहीं कि सारी आत्मनिर्भरता गाँव में सेवा क्षेत्र की बदौलत आई है, कुछ क्या, बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें गांव वालों का परंपरागत हुनर काम आता है। लखपति दीदी योजना ऐसी योजना है। मान लीजिए आपके ही गांव में कोई महिला है जिसके पास मिट्टी के बर्तन बनाने और उसे लोक कला शैली में रंगने सजाने का परंपरागत हुनर आता है, मगर पैसे और जानकारी के अभाव में वो बस इसे शौक पूरा करने तक संजोए है। उसे लखपति दीदी योजना के बारे में पता चला, किसी और जागरूक ने बताया या स्वयं सहायता समूह के सेवा केंद्र के लोग ने बताया, उन्होंने उसका काम देखा, नमूने के तौर पर कुछ बर्तन लिए और फॉर्म भरवा कर जमा किया और पैरवी की। कुछ ही दिन में जब संबंधित विभाग की मीटिंग होती है, उससे एक माह से छह माह तक में लोन सिक्शन हो जाता है। अब बड़े पैमाने पर काम करने के लिए पैसा है और सामान बेचने के लिए बाजार भी है, तो इससे वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि कई और महिलाओं को उद्यमी बनाकर आत्मनिर्भर बनाती है। सच है कि सब में झंझट भी हैं, देर भी लगती है, मगर सबर करें, धैर्य हो, जुनून हो, मेहनत हो, सब हो जाता है, जागरूक होने से होता है। सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन खुद नहीं प्रवेश करते, उसे भी जाग कर दौड़ कर प्रयास करना होता है। हुनर और सीखने की, कुछ करने की ललक और मदद से पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं, न केवल खुद कमा रही हैं बल्कि औरों को भी काम दे रही हैं। परंपरागत तरीकों से लेकर आधुनिक मशीनों तक से उत्पादन कर रही हैं। उनका माल ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक बिक रहा है। जो तकनीकी काम यानी ऑनलाइन का काम नहीं जानती, उसके लिए कुशल व पढ़े लिखे लोगों को वेतन पर रखती हैं। तकनीक निरक्षर होते हुए भी वे तकनीकी लोग उन्हें धोखा नहीं दे सकते। तो भाइयों, दीदियों, उद्यम और औपचारिकता से ना घबराएं, घर से निकलें तो गांव ही पर आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, पूरा गांव आत्मनिर्भर हो सकता है। अच्छा, सच कहिए, नेट संबंधी काम के लिए अब आप और आपके गांव के लोग आत्मनिर्भर हैं या नहीं, या अब भी आन गांव जाके, शहर जाके पैसा और समय लगा के, या गांव में ही आपका काम गांव के किसी लड़के के केंद्र से हो जाता है ना, यही है ग्रामीण उद्यम से आत्मनिर्भर गांव।
1: बहुत अच्छी बात है। देखो श्री राज नारायण भैया कितनी नीक जानकारी दे हैं कि अपने गांव में रह के अपन जोन बा दो पैसा कमा और
2: काम काज बढ़िया कर सकते हो, कहूँ बाहर जाए कि नई जरूरत है, हाँ आत्मनिर्भर बनो। तो भैया बहुत बढ़िया जानकारी दी हैं श्री राज नारायण वर्मा भैया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल धन्यवाद बहने। साथ साथ में आओ एक पूर्वी गीत सुना जाए मुन्नू लाल स्वर में।
2: बिल्कुल भैया।

0: अनुराधा बहनी।
1: हाँ कृष्णा भैया।
0: देखो अपने खेती पाती में काम यह समय जौन बा तो कुछ कम है, लेकिन आवे वाला समय में काम का बड़े तेजी है। हम पंचों पे तैयारी में लगे हैं।
1: बिल्कुल भैया, देखो काम करे पहले वही की तैयारी में यह समय लागत है। तो आजकल देखो अपन पंच भाई हमहू पंचे सोच रही है न, और तैयारी भी करें, खेतन के पास भी जा रहे हैं, खेतन जुताई भी हुई रही है। तो भैया सब पंचे तैयारी में देखो जोर शोर से रहे, तो कुछ लोग तो वहीं तरह लाग गए हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि बरसात की भी रास्ता देख रहे हैं। सब जगह जगह पर अपने अपने हिसाब से सबकी चर्चा होत रहती है।
0: बिल्कुल देखो चर्चा होता ही है,
1: हाँ
0: पर जौन बा बरखा का अगर जौन बा संभावना देखा थी तो अपने पंच भैया जल्दी से फरुहा लेके अपने खेते में जुट जावा करे थी। भाई देखो यह समय मेड़बंदी काम बड़े अच्छी तरीके से होता है।
1: हाँ
0: बाकी अपन यह समय खेत खाली रहा था, मऊ पंचे खाली है, ये मेड़बंदी कर ले। और गर्मी की जुताई तो अपने खेत में करे न है,
1: बिल्कुल
0: जौने में हमें पंचन के धान लगावे के है या धान रोपे के है, चाहे सीधी बुआई हो चाहे जौन बा नर्सरी बुआई हो,
1: हाँ
0: तो वह खेत का हम पंच मेड़बंदी कर ले। और अच्छी तरीके का ओकर भाई ओरी है, कान है, कोन है, सब गोड़ गाड़ के अपन दुरुस्त करे
1: बिल्कुल
0: रही।
1: जुताई करके अपन जिका
0: हाँ
1: बराबर करे के है, समतल करे के है, वही सब चीजन के अपन देखो तैयारी कर लें। और दूसरी बात यह तैयारी के साथ साथ यह अपने

0: मनमा जो भी चीज भाई सब जने अपने अपने खेतन में यहाँ बीज का भी चयन अपने अपने हिसाब तरह करते हैं, कहीं का बोवे है का नहीं वो करे के यहाँ है, तो वह में यहाँ देखो भाई सब भैया तैयारी में लाग हैं अपनी अपनी।
1: बिल्कुल देखो, बिना तैयारी कनो काम नहीं हो। तो भाई देखो, अगर घरे से कहूँ चला ही खोती हो तो भाई नहा ले, धोई लो, कपड़ा पहन लो,
0: हाँ
1: साफ सुथरा हो के तब चलो। तो ऐसे अपने खेत का साफ सुथरा कर लो, घास पात जोन है जैसे मेड़बंदी कर रहे हैं तो
0: हाँ
1: सारी चीज़ें इनकी व्यवस्था कर लो। अब देखो नर्सरी तो पंच भैयन का पड़ गई है, जोन पछेती है, अब वो अब डाल रहे हैं तो भाई पीछे हो जाए, लेकिन
0: बिल्कुल
1: अब डाल दें जल्दी से, अब एकदम से समय पूरा हो गया है एक तरह से। अब कुछ पंच भाई ऐसे हैं जो नर्सरी डालबे नहीं करते, वो धान का सीधी बुआई करा करती।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो भाई देखो सीधी बुआई
0: मैं
1: कर
0: सीधी
1: रहे हो,
0: बुवाई
1: वह
0: मतलब
1: अच्छी
0: सूखी
1: बात है।
0: बुवाई की, मतलब जैसे ऐसे मतलब अपने खेत के यहाँ जुताई कई के समतल कई के मशीन तेरे जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर तेरे के मशीन तेरे जो जीरो ड्रिल वाली वो मशीन होती है विकी, तो वही का लगाए क्यों और जो धान का छिड़काव ऐसे कर देते हैं वह है सूखी जुताई ना भैया।
1: हाँ, बुआई जुताई बुआई
0: हाँ
1: धान का देखो जौन बा सीधे आप बो सकते हो। बहुत
0: बिल्कुल
1: ऐसा जौन बा प्रजाति हैं कि जौन हम अपन सीधे बुआई कह दिए। कुछ खेत अपन ऐसा होते जहाँ पानी के पूरा पुख्ता व्यवस्था ना है, वहाँ
0: हाँ
1: पानी कम व्यवस्था है, तो भाई
0: बिल्कुल
1: सीधे बुआई आप कह सकते हो, वहाँ में भी उतना पैदावार आप पा सकते हो जैसे कि आप नर्सरी से लगा होता।
0: बिल्कुल भैया
1: तो हम पंचन के जौन बा आगे बढ़ के भाई देखो, जहाँ अपने खेत में पानी का कम व्यवस्था है तो ये सब
0: हाँ
1: व्यवस्था कर सको थे। अगर आप नर्सरी लगाव में पीछे हो गया हो
0: हाँ
1: तो आप सीधे बुआई कर सकते हो। तो अपने पंच भैया देखो, यू सब तो अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन हम पंच जौन बा अपने
0: हाँ
1: बैठकी में नगद एक जानकारी जरूर ले आओ करी थरूर
0: बिल्कुल
1: से।
0: भैया,
1: तो आज
0: तो
1: की जानकारी का है पंच भैया से बतकही की वाली, तो सुनाए दो।
0: भैया आज अपनी देखो बतकही में एक भेंट वार्ता है, धान की फसल में समन्वित खरपतवार प्रबंधन जी के वार्ताकार हैं डॉक्टर लाल पंकज कुमार सिंह, जिनसे बतकही कीन है वो डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो भैया आओ ये जानकारी का समझा जाए और सुना जाए।
1: बिल्कुल सुना जाए और ध्यान रखा जाए कि अपन धान का फसल होए तो हम पंच
0: हाँ
1: खरपतवार से कैसे निजात पाओ।
0: बिल्कुल भैया, का तैयारी करेगा तो उसका जरूर ध्यान में रखें।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में आप धान उत्पादन की योजना बनाए होंगे, नर्सरी की तैयारी में होंगे, कहीं कहीं धान की सीधी बुआई की तैयारी में होंगे, और जब नर्सरी तैयार हो जाएगी तो धान की रोपाई आप करेंगे। धान की फसल में खरपतवारों की समस्या होती है, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो उनका समन्वित प्रबंधन कैसे करें इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी से वैज्ञानिक फसल सुरक्षा डॉक्टर लाल पंकज कुमार सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि धान की फसल में समन्वित खरपतवार प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन ताकि उनकी फसल अच्छी रहे।
3: सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा नमस्कार। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो खरीफ की हमारी जो भी फसलें हम लगाते हैं उसमें धान की फसल सबसे महत्वपूर्ण होती है, और धान में खरपतवार का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हम प्रबंधन ना करें तो 15 से लेके 85-90% तक हमारी उपज कम हो सकती है,
2: केवल खरपतवार के चलते?
3: केवल खरपतवार के चलते। कभी वर्षा कम हुई, कभी पानी कम हो गया खेत में, तब भी खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमको बराबर निगरानी रखना है और समन्वित जो खरपतवार प्रबंधन है उसको अपनाना है।
2: बहुत सारे जो बिन बुलाए मेहमान उगते हैं
3: जी
2: उनका अलग अलग वर्गीकरण होगा?
3: हाँ, जो हमारे खरपतवार हैं सबसे पहले तो हम उनका वर्गीकरण कर लेते हैं। हम खेत में जब जाते हैं तो देखते हैं कुछ हमको संकरी पत्ती के खरपतवार दिखाई देते हैं, जो
2: जैसे
3: जैसे हमारा जो जंगली सांवा है, सेवई के खरपतवार होता है, और बूटी होती है, मकरा होते हैं, बिलुआ कंजा, इस तरह से तमाम जो धान की तरह से इसे संकरी पत्तियों के रहते हैं, और मोथा भी दिखता है। दो प्रकार के मोथा होते हैं, एक जैसे ऊपर छतरी बन जाती है और एक हमारा जो कंद वाला छोटा मोथा होता है, दोनों बहुत ही मतलब उसमें धान में नुकसान करते हैं। चौड़ी पत्ती वाले जो हमारे खरपतवार हैं उसमें हमारे मिर्च बूटी की पौधा इसे मिर्च की तरह से रहेगा, उसमें ऊपर फूल आते हैं, लेकिन वो जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हमारी फसल को दबाने लगते हैं और उत्पादन प्रभावित करते हैं। और हमारा जो फूल बूटी है, बनभोली है, या जैसे हमारे जलभराव वाले क्षेत्र हैं वहाँ और तमाम हमारे जलीय खरपतवार हो जाते हैं चौड़ी पत्ती के, तो दाद भरी है, साथिया है, कुशल है,
2: धारिला है।
3: हाँ धारिला है, ये सब इस तरह से हैं चौड़ी पत्ती के। हमारा कहने का मतलब जिनकी पत्तियां चौड़ी हो वो सभी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, गोल हैं, चौड़ी हैं।

0: तो वो चौड़ी पत्ती को उसमें आते हैं, तो इनको सबको देख के उसके हिसाब से हमको प्रबंधन करने की जरूरत रहती है।
1: जब धान में समन्वित प्रबंधन करना है ताकि लागत भी कम हो, खरपतवारों का प्रबंधन भी अच्छी तरीके से हो जाए और धान की पैदावार अच्छी मिले, तो इसके लिए समन्वित प्रबंधन के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं?
0: देखिए, प्रबंधन के लिए कई चीज़ों को हमको शुरू से ही ध्यान देना होता है। जिस खेत में हमको धान की रुपाई करनी है, जहाँ नर्सरी लगानी है, उसको हम समन्वित रूप से उस पर निगरानी करते हैं। जो हमारी कर्षण क्रियाएं हैं, यांत्रिक विधियां हैं, जैविक हैं, रासायनिक विधियां हैं, इनको सबको हम मिला के ये इस तरह से उपयोग करते हैं कि हमारे खेत में खरपतवार न रहें।
1: डॉक्टर साहब, जो कर्षण क्रियाएं हैं, कौन कौन सी कर्षण क्रियाएं?
0: देखिए, सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है कि खेत में जो हम बीज यूज कर रहे हैं वो स्वच्छ रहे, प्रमाणित रहे। स्वच्छ बीज का मतलब होता है, कभी कभी हम लोग घरेलू बीज ही यूज करते हैं तो उसमें खरपतवार के बीज रहते हैं, पुरानी फसल में हमारे खरपतवार हैं और धान के साथ उसमें छोटे छोटे दाने भी हैं, तो उनको एकदम अलग कर देना चाहिए कि जिससे वो बीज में खेत में ना जाए। दूसरा ध्यान देना है कि अच्छे से तैयारी करें, जैसे रोपाई करना है

0: ही ध्यान देना होता है, जिस खेत में हमको धान की रोपाई करनी है, जहाँ नर्सरी लगानी है, उसको हम समन्वित रूप से उस पर निगरानी करते हैं। जो हमारी कर्षण क्रियाएं हैं, यांत्रिक विधियां हैं, जैविक हैं, रासायनिक विधियां हैं, इनको सबको हम मिला के ये इस तरह से उपयोग करते हैं कि हमारे खेत में खरपतवार न रहें।
1: डॉक्टर साहब, जो कर्षण क्रियाएं हैं, कौन कौन सी कर्षण क्रियाएं?
0: देखिए, सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है कि खेत में जो हम बीज यूज कर रहे हैं वो स्वच्छ रहे, प्रमाणित रहे। स्वच्छ बीज का मतलब होता है, कभी कभी हम लोग घरेलू बीज ही यूज करते हैं तो उसमें खरपतवार के बीज रहते हैं, पुरानी फसल में हमारे खरपतवार हैं और धान के साथ उसमें छोटे छोटे दाने भी हैं, तो उनको एकदम अलग कर देना चाहिए कि जिससे वो बीज में खेत में ना जाएं। दूसरा ध्यान देना है कि अच्छी से तैयारी करें, जैसे रोपाई करना है तो एक आध बार पलेवा करके जुताई करके ऐसे न छोड़ें, उसको दो तीन बार लेव लगा के अगर जुताई करते हैं तो उसमें ढेर सारे खरपतवारों के बीज जो है सड़ जाते हैं।
1: और नर्सरी में भी
0: इसका विशेष ध्यान देते हैं कि नर्सरी जिस खेत में लगा रहे हैं वहाँ भी पलेवा करके लेव करके खेत तैयार कर लें, जिससे जो हमारे खरपतवार के बीज हैं वो अक्सर उसमें नष्ट हो जाए, अधिकांश मात्रा में। कम बचे रहेंगे तो कम नुकसान करेंगे। कुछ तकनीक और हम लोग अपनाते हैं, जैसे स्टील सीड बेड का हम लोग यूज करते हैं तकनीक। इसमें क्या करते हैं, जिस खेत में हमको नर्सरी लगाना है या धान की रोपाई करना है, उसमें हम लोग धान की जैसे सीधे जुताई कर दिए, जुताई करने के बाद हल्का सिंचाई कर दिए, जब उसमें खरपतवार जम जाते हैं अपने आप, तो जब कुछ बड़े होने लगते हैं फिर उनको हम जुताई करके खेत में मिला देते हैं। दो बार ऐसे अगर हम कर देते हैं तो ढेर सारी जो हमारे खरपतवार हैं उनका नियंत्रण हो जाता है और फसल में बहुत कम उनकी उपस्थिति दिखाई देती है। चौथा हमको रहता है कि फसल में जो हमारे पौधे हैं, जैसे हम रोपाई करते हैं तो जल्दी जल्दी में दूर दूर पौधे लगा देते हैं, गैप ज़्यादा हो जाएगा, खरपतवार ज़्यादा बनेंगे। अगर जो हमारा एक वर्ग मीटर में 50 का है तो अगर 40 से 50 के बीच में पौधे रहते हैं तो खरपतवार काफ़ी उसमें उनको उगने के लिए जगह कम मिलेगी और उनको प्रकाश कम मिलेगा तो उनकी बढ़वार भी कम रहेगी। और उसमें अगर पानी बना रहे रुपाई के बाद 3-4 दिन तक, एक सप्ताह तक 3 से 5 सेंटीमीटर अगर पानी बना रहता
1: धान के खेत में
0: तो हल्की सी काई बन जाती है, एक परत बन जाती है और खरपतवारों का जमाव कम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रही कर्षण क्रियाएं, अब यांत्रिक और भौतिक विधियों में?
0: यांत्रिक विधियों में पहले हम लोग करते थे, जब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो निराई हम लोग मानवीय श्रम का प्रयोग करके निराई करते थे खुरपी से, लेकिन अब यंत्रीकरण जैसे जैसे हमारा वो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोनो वीडर लाइन से जो बुआई करते हैं या SRI सिस्टम से जिसमें 10 दिन की नर्सरी लगाते हैं या लाइन से रोपाई किए हुए हैं, तो उसमें हम कोनो वीडर का प्रयोग करते हैं। कोनो वीडर यंत्र आता है, लाइन के बीच में इसको एक मानव चालित है,
1: हाँ।
0: चला देना है खाली, खेत में हमारे हैं खरपतवार वो उसी में मिल जाएंगे और वो खाद का काम करेंगे
1: जी,
0: तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और खेत में जो है इसको चलाने से वायु का संचार भी बढ़ता है, जड़ों का विकास अच्छा होता है।
1: क्या मल्चिंग कर सकते हैं?
0: जी, मल्चिंग करते हैं, जैसे हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं या ऐसे ही लाइन से रोपाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास फसल अवशेष है या कोई सड़ा भूसा है या कुछ भी है
1: या पुराना पुआल है, गन्ने की पत्तियां
0: हैं, तो उसको लाइन के बीच में अगर हम डाल देते हैं तो खरपतवार भी नहीं रुकता है और सड़के जो है उसमें पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, समन्वित प्रबंधन की बात चल रही है खरपतवारों के धान की फसल में, तो जैविक विधियां कौन कौन सी हैं जिनको अपना लें किसान भाई बहन?
0: जैविक विधियों में जैसे आप देखे होंगे कहीं जहां थोड़ा सा पानी ज्यादा रहता है निचले क्षेत्रों में, तो कुछ किसान भाई बतख जो है पालन किए रहते हैं धान के खेतों में कर देते हैं, तो जो बतख होती हैं खरपतवारों को ऊपरी हिस्से को खा लेती हैं, तो उससे काफ़ी हद तक वो उनकी बढ़वार रुक जाती है। कुछ सूक्ष्म जीव और हमारे जो जैव एजेंट हैं स्पेशल, जैसे हमारे कुछ खरपतवार हैं उनके लिए एजेंट हैं, उनको डाल दिया जाता है खेतों में, वो खा लेते हैं, तो ये थोड़ा सा सामान्य रूप से थोड़ा कम उसका प्रभाव है, लेकिन इसको अगर हम प्रयोग करते हैं तो बहुत ही मतलब उसमें जो है किफायती रहता है, पर्यावरण के लिए हितैषी रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, समन्वित खरपतवार प्रबंधन की बात चल रही है
0: जी,
1: तो रासायनिक विधि भी अपनाना महत्वपूर्ण है?
0: हाँ जी, रासायनिक तो अब हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि रासायनिक उस पर ज्यादा जोर हमारे किसान भाई देते हैं, रासायनिक दवाओं पे।
1: 3 स्थितियां हैं
0: जी,
1: एक तो जहाँ धान की नर्सरी डालने जा रहे हैं किसान भाई बहन
0: जी,
1: दूसरा जहाँ धान की सीधी बुआई कर रहे हैं, और तीसरा धान की रोपाई में कौन कौन सी सावधानियां हैं खरपतवारों के प्रबंधन में।
0: देखिए, धान की जहाँ हम नर्सरी जब डालने जाते हैं तो उसमें हम बीज अगर शुद्ध रखते हैं और खेत की तैयारी अच्छे से करके पलेवा करके लेव लगा के बुआई कर देते हैं जब, तो उसके बाद जो होता है अच्छा जमाव हो जाता है और खरपतवार उसमें कम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उसमें प्रबंधन सही नहीं है तो 15 दिन बाद जो है उसमें 10 से 15 दिन के बीच में खरपतवार ज़्यादा

0: दिखाई देने लगते हैं, मूथा दिखाई देने लगता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम बिस्पायरीबैग सोडियम, इसको जो है इसके 10% एससी आता है रसायन, इसके जो है 80 मिलीलीटर मात्रा को प्रति एकड़ की दर से।
1: अब जितना रकबा में नर्सरी है,
0: जी जी, तो जैसे एक हमारा जो एक एक ml दवा होती है, लगभग 1.5 लीटर पानी के लिए हम इसको मिलाते हैं
1: जी।
0: तो इसमें जितना मान लीजिए हमारे खेत में नर्सरी खेत में 5 लीटर दवा पड़ रही, तो 7-8 ml दवा मिला के उसमें हम
1: एक छिड़काव कर दें,
0: छिड़काव कर देते
1: 10 से 15 दिन पर।
0: जी 10 से 15 दिन पे, तो वो जो है जो मोथा है जो हमारे सेवई है ये सब खरपतवार बैठ जाते हैं और हमारी नर्सरी स्वस्थ हो।
1: और जहाँ धान की सीधी बुआई कर रहे हैं,
0: सीधी बुआई में हमको 2 बार दवा का ध्यान देना पड़ता है। पहले तो जब हम सीधी बुआई अगर सूखे खेतों में कर रहे हैं सीड ड्रिल की सहायता से, सुपर सीडर की सहायता से, तो उसमें हम पिंडी मिथिलीन रोपाई के बुआई करने के बाद 72 घंटे के अंदर पिंडी मिथिलीन एक लीटर 300 ml
1: यानी लगभग
0: सवा लीटर को 200 से 250 लीटर पानी में लगभग मिला के और उसको छिड़काव करते हैं फ्लैट फायर नाजिल से पीछे की तरफ छिड़काव करते हुए चले आते हैं, तो एक परत बन जाती है जिससे हमारे उसमें खरपतवार नहीं जमते और धान के बीज हमारे जम जाते हैं।
1: और फिर दोबारा
0: बाद में क्या होता है कि जब सिंचाई करते हैं या वर्षा हो जाती है तो फिर खरपतवार जमने लगते हैं 20-25 दिन 30 दिन बाद, तो उसमें एक छिड़काव जो है अब जैसे खरपतवार उसमें है चौड़ी पत्ती के हैं सकरी पत्ती के हैं उसके आधार पे अगर सकरी पत्ती खरपतवार है तो बिस्पायरीबैग सोडियम 80 से 100 ml प्रति एकड़ जो है 150 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देते हैं। अगर इसी में चौड़ी पत्ती है तो इसके लिए हम 2,4-D-इथाइल ईस्टर है या मेटसल्फ्यूरान मिथाइल है या इथाक्सी सल्फ्यूरान है, इन दवाओं में से किसी एक को मिला के छिड़काव कर सकते हैं। अगर खाली चौड़ी पत्ती है तो इसमें से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं।
1: और आजकल रेडी मिक्स भी दवा आ रही है,
0: हाँ कुछ कंपनियां जो है उसमें दोनों दवाओं को जैसे चौड़ी पत्ती के हमारे खरपतवार नाशी हैं, सकरी पत्ती के दोनों को मिला के हम लोग मिला के भी कंपाउंड बेचते हैं। तो उसको देख लेना है कि अगर आपको चौड़ी पत्ती की खरपतवार नाशी है उसमें मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20 WP रहता है, इथाक्सी सल्फ्यूरान 15 WP रहेगा और 2,4-D-इथाइल ईस्टर 38 EC रहेगा,
1: 1 लीटर प्रति एकड़।
0: हाँ इसको इसमें से कोई ये रहेगा चौड़ी पत्ती के लिए और बिस्पायरीबैग सोडियम 10% SC या फिनाक्सी प्राप जो है इथाइल रहता है ये जो है 9.3% EC रहता है। तो इसकी जो है 300 से 400 ml मात्रा जो है प्रति एकड़ यूज करते हैं। तो इन्हीं दवाओं में से कॉम्बिनेशन रहेगा किसी का तो उसको हम लोग लेके यूज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब जहाँ धान की रोपाई कर रहे हैं वहाँ खरपतवार नाशी कौन सा प्रयोग करें?
0: जैसे रोपाई करते हैं तो हम प्री इमरजेंस अगर हम यूज करना चाहें, प्री इमरजेंस में ब्यूटा क्लोर है 50 EC, पेटिला क्लोर है 50 EC और एनिलोफास है 30 EC, ये दवाएं हम यूज करते हैं। अगर ब्यूटा क्लोर यूज करते हैं तो 1 से 1.25 लीटर प्रति एकड़ इसको जो है आप पानी में जब खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी रहे तो उस समय डाल देते हैं खेत में और दो तीन दिन इसमें 3 से 4 दिन उसमें पानी रहना चाहिए, कम से कम
1: टिकना चाहिए
0: 4-5 सेंटीमीटर तब इनका अच्छा रिजल्ट आता है। पेटिला क्लोर यूज करते हैं 50 EC तो इसमें 500 से 600-700 ml तक इसको यूज कर सकते हैं
1: प्रति एकड़
0: और इसमें भी वही 4-4 सेंटीमीटर पानी रहा कम से कम। और ये जो हमारा एनिलोफास है 30 EC इसको भी हम लोग यूज करते हैं 500 ml प्रति एकड़ और इसी तरह से पानी इसमें रहे।
1: तो फिर क्या 20 से 25 दिन बाद दोबारा
0: 20 से 25 दिन बाद हमको फिर अगर इसमें खरपतवार नाशी अगर कुछ हमको खरपतवार दिखाई दिए अगर कभी जरूरत पड़ती है, अगर हम प्री इमरजेंस डाल देते हैं तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए पानी नहीं दे पाए हम कोई कमी आ गई उसमें हमारे प्रयोग करने में तो अगर खरपतवार दिखाई देते हैं तो बिस्पायरीबैग सोडियम 10% SC की है, इसकी जो है 80 से 100 ml मात्रा 150 लीटर पानी में घोल बनाकर पानी छिड़काव कर देते हैं तो जो सकरी पत्ती के खरपतवार हैं खत्म हो जाते हैं। अगर उसमें चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार हैं तो मेटसल्फ्यूरान जो मिथाइल है उसकी 8 ग्राम मात्रा को उसी में मिला लेते हैं और प्रति एकड़ छिड़काव कर देते हैं।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की फसल में समन्वित खरपतवार प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9450763917 9450763917।
1: डॉक्टर लाल पंकज कुमार सिंह साहब आज आप कार्यक्रम में आए और धान की फसल में

0: समन्वित खरपतवार प्रबंधन कैसे अपनाएं किसान भाई बहन, ताकि जो बिन बुलाए मेहमान धान के खेत में उगाते हैं उनका प्रबंधन हो, आपकी लागत कम हो, आपको अधिकतम उत्पादन मिले। इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कृष्ण भैया,
2: हाँ राधा बहन,
1: देखो कितनी बढ़िया जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मतलब जैसे धान की बुवाई करो इसमें अपने खर पतवार का कैसे रोकक है और कितने दिन के बाद में ही अपने खर पतवार का प्रबंधन करो, है ना। तो देखो इस सब चीजन के बारे में और कौन दवाई डालो, कितनी मात्रा में डालो, देखो सब बहुत बढ़िया बातें बताए
2: भाई। देखो विशेषज्ञ ही के लिए हम पंच बैठावा करी था, वो सब आवत थी तो जौन बा बड़ी नीक जानकारी देवा करे थे। अब देखो दो तरीका तीन तरीका बताए, पहले एक ही बुवाई के जौन बा 48 घंटा या 24 घंटा कितना बताया को करे अंदर जौन बा छिड़काव एक कई दर। दूसरा तरीका ये है कि भाई जौन बा अगर अपन फसल है तो पानी लगाए को में छिड़काव कर,
1: बिल्कुल 20 से 25 दिन के अंदर।
2: हाँ और ऐसे जौन बा तीसरा तरीका जो पारंपरिक विधि है या तो जौन बा मशीन के द्वारा अगर हम पंच कतार में अपन लगाए हैं तो ओके द्वारा जौन बा हम पंच जौन बा अपन जुताई कई के ओके जौन बा मिलाई दे मिट्टी में जौन अपन खाद हो जाए,
1: बिल्कुल साथे में ही के।
2: हाँ तो ये सब तरीका जौन बा सुने के अच्छा मिले था, उसे हम पंचन के जानकारी भी होता, तो वैसे खेती देखो करे लाके तो अपन फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ करता। तो बहनी देखो जौन बा यू जानकारी के लिए डॉक्टर लाल पंकज कुमार सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनसे बात कही करे के लिए डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के
1: दोनों जनिन का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद बहनी। आओ जौन बा आप अपन एक गाँव नहीं सुनाए दो तो फिर आगे मौसम का हाल चाल हो, करे बाद काली कार्यक्रम हो और कुछ और बात कही हो।
1: तो बिल्कुल भैया सुनाए रही है ना आज एक कहरवा गीत रंजुल जैन गौतम जी की आवाज में है, तो आओ भैया गौ नई का सुना जाए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अनुराधा।
2: हाँ भैया।
1: बस देखो मौसम का क्या हाल चाल है, हम पंच अपने बैठक में जरूर चर्चा करा खरीद है और का मौसम का हाल चाल अपने पूर्वानुमान में मिला है तो चर्चा कर लो करे बाद और बात कही हुई।
2: बिल्कुल भैया, बता रही हैं भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार आवे वाले अगले 7 दिनन का मौसम का पूर्वानुमान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी आज से लेके 12 तारीख तक का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 11 और 12 तारीख का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है। 7, 8 और 9 तारीख का मौसम शुष्क रही। 10, 11, 12 का गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है। और भैया मौसम संबंधी कोनो चेतावनी नहीं है।
1: बहुत निक बात तो है कि मौसम का हाल नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन यू देखो कि गरज चमक के साथ साथ बौछारें पड़े की संभावना जोन बा जिसे आप बताओ 10, 11, 12 तारीख है पूरे उत्तर प्रदेश में है तो भाई देखो गरज चमक अगर हो तो आप सुरक्षित स्थान पहुँचा, अपन खेत कियारी में अगर हो तो भाग का अपने घर दुआरे पहुंच जाए, चाहे कहूँ पेड़ और रुख और बिरवा के नीचे न खड़ा हो जाए।
2: बिल्कुल भैया, देखो मौसम की जानकारी है हमारे पहले दिन जाते कि देखो भैया जानकारी हुई गई है तो अपन कहूँ निकले कोने कामे काजे निकले तो भैया देखो अपने साधन सुविधा तेरे और चिंता कही के कि कहाँ पर हम अगर शुरुआत हुई गई है तो कहाँ हम सुरक्षित रह सके थे तो ये सब चीजन का ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, देखो का होता कि हमारे पंचन की खेती मौसम पे आधारित होता, अगर अपन खेती का काम भी कोनो करे है तो मौसम अगर जानकारी रहता हो तब ही निक रहता कि भाई देखो आज बरखा होए आज पानी बरसे या सूखा रहे।
2: बिल्कुल,
1: तो वही अनुसार अपन खेती पाती का भी काम करे चाहे। अब देखो का होता कि कहूँ जब मौसम होता ना तो का होता कि बिजली उजली कड़का था तो बड़ा डर लगा करता है।
2: बिल्कुल,
1: बिजली गिरा था भाई देखो अनहोनी घटना है तो यू सब के लिए बचाव रहो, कहूँ बिरवा के नीचे न खड़ा हो जाए नहीं तो जोन बा बिजली ज्यादा आकर्षित हो।
2: देखो भैया घटना दुर्घटना हो में कोनो मतलब देरी नहीं होती, कब कहाँ पर कितने समय आ जाए तो उसका कुछ हो पता नहीं होती है,
1: लेकिन सावधानी तो अपने
2: हाँ सावधानी अपने हाथ में है। यही हमारे देखो सब चीजें बताई जाती है कि सब लोग अपन सावधान रहो, अपन खुद सावधान रहो, अपने घर के लोगन के यहाँ बताओ वह सावधान रहे और साथ में जो अपन भैया देखो घर के अपन देखो बच्चन के साथ साथ जो जानवर होती है उनके अपन देखो चिंता हम ही सबका करे के यहाँ है।
1: बिल्कुल भाई देखो जैसे जो जानवर हैं तो सही बात है कि गर्मी उन्हों के लागा करत है और उनके भी अच्छी तरीके से साफ सुथरा पानी पियाओ साफ सुथरा खाना खियाओ, काहे कि जोन बा बासी खियाओ तो उनके नुकसान करता।
2: गर्मी का देखो समय चल रहा है छाया में बांधे उनका और बहुत देर तक की धूप में ना रखे जहाँ पर

0: भैया हवा आवागमन में क्या बना हुए वह बढ़िया जगह पर बने हो, समय समय पर देखो पानी भी पियावत रहे और उनका समय से नहलावत भी रहे।
1: हाँ ताज़ा पानी पियो भाई। हाँ। देखो जैसे हम पंच नलका चला के ताज़ा पिए थे तो उसे उन्हों पियाए तो कहे कि जौन बा गर्म पानी नुकसान करत है।
0: हाँ।
1: अब वही देखो काल हुए रविवार तो रविवार के दिन हम पंच अप लोग भाषा कवि में एक विशिष्ट कार्यक्रम ले आवा करी थे, चाहे वो कवि गोष्ठी हो या चाहे कहानी हो।
0: हाँ।
1: तो काल है लोक भाषा कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि हैं इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश, रामकरण मिश्र सैलानी और रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर। तो यू रहें जौन बा कल के आवे वाली जौन बा मतलब रविवार के दिन
0: हाँ
1: लोक भाषा कवि गोष्ठी के कविगण। अब बहनी खेती किसानी में का है
0: भैया, खेती किसानी में है सफलता की कहानी। डेयरी व्यवसाय जी के वार्ताकार हैं ओम बाबू वर्मा, भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो भैया ये रहा खेती किसानी की कार्यक्रम
1: तो,
0: की जानकारी।
1: हाँ तो कल ओम बाबू वर्मा से सुना जाए कि भाई देखो डेयरी व्यवसाय कहके वो कितना पैसा कमाने ना, वो कैसे कमाने और
0: बिल्कुल
1: का
0: भैया, देखो
1: उपाय
0: डेयरी
1: करें कि
0: व्यवसाय
1: जौन
0: थे
1: पर पैसा ज्यादा उनके
0: बिल्कुल,
1: मिले।
0: और देखो बहुत बढ़िया, देखो सब लोग अपने इतने काम काज भी कर रहे हैं तो भैया सब फायदा भी हुई रहा है।
1: बिल्कुल देखो सफलता का कहानी ही के लिए रविवार के किया जाए तो बहनी तो देखो घड़ी इशारा करत है पंच भाइयों से विदा लेके जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
3: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां

0: भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
1: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
2: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। मैं हूं प्रवीण। इस अंक में हम जानेंगे विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह हुए गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे डिकोडिंग साइंस, आखिर विज्ञान के पीछे का विज्ञान क्या है विषय पर वार्ता। लेकिन सबसे पहले विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह क्या कुछ हुआ, जानते हैं शिवा राकेश से।
1: धन्यवाद प्रवीण। आइए सुनते हैं विज्ञान समाचार। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अपने मेवन अंतरिक्ष यान के मिशन के समाप्त होने की घोषणा की है। लगभग 6 महीने तक कोई संपर्क नहीं होने के बाद नासा ने पुष्टि की कि 1 दशक से अधिक समय तक चले इस मिशन का अंत हो गया है। वर्ष 2013 में प्रक्षेपित मेवन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना था। पिछले वर्ष दिसंबर में मंगल ग्रह के पीछे जाने के बाद यान से संपर्क टूट गया था। जांच में पता चला कि यान तेजी से घूमने लगा, जिससे उसकी कक्षा प्रभावित हुई और बैटरियां खत्म हो गई। नासा की समीक्षा समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि अंतरिक्ष यान को दोबारा सक्रिय नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार ये अगले 50

0: से 100 वर्षों तक मंगल की कक्षा में बना रहेगा, जिसके बाद ग्रह की सतह से टकरा जाएगा। देश में जल संसाधन के प्रबंधन में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जल संसाधन प्रबंधन में उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में आयोजित जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत जल संसाधन विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जलाशय निगरानी, नदी प्रवाह विश्लेषण, उपग्रह आधारित जल गुणवत्ता आकलन और जलाशयों में प्लास्टिक कचरे के बढ़ने पर अध्ययन सहित 24 अनुसंधान क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। जापान में कार्यरत भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर रोनाल्डो लाशराम और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं की एक नई और विशाल संरचना की खोज की है। उन्होंने इस संरचना का नाम मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर रखा है। उनका उद्देश्य पूर्वोत्तर के इस राज्य की पहचान को दुनिया में हमेशा के लिए अमर करना है। डॉक्टर रोनाल्डो जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ता के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण संरचना का अध्ययन हवाई में स्थित सुबारू टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किया गया। फिनलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बनने की तैयारी कर रहा है जहां इस्तेमाल किए जा चुके परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर वेस्ट को स्थायी रूप से भूमिगत सुरक्षित रखा जाएगा। ये परमाणु कचरे के प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस उद्देश्य के लिए फिनलैंड के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र यूरायोकी में जमीन के लगभग 433 मीटर नीचे ओनकालो नामक विशेष भंडारण केंद्र बनाया गया है। ये केंद्र परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले अत्यधिक रेडियोधर्मी कचरे को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया है। केंद्र 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में परमाणु कचरा स्वीकार करना शुरू कर सकता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कम से कम 1,00,000 वर्षों तक परमाणु कचरे को सुरक्षित रखने में सक्षम रहे।
1: और अब बात विज्ञान के पीछे का विज्ञान विषय के बारे में। जब हम साइंस यानी विज्ञान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर, रॉकेट या रोबोट की तस्वीरें घूमने लगती हैं। हम अक्सर विज्ञान के चमत्कारों और आविष्कारों की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन आविष्कारों को जन्म देने वाली सोच कैसी होती है? आखिर उस विज्ञान के पीछे का विज्ञान क्या है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं वार्ता। वार्ताकार हैं सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर अगम दयाल श्रीवास्तव जी।
2: विज्ञान के पीछे का विज्ञान, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। वैसे तो विज्ञान का अध्ययन वास्तविक रूप में किए जाने वाले प्रयोग, परिणाम और निष्कर्ष पर आधारित रहता है, किंतु भारत में अधिकांश शिक्षक इतिहास भूगोल की भांति विज्ञान को पढ़ाने में भी सिर्फ जानकारियां दे देते हैं। उन तथ्यों की जानकारियां किन प्रयोगों के परिणामों से प्राप्त हुई थी उनके बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस में ये प्रयोग शामिल नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ वैज्ञानिक जानकारियों को पाने में कौन कौन से प्रयोग किए गए थे इसके बारे में बताऊंगा। आज आपके पूरे जीवन को कंप्यूटर, अंतरताना अर्थात इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शुरुआत से ही प्रभावित कर रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कंप्यूटर में डाटा पंचिंग के विचार का सूत्रपात एक सामान्य बुद्धि और थोड़े से पढ़े लिखे बस कंडक्टर ने किया था? अलग अलग बस स्टॉप से चलने वाले और अलग अलग लक्ष्य पर उतरने वाले यात्रियों के लिए उसे 10-20 प्रकार के टिकट अलग अलग रखने पड़ते थे और उसे बड़ी असुविधा होती थी। एक दिन उसके मन में एक विचार आया और उसने सिर्फ एक प्रकार का बस टिकट लिया। अब जब किसी बस स्टॉप से कोई सवारी चढ़ती थी और वह टिकट मांगती थी तो वह उस बस स्टॉप के नाम के तुरंत सामने एक छेद कर देता था। उसे आगे जहां उतरना रहता था उस स्टॉप के नाम के आगे भी एक दूसरा छेद कर देता था। इससे उसका काम आसान हो गया। अब एक ही टिकट से उसका काम चल जा रहा था। इसी प्रकार से डाक घर से जुड़े हुए तार घर की मोर्स कुंजी मात्र 2 प्रकार के संदेश भेज पाती थी, डैश और डॉट। अतः किसी भी संदेश के ABCD अक्षरों को इसी डैश और डॉट के क्रम में रूपांतरित करके कोड कर दिया जाता था और भेज दिया जाता था। अगले शहर में संदेश पहुंचने के बाद उसी डैश और डॉट रूपी संदेश को डिकोड करके ABCD की भाषा में बदलकर संदेश पाने वाले को भेज दिया जाता था। प्रारंभिक कंप्यूटर भी सिर्फ 2 अंकों को जानता था, 0 और 1। अतः किसी भी संदेश को रूपांतरित करके इसी 0 और 1 की भाषा में बदलकर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया जाता है। जब हम उस संदेश को वापस मांगते हैं तो वह 0 और 1 के रूप में संग्रहित संदेश को डिकोड करके ABCD के रूप में बदल देता है

जिसे हम पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक मेडिकल कॉलेज में पहली बार एक लाश का अंग विच्छेदन करते समय गैलेन नामक डॉक्टर को ब्रेन के नीचे और श्वास नली के ऊपर मटर के दाने के बराबर एक संरचना दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद जुकाम होने पर नाक बहने की क्रिया को यह ग्रंथि नियंत्रित करती होगी। ग्रीक भाषा में नाक से बहने वाले पानी को पिट्यूटा कहते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के आकार की इस ग्रंथि को पिट्यूटरी नाम दिया। बाद में पता चला कि यह मटर के दाने के आकार की संरचना एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो शरीर के बहुत सी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। नाक बहने की क्रिया के नियंत्रण में इसकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन इसका नाम पिट्यूटरी अभी भी प्रचलित है। बाद में इसका एक और नाम हाइपोफाइसिस रखा गया। डी आमर की फिजियोलॉजी अर्थात कारिकी की किताब में एक बड़ी मजेदार जानकारी दी गई है। एक शराब बेचने वाले के पब में देर रात तक ग्राहक शराब पीते रहते थे। सुबह 6 बजे उठकर उसका 12 साल का लड़का खाली बोतलों को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल देता था। प्रायः शराब की बोतलों की तली में आधा या एक चम्मच शराब बची रह जाती थी। जैसा कि स्वाभाविक है, वह बच्चा बोतल में बची हुई शराब को चखना शुरू कर दिया और उसे इसकी आदत पड़ गई। एक दिन उनके शौचालय की सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी एक खाली बोतल में तेजाब लाया। सफाई के बाद उस बोतल में कुछ तेजाब बचा रह गया। बच्चे को इस बात की जानकारी नहीं थी। अगले दिन सुबह जब वह बच्चा सफाई करने आया तो उसने उस बोतल में रखे हुए तेजाब को गलती से शराब समझकर अपने मुंह में उड़ेल लिया। उस बच्चे का मुंह और भोजन नली का इसोफेगस वाला हिस्सा बुरी तरह से जल गया। अब वह सारी जिंदगी मुंह से खाना नहीं खा सकता था। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उसके आमाशय अर्थात स्टमक को पेट की दीवार से जोड़ दिया और वहीं एक छोटा सा मुंह का छेद बना दिया। अब उस बच्चे को पेट के उसी छेद के मुंह में खाना डाल दिया जाता था। एक दिन उस बच्चे के पिता के एक दोस्त जो एक सर्कस कंपनी के मालिक थे उनके घर आए तो उस बच्चे को अपने साथ सर्कस में ले गए। वहाँ एक धागे से बंधी हुई जिंदा मछली को बच्चे के पेट में डालकर छोटे छोटे बच्चों को बाइस्कोप की भांति दिखाया जाता था। इस तरह के कुछ प्रयोगों के द्वारा ही भोजन के पाचन का विज्ञान समझ में आया। सी डोनेल्ड टर्नर की अंतःस्रावी विज्ञान की पुस्तक में भी ऐसी ही एक घटना का जिक्र है। सन 1889 में रूस के दो वैज्ञानिकों वॉन मेरिंग और मिनकोवस्की का एक पालतू कुत्ता था। उसे कुछ दिनों से पेट दर्द और दस्त आ रहा था और किसी दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा था। अतः उन्होंने उस कुत्ते को बेहोश करके उसका ऑपरेशन करना शुरू किया तो देखा कि उसके पेट को छोटी आंत से जोड़ने वाली यू के आकार की नली ड्यूडिनम में घाव अल्सर हो गया था। उन्होंने उस घाव वाले हिस्से को काटकर अलग कर दिया और पेट को छोटी आंत से जोड़कर सिल दिया। ऑपरेशन तो सफल हो गया और कुत्ते की जान बच गई। वे एक सप्ताह तक कुत्ते के व्यवहार पर नजर रखे रहे। वह कुत्ता जहाँ कोने में खड़ा होकर के मूत्र त्याग करता था वहाँ कुछ सफेद पदार्थ पड़ा हुआ दिखा और वहाँ चींटियों की एक कतार जा रही थी। जांच करने पर पता चला कि वह सफेद पदार्थ चीनी था। वॉन मेरिंग और मिनकोव्स्की को समझ में आ गया कि उन्होंने जिस ड्यूओडिनम को काटकर बाहर निकाल दिया था तो उसके बीच में स्थित पैंक्रियाज भी बाहर निकल गया था। इसी पैंक्रियाज में कोई तत्व ऐसा था जो खून में चीनी की मात्रा का नियंत्रण करता था और उसी की कमी से कुत्ते के पेशाब में चीनी जाने लगा था। इसी प्रकार से सन 1849 में A.H. बर्थॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने मुर्गी के नर चूजे कॉकरेल के साथ कुछ प्रयोग किए। इस प्रयोग से पहले तक यह समझा जाता था कि टेस्टिस और ओवरी अर्थात वृषण और डिम्बाशय का काम सिर्फ स्पर्म और ओवम उत्पन्न करना है। A.H. बर्थॉल्ड ने ऑपरेशन करके नर चूजे की टेस्टिस को काटकर बाहर निकाल दिया। करीब 3 सप्ताह बाद उन्होंने देखा कि नर चूजे के सिर के ऊपर स्थित कलंगी गायब हो गई। इस प्रयोग से यह नई जानकारी मिली कि टेस्टिस का काम सिर्फ स्पर्म बनाना ही नहीं है, शरीर की कुछ और गुणों का नियंत्रण भी टेस्टिस के द्वारा किया जाता है, जैसे नर चूजे के शरीर में सिर के ऊपर की कलंगी का विकास। अब 6वीं घटना की कहानी सुनिए। सन 1793 में इटली के पैविया शहर में स्थित एक चर्च की छत के गुंबद में बहुत से चमगादड़ रहते थे जो अपने मल मूत्र के विसर्जन से चर्च के फर्श और कुर्सी मेज को गंदा कर दिया करते थे। उनसे छुटकारा पाने के लिए एक जंतु वैज्ञानिक को बुलाया गया जिनका नाम था स्पैलेन जेनी। उन्होंने उन सभी चमगादड़ों को एक जाल में फंसाकर 5 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ दिया। अगले दिन वे सभी चमगादड़ चर्च के छत की गुंबद में वापस आ गए। अगले प्रयोग में स्पैलेन जेनी ने उन सभी चमगादड़ों की आंख

0: काली पट्टी बांधकर पुनः उन्हें उसी जंगल में छोड़ दिया। अगले दिन वे चमगादड़ चर्च के गुंबद में फिर दोबारा वापस आ गए। तीसरी बार स्पेलेंजेनी ने उन चमगादड़ों की आंख पर काली पट्टी बांधने के साथ कानों में भी रुई ठूंस दी और उन्हें एक बार फिर जंगल में छोड़ दिया। इस बार वे चमगादड़ चर्च में लौट नहीं पाए। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि चमगादड़ उड़ते समय कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जो रास्ते की रुकावटों से टकराकर लौट आती हैं। चमगादड़ इन लौटने वाली आवाजों की प्रतिध्वनि को सुनकर रास्ते का पता लगा लेते हैं। इस क्रिया को इकोलोकेशन अर्थात प्रतिध्वनि की आवाज द्वारा मार्ग निर्धारण कहते हैं। इसी प्रकार से सन 1902 में बेलिस और स्टार्लिंग नामक दो वैज्ञानिकों ने कुत्ते में भोजन के पाचन के बारे में कुछ बड़े ही मजेदार प्रयोग किए। आमतौर पर पहले यह समझा जाता था कि जब भोजन आमाशय अर्थात स्टमक में पहुंचता है तभी पाचक रस गैस्ट्रिक जूस उत्पन्न होता है। उन्होंने ऑपरेशन करके एक कुत्ते की भोजन नली में इसोफेगस और स्टमक के बीच के जोड़ को काट दिया और इसोफेगस के दूसरे छोर को गर्दन के पास जोड़कर बाहर खोल दिया। आमाशय में एक पतली सी कैथेटर नलिका जोड़कर उसे बाहर स्थित एक परख नली से जोड़ दिया। बेलिस और स्टार्लिंग ने कुत्ते को खाना खिलाया और वह खाना गर्दन के छेद से होकर बाहर आ गया और आमाशय में नहीं पहुंचा। आमाशय में फिर भी आमाशय रस उत्पन्न हुआ जो कैथेटर नलिका से होकर बाहर आ गया और उसका रासायनिक परीक्षण संभव हो सका। अगले प्रयोग में जब उन्होंने आमाशय की दीवार तक पहुंचने वाली खून की नलियों के संबंध को काट दिया, दोबारा एक बार कुत्ते को खाना खिलाया गया जो गर्दन के छेद से बाहर आ गया, इस बार आमाशय में गैस्ट्रिक जूस नहीं उत्पन्न हुआ। तो इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि हमारे शरीर में दिमाग की नसों के द्वारा जानकारियों के प्रवाह के साथ साथ खून के बहाव के साथ भी कुछ जानकारियों का प्रवाह होता है और इस प्रकार अंतःस्रावी विज्ञान अर्थात एंडोक्राइनोलॉजी के अध्ययन की शुरुआत हो गई। इसी प्रकार से इसी वर्ष बेंजीन की संरचना की खोज की दूसरी शताब्दी मनाई गई। बेंजीन के अणु में कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं, लेकिन कार्बन के परमाणु की संयोजकता अर्थात वैलेंसी 4 होती है। केकुले नामक वैज्ञानिक कुछ समय तक इस बात की व्याख्या न कर पाने से बहुत परेशान थे। एक दिन रात में सोते समय केकुले ने एक सपना देखा जिसमें बिल में से एक सांप निकला और गोलाई में घूमने लगा। इसके बाद एक एक करके उसके पीछे 5 और सांप निकले और आगे पीछे जुड़कर गोलाई में घूमने लगे। इसी सपने से केकुले के दिमाग में बेंजीन की संरचना की विचारधारा की व्याख्या समझ में आ गई और उन्होंने विज्ञान जगत को अपने इस आविष्कार से अवगत करा दिया। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, विज्ञान जगत के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रवीण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम अवध बस थोड़ी देर में।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
4: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये

0: कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम, इसमें आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत।

आशिकी फिल्म के लिए ये आवाज़ थी कुमार सानू की, और अब आइए सुनते हैं दीवाना फिल्म में एक बार फिर कुमार सानू को।

0: दीवाना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम शामियावद अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अविनाश का नमस्कार। आज के अंक में हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर विशेष भेंटवार्ता। विषय है साहित्य, समाज और आकाशवाणी। इस विषय पर श्री नवीन जोशी से भेंट कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
1: कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और इस दर्पण में विविध स्वरूप दिखाई देते हैं। उन स्वरूपों में कभी हम कविता देखते हैं, कभी कहानी देखते हैं, कभी समसामयिक लेख देखते हैं। बहुत सारी विधाएं उसमें समाहित हो जाती हैं जो हमारे समाज में साहित्यिक गतिविधियों को जोड़ते हुए हमें समृद्ध करने की और साथ ही साथ समाज को भी समृद्ध करने का एक प्रयत्न आगे बढ़ता चला जाता है। जहां साहित्य नहीं है वहां कहते हैं कि जीवन अधूरा होता है। आप कभी किसी जमाने में आकाशवाणी से या फिर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं और सुनते रहे हैं उसे, लेकिन समय बदलता चला गया है। साहित्य कितना बदला है या नहीं बदला है एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से साहित्य जो आप तक पहुंचता था वह कितना बदला है, किस रूप में है, इसको समझने बूझने के लिए हमारे बीच आज हैं नवीन जोशी साहब हैं, जो कि वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। जोशी साहब, हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। जब कभी भी हम बात करते हैं साहित्य की तो पुरानी बातें ही याद आती हैं
2: जी।
1: नए जमाने में साहित्य लगता है खो सा गया है, इसको समझेंगे, लेकिन पहले हम समझना चाह रहे हैं वो जमाना जो था साहित्य का, जब आप अखबारों में धुरंधर रूप से लिखते थे, तब की बात कर रहा हूँ।
2: असल में साहित्य, आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज का दर्पण है, वो पहले भी था और आज भी है। जैसा समाज है वैसा साहित्य में हम उसे देख सकते हैं। जहाँ तक आकाशवाणी को केंद्र में रखकर अगर हम बात करें तो आकाशवाणी की, उससे पहले कहिए कि ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जो शुरुआत हुई थी, उसका आधार ही सांस्कृतिक था पूरी तरह। अगर 1921 में एक निजी तौर पर बम्बई में प्रायोगिक प्रसारण शुरू हुआ था कुछ देर के लिए, जो हिंदुस्तान में आकाशवाणी जो बाद में बना उसकी शुरुआत भी, वो एक संगीत का और साहित्य का कार्यक्रम था। तो आप समझिए कि जो जड़ है आकाशवाणी की, जो शुरुआत है, उसकी नींव में ही साहित्य की और संस्कृति की संपदा पड़ी हुई है और वो वहाँ से बीज रूप में अंकुरित हुई, पल्लवित हुई, विकसित हुई और अपने समय में, आज तो हम ठीक ठीक नहीं कह सकते क्योंकि अब प्रशासनिक और सामाजिक स्वरूप बदल गया है, लेकिन आज़ादी के तत्काल बाद और अगले एक दो तीन दशकों तक जितने भी हमारे साहित्यिक धुरंधर थे, हिंदी के ही नहीं विभिन्न भारतीय भाषाओं

0: चाहे वो मलयालम में हो, केरल में हो, बंगला में हो, हिंदी में हो, वो सब किसी न किसी रूप में आकाशवाणी से जुड़े हुए लोग थे। और कोई ऐसा दिन, मैं आकाशवाणी लखनऊ की अगर बात करूं, मैं तो जब 1970 में 9वीं क्लास में पढ़ता था तब से यहाँ आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ इलाचंद जोशी जी को देखता था और ऐसा कोई साहित्यकार नहीं था। शिवानी जी यहाँ पर बाहर जाड़े में कुर्सी डाल के धूप में बैठी रहती थी अपनी रिकॉर्डिंग के बाद, और बहुत से लोग इस शहर के जितने थे, नागर जी, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, बहुत सारे लोग,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बात की पीढ़ी तो हमने साथ में देखी। वो आकाशवाणी आने का मतलब होता था आप किसी भी बड़े साहित्यकार से, संगीतकार से, किसी सांस्कृतिक पुरुष से आपकी मुलाकात होगी ही होगी। और ये सिर्फ लखनऊ के बारे में सच नहीं था, ये दिल्ली या आकाशवाणी के जितने भी केंद्र थे उनके बारे में ये सच
1: यही
0: था।
1: चलता था,
0: खूब लंबी लंबी वार्ताएं होती थी, इंटरव्यू, आप सोचिए कि दो दो तीन तीन घंटे के इंटरव्यू कई चरणों में होते थे।
1: अच्छा, ये जो इंटरव्यू होते थे, क्या ये साहित्य से जुड़े होते थे या फिर व्यक्ति विशेष की कृतियों से जुड़े हुए होते थे?
0: जी, दोनों तरह की बात होती थी। जैसे मैं जिस प्रसंग का उल्लेख करना चाहता हूँ वो ये है कि जी अमृतलाल नागर जी लखनऊ की हमारी साहित्यिक त्रिकोण एक पुरोधा थे, तो उनसे ठाकुर प्रसाद सिंह दूसरे साहित्यकार थे जो संयोग से सूचना विभाग में निदेशक भी थे उन दिनों
1: जी।
0: तो ठाकुर प्रसाद जी और अमृतलाल नागर की समझिए दो तीन या चार चरणों में घंटे घंटे भर की बात, तो तीन चार घंटे की वो बातचीत, जिसमें उनका जन्म, मतलब वो गुजरात के थे मूलतः, तो गुजराती से लेकर के हिंदी तक की यात्रा, बम्बई तक की यात्रा, खंजन नयन उनका उपन्यास उस वक्त आया था और जो एक तरह से सूरदास की जीवनी पर केंद्रित है, तो खंजन नयन पर ही उनके आधे घंटे तक बातचीत होती रही कि कैसे लिखा
1: जी।
0: या उनका बूंद और समुद्र लखनऊ के इतिहास पर, उन्हें कैसे लखनऊ के टीलों की खुदाई करवाई, देखा लिखा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि ये जो बातचीत होती थी आकाशवाणी से कई दिन में प्रसारित होती थी और फिर उसका संकलन प्रकाशित होता था आकाशवाणी के। उन दिनों शायद मेरे ख्याल से जगदीश चंद माथुर जी महानिदेशक थे
1: जी, बिल्कुल,
0: उनके समय में बहुत काम हुआ इस तरह का सांस्कृतिक, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि आकाशवाणी के जो साहित्यिक प्रसारण होते हैं उनका जो उसमें से भी जो बहुत मूल्यवान सामग्री है वो रिकॉर्डिंग प्रसारित होगी, फिर उसको पुस्तकाकार छापा जाएगा। तो विभिन्न भारतीय भाषाओं में 9 पुस्तकों की योजना बनी जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट के उसमें छपी। हिंदी में वो आकाशवाणी नाम था, सारंग नाम था, आवाज नाम से उर्दू में था और आकाशी करके असमिया में था, बांग्ला में उसका नाम बेतार जगत था, अंग्रेजी में इंडियन लिसनर था। तो ये भाषा में ये छपते थे और ये बहुत अच्छी किताबें हैं, आज भी वो मूल्यवान सामग्री है जिसमें उपेन्द्रनाथ अस्क से लेकर के विभूति भूषण गंगोपाध्याय तक विभिन्न भारतीय भाषाओं के, एम टेकी वासुदेव नायर मलयालम के ज्ञानपीठ विजेता, ऐसे ऐसे लोगों की बातचीत प्रसारित हुई, फिर पुस्तकाकार छपी
1: जी।
0: और वो मुझे लगता है आकाशवाणी के पुस्तकालयों में वो जरूर संग्रह होंगे।
1: बिल्कुल संग्रह होंगी और धरोहर के लिए, हमारे आपके लिए भी है, सभी के लिए है। लेकिन इस धरोहर, जैसा कि आपने कहा ना कि आते थे, बैठते थे, आधा आधा घंटा के बाद धूप भी सेंकते थे, वो सब था, तो ये एक साहित्य सृजन का माहौल होता है या कहें कि वातावरण होता है। उस वातावरण में जब आप अपने को रखते हैं तब सृजनशीलता बढ़ती है या सृजनात्मकता जो है वह सामने आती है निखर करके। आज क्या इसी की कमी है कि वो दिन नहीं देखने को मिल रहे हैं या वो कृतियां नहीं देखने को मिल रही?
0: देखिए, समय बदला है ना, समय के साथ बहुत सारी सामाजिक संरचना बदली, हमारी राजनीतिक संरचना बदली, आर्थिक संरचना बदल गई, रुचियां बदल गई। जैसे मैं अपने बचपन में पढ़ता था, पत्रिकाएं पढ़ता था, मेरे पास कोई डायवर्जन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई टीवी नहीं था, पुस्तकें थी, मैं पढ़ता था और लिखने वालों के प्रति आकर्षित होता था तो उनकी ओर जाता था। आज की जो नई पीढ़ी है उसके पास इतने ज़्यादा डायवर्जन है, उसको 24 घंटे हाथ में मोबाइल चाहिए, उसको रील बनानी है, उसको सेल्फी खींच कर लगानी है, उसको टीवी देखना है, उसको सिनेमा देखना है, उसको मॉल में घूमना है, तो वक्त जो है साहित्य का वक्त कम होता चला गया।
1: अच्छा, इसको अगर हम दूसरे रूप में समझना चाहें, वो रील बना रहा है या लिख रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है या जो भी अपने मन का गुबार ही लिख रहा है, तो इसको क्या बिगड़े हुए साहित्य के रूप में लेंगे या साहित्य नहीं है क्या?
0: दरअसल ना, साहित्य के लिए एक चीज कही जाती है, जैसे पत्रकारिता भी तो साहित्य है और ऐसा वैसा

0: साहित्य नहीं, जिम्मेदार साहित्य, लेकिन पत्रकारिता के लिए कहा जाता कि वो जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है ना, तो मोबाइल में और रील में तो वो तो और भी फटफटिया साहित्य है ना, तो उसमें कई ऐसा नहीं, सोशल मीडिया में कई बार गंभीर चीजें दिख जाती हैं लेकिन वो बड़ी एक झलक की तरह होता है, बाकी बेशुमार चीजें ऐसी होती जिनका कोई साहित्यिक मूल्य नहीं होता।
1: जी जी,
0: ये मैं कह,
1: बहुत अच्छी बात नवीन जी, लेकिन क्या करें, समय बिल्कुल सीमित सा हो गया है। अब ऐसे में फिर भी एक सवाल तो जरूर बनता है, वो छोटा सा उत्तर आपका चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से जो साहित्य आप देखे हैं, समझे हैं, बूझे हैं या लोगों तक पहुंचा है, आज क्या कमी दिख रही है आपको?
0: देखिए, कमी हर क्षेत्र में है, सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं है। जो प्रशासनिक क्षेत्र बदला है हमारे, जैसे आकाशवाणी प्रसार भारती बना
1: जी।
0: प्रसार भारती की भूमिका बहुत व्यापक हुई, दूरदर्शन आया, उस जमाने में दूरदर्शन नहीं था। अब क्या हुआ कि दूसरा आर्थिक रूप से भी चीज़ों पर दबाव पड़े हैं, तो वो चीज़ें हमें लगता है हर क्षेत्र में, जैसे आज हम कहते हैं कि उतनी कृतियां अच्छी नहीं लिखी जा रही, तो मुझे लगता है जो वातावरण बदला है चीज़ों का, अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है लेकिन उतनी प्रमुखता से वो सामने नहीं आता जितनी प्रमुखता से पहले आता था। पहले वो चीजें नहीं होती थी।
1: चलिए, बहुत सारी बातें हैं जोशी साहब, इसलिए अपनी वाणी को हम लोग विराम देते हैं, और जितने भी चीजें हैं, माहौल है, सारी चीजों को देखते समझते यही है कि जो आपने बताया कि सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को ही हमें जरूर साथ लेकर के चलना है, तभी अपनी संस्कृति बचेगी और उस संस्कृति का अंश जो ये साहित्य है, यह भी और ज्यादा आगे बढ़ेगा या कहें कि सुधार के साथ बढ़ता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला स्टूडियो है।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर विशेष भेंट वार्ता, विषय था साहित्य, समाज और आकाशवाणी। इस विषय पर बातचीत कर रहे थे श्री नवीन जोशी और डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। इसी के साथ आज के हिंदी कार्यक्रम से अविनाश को अनुमति दीजिए, नमस्कार। हिंदी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सीतेश आलोक की रचना डॉक्टर शिखा भदौरिया के स्वर में।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं डॉक्टर शिखा भदौरिया। आइए इनसे सुनते हैं डॉक्टर शक्ति जैन की ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिखा भदौरिया के स्वर में अटल बिहारी वाजपेयी की ये रचना। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म रिपोर्टर राजू से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है, गीत अनजान का और संगीत एस महिंदर का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जय किशन का, आवाज लता मंगेशकर और आशा भोसले की। फिल्म का नाम जिस देश में गंगा बहती है।

आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम था पूजा के फूल। इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के

0: ये घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गाँव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन

0: नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है।

गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग

0: पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under-18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Shubhendu Adhikari at Nabonno in Kolkata, Mr. Vaishnav said 14,205 crore rupees has been allocated to West Bengal in the railway budget for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already

0: put the hosts in a strong position. In tennis, 8-seeded Mira Andreeva of Russia won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maja Szwalinska of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. It was a dominant display by the 19-year-old, defeating Szwalinska 6-3, 6-3 to secure a memorable victory. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया. मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके. वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं. कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है. और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की. वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया. इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया. अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया. एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया. इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए. इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को सलाह देता है. आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉक्टर पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की. मरकज ने वजन से मुताल्लिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी. सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमूई मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तायुन करने से मुताल्लिक तरीक़ेकार में तरमीम की है. सारिफीन के उमूर खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नज़रसानी शुदा जब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल,

0: चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुरदनी तेल के मंजूरशुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक कुनबे के लोगों को ले जाने वाली एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कम से कम 9 अफराद की मौत हुई जबकि 22 जख्मी हो गए। ये लोग अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को दरियाए ब्यास में सुपुर्दे आप करने के लिए जा रहे थे। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि भारत के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये 2047 तक विकसित भारत के विजन की तकमील में नुमाया रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत माई भारत यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माई भारत की तश्कील के जरिए नौजवानों को अपनी उमंगों, ख्यालात और मुल्क की तामीर के लिए रजाकाराना जज्बे के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मुल्क की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस तरह भारत सबसे ज्यादा नौजवान आबादी वाले ममालिक में से एक है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल अपनी तवील और मुनफरिद एतबार से खुली सरहद से मुत्तसल इलाके में सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी तालमेल कायम रखते हैं और दोनों मुल्क जरूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल के बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों, सरहद के दोनों तरफ कनेक्टिविटी और मुश्तरका सकाफती और मजहबी रिवायात की मजबूत बुनियाद पर कायम है। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो उम्मीदवारों, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी भोपाल असम्बली में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दाखिल किए गए। कांग्रेस ने मंदसौर की साबिक पार्लिमानी रुकन मीनाक्षी नटराजन को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जनाब जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में मुलाजमीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नई डे केयर सहूलत का इफ्तिताह किया। वजारत के मुताबिक ये इकदाम और ज्यादा शमूलियत वाला, हमदर्दाना और अवाम पर मरकूज काम का माहौल कायम करने के तई एक नुमाया पहल है। तकरीबन 600 मुरबा मीटर में फैले इस मरकज का मकसद एक खुशगवार, महफूज और साजगार माहौल फराहम करना है जहां बच्चे सीखें, खेलें, आराम कर सकें और बेहतर नशोनुमा हासिल कर सकें। ईरान ने आज कुवैत और बहरीन में अमेरिका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमेरिकी फोर्सेस ने तालमेल के साथ फिजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खत्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमेरिका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और रडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया, जबकि

0: सातवां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी अहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी एशिया का तनाज़ा उस वक्त एक नए ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गया जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात की तरफ बैलिस्टिक मिज़ाइल्स दागे। ताहम खलीजी और अमरीकी फजाई दिफाई निज़ाम ने बेशतर ईरानी मिज़ाइलों को नाकाम बना दिया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन सरगर्मियों की इत्तला मौसूल होने के बाद अमरीका की जानिब से आबनाए हुरमुस के करीब कैशम जजीरे और गोरख में ईरानी राडार और निगरानी के मरकज को निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद ये हमले हुए। वाकयात ने नाजुक सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया है और दुनिया के अहम तरीन तवानाई की गुजरगाहों में से में बहरी हिफाजत के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। इस दौरान लबनान में अमरीका की हिमायत से होने वाली जंगबंदी को एक और धचका उस वक्त लगा जब इसराइली फजाई हमले में जुनूबी लबनान में एक लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काकामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 किए जबकि 1 कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसे का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर चना मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जना मोदी ने कहा कि इस शानदार संगे मील से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी परगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इन्फिरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्याडे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक, केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले 2 के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निज़ाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें।

यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया है। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इकतसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुरदनी तेल के पैकेट के मयारी साइज़ का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फ़रोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता

0: झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में, जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज,

0: अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं, उनकी कहानियां 15 जमा 25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी की लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
1: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोबल टाइम्स विशेषकर उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लिए उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
0: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
1: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिखते थे, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखू तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में लिखा नहीं, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्होंने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्र का में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला, तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
0: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
1: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े

0: करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए, कारण वही है, मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान ली कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपन ग्रह मान लीजिए वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका महत्व तो यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका

0: पर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर, सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
3: जी,
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
3: जी।
4: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
3: जी।
4: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
3: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
4: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही
3: जी।
4: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है,

0: उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया
1: जी,
0: और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया
1: जी,
0: तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
0: जी,
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने, तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए।

आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ।

मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुली से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ. विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सान्निध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुली। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: ऋषिकेश गांगुली आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार है। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुली इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुली जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुति बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल

0: लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुर्डे विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिमी एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष

0: by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart, Shishir Khanal, in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said, India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said, the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
4: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति। उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता। और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी। उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक

0: तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है। मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी
0: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61%, लेटेस्ट डाटा इज इट्स
1: जी
0: मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता। लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी की 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे,
1: जी
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो
1: जी
0: लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं। और उन कारोबारों से आगे चलना, मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लकी से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं, विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमईज को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और पी महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे। लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स। तो वो
1: एब्सोल्युटली
0: काम भी हो रहे
1: जी
0: जी।
1: जी
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है, और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं, वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो
1: एब्सोल्युटली
0: ये
1: एब्सोल्युटली
0: सशक्तिकरण मात्र नहीं है
1: जी
0: जी, ये आजीविका के मामले हैं
1: यस
0: जी।
1: अदिति जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इन फैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशरीज, एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economy?

0: if not majority, at least 40% of these accounts are with women, and around 58 to 60 crore accounts have been opened in the country. So once you have the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman is being given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Samriddhi Yojana, which are basically meant to help, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the JAM Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar, and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, Pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers. And then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system. And you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, Pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, Sonam.
1: सुषमा जी, अदिति जी ने लाइफ साइकिल टारगेटेड स्कीम्स की बात करी, और जो डॉटर्स हैं उनके एजुकेशन उनके बर्थ से ही उनके लिए आगे की उनकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना. अगर हम पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट थे, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गॉन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, और वाज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज अ ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they are outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल,
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर विमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ विमेन वर एक्सेस्ट. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर
1: फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑल्सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन.

0: made, as you are referring, you know, till March 2026,
1: Yes.
0: more than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. एक और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है जी, सो मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है जी.
1: 98
0: बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी,
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
0: जी जी.
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टैलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together,
0: yes,
1: which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when
1: yes,
0: women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, due to the Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Mm-hmm. You can see the women have dreams about their children now, mm-hmm, and especially the daughters. Mm-hmm. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
0: Yes.
1: And Modi ji jo baar-baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र की जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन विमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
0: एब्सोल्युटली. अदिति जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव्स वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ, ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का. जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी.

0: की एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में
1: जी
0: समाज का रोल आ
1: जी
0: जाता है।
1: बिल्कुल ही, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है, विच इज इजीएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का

0: समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था। मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देर कांट बी अ बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली, एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो, लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटेस्ट स्किल्स, बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग एंड द मार्केट नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, एट टाइम्स दे मे बी डिजिटल स्किल्स इन कमिंग टाइम, एंड यू सी वीमेन आर रियली वेरी गुड एट दैट, बिकॉज दिस इज हार्ट एंड हैंड बोथ गोइंग टूगेदर, एंड देन इफ यू रियली ट्रेन दम इन टू द राइट काइंड ऑफ स्किल्स एंड एम्पावरमेंट टेक्निक्स ऑल्सो आई वुड से और फील्ड्स, देन दे आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। और ये सरकार चाहती है, विमेन लेड डेवलपमेंट कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है। और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
0: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न। एंड आई मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन, तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर, तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50

0: प्रतिशत कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators, and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
2: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारे इस सभा के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:50 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।